जो कल बीत गया वो तो हमारे हाथ में है नहीं, और जो आने वाला है, जो अभी आया नहीं है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में ये आज है, यानी कि वर्तमान है जिसमें हम जी रहे हैं। तो कल की चिंताओं को आज पर हावी ना होने दें, आज के हर पल को पूरी तरह जिएं, पूरी लगन से अपना काम करें और खुश रहें।

ये आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 4 जून 2026 सुबह के 5:53 और हो चुके हैं पूरे 38 सेकंड। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आइए अब आपको अवगत करा दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से। सुबह 6:10 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा अर्पण, पूनम आहूजा के साथ। 6:44:30 पर लेकर आएंगे श्री रामचरित मानस गान। आज सुनिए बालकांड भाग 81। गोल्ड सुप्रभात का समय होगा सुबह 7:10 पर और इसके बाद 8:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी। म्यूजिकल दिल लगी आप तक पहुंचाएंगी पूनम आहूजा। म्यूजिकल दिल लगी के इसी कार्यक्रम को सुबह 9:10 पर लेकर आएंगी नीतू शर्मा। सुबह 10:30 पर खुलेगा दिल का मेल बॉक्स। ये रिक्वेस्ट बेस्ड शो है तो आप अपनी पसंद के गीत यहाँ सुन सकते हैं। इसके बाद सुबह 11:10 पर नीतू लेकर जाएंगे आपको केरल की खास यात्रा पर, जहाँ वो आपको लेकर जाने वाली हैं आज केरल के मुन्नार में। 12:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड वुमेन एंड फैमिली शो होगा घर आंगन, जिसे लेकर नईम अख्तर होंगी आपके साथ। एक 1:10 पर नईम अख्तर के साथ रहिए कलाकार बेमिसाल में। आज कलाकार बेमिसाल में जो कलाकार हैं वो हैं अभिनेत्री नूतन। दो 2:30 पर एक खास कार्यक्रम होगा प्रायोजित

कार्यक्रम है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान की बात। आज का विषय है एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस योजना। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ओपी सिंह, प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। और 3:10 पर होगा कार्यक्रम मन भावन नसरीन खान के साथ। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 6:00 को हैं प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवगेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2री बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों

के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समय हो चला है 6:12 और ठीक 2 सेकंड। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और ये है भक्ति रस से भरपूर अर्पण, जिसमें आज आप है पूनम के साथ। नमस्कार, सुप्रभात। तो अर्पण यानी कुछ ऐसा समय जो हम अपने आप के लिए निकालते हैं, अपने मन, अपने विचार, अपने कर्म समझने की कोशिश करते हैं कि हम जो कर रहे हैं, पूरा दिन जो करते हैं, उसका एक अवलोकन किया जाए, उसे समझा जाए और उसके हिसाब से आगे बढ़ा जाए। और जब ऐसा अवलोकन हम करते हैं तो एक चीज़ जो हमारे मन में आती है और हमें कई बार एक गिल्ट में भी ले जाती है, अपराध बोध में ले जाती है, वो तब जब हमने कुछ ऐसा बोला हो जो सच ना हो। और फिर हम जब सुबह इस बात का अवलोकन करते हैं तो सोचते हैं कि सच के साथ दिन बिताना या जीना कितना अच्छा होता है, क्योंकि सच ही एक ऐसा आभास है, एहसास है, एक ऐसी शुरुआत है या एक ऐसी ज़रूरत है जो हमारे जीवन को दिशा देती है। और इसकी अच्छी बात यह भी है कि जब आप सच बोलते हैं तो आपको कभी भी कुछ याद नहीं रखना पड़ता। सच बोलते हैं तो उसके बाद बहुत सारी कहानियां नहीं बनानी पड़ती। तो क्यों ये एहसास इतना ज़रूरी है, क्यों सच बोलना इतना आसान है, और क्यों सब जो धार्मिक ग्रंथ हैं या अलग अलग जो महान हस्तियां हैं, महापुरुष हैं, वो इस बात पर जोर देते हैं कि हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए। सोचेंगे आज, बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस भजन के साथ।

जी हाँ, तो बात हो रही थी सत्य की, ट्रुथ की, यानी सच्चाई की। और ये अगर देखा जाए तो हमारे जीवन को जितना आसान बनाता है उतना ही हमें आध्यात्मिकता से भी जोड़ता है। यानी सच के साथ बहुत सारी स्पिरिचुअल वैल्यूज जुड़ी हुई हैं, आध्यात्मिक गुण जुड़े हुए हैं। इसलिए बहुत सारे दार्शनिक और भारतीय दर्शन में सत्य को केवल सच बोलने से नहीं जोड़ा गया है, बल्कि जो हमारी खोज है, जो उस परमात्मा परवरदिगार ईश्वर से हम जुड़ना चाहते हैं, जो शाश्वत नियमों का पालन करना चाहते हैं, उससे भी जोड़ा गया है। और इसीलिए सत्यमेव जयते हम सुनते हैं। आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार इसका अर्थ यह है कि सत्य की ही जीत होती है। सत्य का मार्ग जीवन को पारदर्शी बनाता है और हमें फियरलेस बनाता है, यानी भयमुक्त बनाता है। तो ये एक ऐसा गुण है जिसे अगर हम अपना लेते हैं तो हमारे मन में प्रेम बढ़ता है, शांति बढ़ती है, आनंद बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है और पवित्रता भी बढ़ती है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हम सच बोलने से डर जाते हैं, या सच को अपने जीवन में अपनाते नहीं हैं, या कई बार सच सामने होता है लेकिन फिर भी उसे अनदेखा कर देते हैं? सोचिए कि ऐसा क्यों करते हैं और क्या ऐसा करना जरूरी है, क्या ऐसी मजबूरी होती है? क्योंकि इस बात का आंसर, इस बात का जवाब सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही है।

जी हाँ, तो बात हो रही थी कि सच बोलना कितना जरूरी है और सच बोलते हैं तो कितना कुछ बदल जाता है। और इसी सिलसिले में हम बात कर रहे थे कि सच बोलना, पहली बात तो ये कि याद नहीं रखना पड़ता, दूसरी बात ये कि सच बोलते हैं तो प्रेम, शांति, आनंद, ज्ञान, ये सब कुछ हमारे अंदर आ जाता है। और सच

चाहें तो योग दर्शन यानी अष्टांग योग में भी यम, जिसे नैतिक अनुशासन कहा गया है, उसमें सत्य को सबसे ऊपर स्थान दिया गया है। और जो सच बोलता है, सच कहें तो वैसे ही वो काम भी करता है, क्योंकि मन जो सोचता है वही बोलता है और वही हमारे एक्शंस होते हैं, यही यानी वही हमारे कर्म होते हैं। तो अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने कर्मों को बदलना चाहते हैं, यानी जो एक्शंस आप लेते हैं उसे बदलना चाहते हैं, तो फिर ये शुरुआत भी विचार से ही होगी। और विचार में सच होगा तो आपके वचन में ये भी बोलने में सच होगा, और फिर काम में भी सच होगा। इसीलिए ये अभ्यास हर रोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना हम इसका अभ्यास करता जाते हैं ना, उतना ही जिंदगी आसान होती जाती है। वैसे भगवद गीता में भी इसके लिए एक श्लोक है, क्या है बात करेंगे, लेकिन पहले ये भजन सुनते हैं।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

जी हाँ, तो अर्पण में आज हम बात कर रहे थे सत्य के बारे में और ये कि सच बोलना हमें कितना आसान जीवन दे सकता है। और सच कहें तो सच बोलना वाणी की तपस्या भी है। जानते हैं भगवद गीता के 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याय अभ्यासनम च एव वाक्यम तपः उच्यते। तो इसका मतलब है कि सच बोलना और ऐसा सच बोलना जो दूसरों को दुख भी ना दे, वो हमारी वाणी की तपस्या है। यानी वाणी को संयम रखना, सत्य बोलना, लाभकारी बोलना, दूसरों को विचलित ना करने वाले शब्द बोलना, ये हमें एक अच्छा जीवन दे सकता है। या वास्तव में देखें तो हमें ऐसा बना सकता है जिसमें कि हम उद्विग्न नहीं होते या हम दुखी नहीं होते या हम किसी भी बात से परेशान नहीं होते, हमारी एंजाइटी कम होती है। इसीलिए ऐसे शब्द जो किसी के मन को ठेस ना पहुंचाएं, वही हमें बोलने चाहिए। ऐसे शब्द जो किसी को गुस्से में, डर में या चिंता में ना डाल दें, वही हमारे शब्द होने चाहिए। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि सच हमेशा कड़वा हो, उसे ऐसे भी प्रस्तुत किया जा सकता है कि सुनने वाले को अच्छा लगे और उसे खुशी मिले। तो क्या सोच रहे हैं आज? सोचिए कि क्या क्या ऐसा हो सकता है, कैसे उस सच को आप परोस सकते हैं जिससे कि वो हितकारी भी लगे, किसी को दुख भी ना पहुंचाए और आप अपने आप भी शांति के साथ जी सकें। तो सोचिए और ये भजन सुनने के बाद फिर इस बारे में आगे बात करेंगे। वैसे इसे सोचने के लिए अच्छा ये होता है कि हम जो भी सोचना चाहते हैं उसे कुछ शब्दों में कहीं पर लिख लें, उससे वो सोच आसान हो जाती है, नहीं तो विचार इधर उधर भागते रहते हैं।

हो रही थी सत्य की, और सत्य बोलना हमेशा ऐसा भी होना चाहिए जो दूसरों की भलाई के लिए हो, उसे सुनने में अच्छा ना लगे बल्कि उसके लिए अच्छा भी हो। बस यही याद रखिए और पूरा दिन बहुत अच्छी तरह बिताइए। और अब समय है कि आप सुने श्री रामचरितमानस।

जनकपुर में सीता स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए मुनि विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण तथा अन्य शिष्य ऋषियों के साथ राजा जनक की नगरी पहुंचे। सबने स्नान पूजा भोजन आदि के बाद विश्राम किया। एक पहर दिन शेष था जब लक्ष्मण जी के मन में नगर देख आने की लालसा जगी, किंतु गुरु विश्वामित्र तथा बड़े भाई राम के सामने अपनी इच्छा प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। अंतर्यामी श्री राम ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। गुरुदेव से लक्ष्मण के संकोच की बात कहकर उन्होंने उन्हें नगर दिखा लाने की आज्ञा मांगी और दोनों भाई नगर देखने चले। श्याम और गौर वर्ण वाले इन दो ऋषि कुमारों का आकर्षक रूप देख नगर के बालक झुंड बनाकर इनके पीछे हो लिए। इस मनोहारी जोड़ी ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं, कमर में लिपटे दुपट्टों में तरकश बंधे हैं और हाथों में धनुष वाण सुशोभित हैं। सिंह के समान पुष्ट ग्रीवा, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर राजमुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, जो भी ये रूप देखता है ठगा सा खड़ा रह जाता है।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। पश्चिम एशिया संकट कारणेन वर्धितेषु इंधन मूल्येषु भारतीय विमान सेवानां कृते विमान इंधनस्य अर्थात ATF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः सहस्रकोटि रूप्यकाणां आय व्यय सहायतां प्रदातुं प्रशासनं निर्णयं कृतवत्। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवोचत् यत् एतेन विमानन क्षेत्र संबद्धाः प्रायः 77 लाख आजीविकाः सुरक्षिताः भविष्यन्ति। सहायता योजनेयं 36 मास पर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते। मन्त्रिमण्डलेन दिल्ली निकटवर्ति क्षेत्रे वायु प्रदूषण नियन्त्रणार्थमपि एकस्याः योजनायाः अनुमोदनं कृतम्। द्विवर्षीय योजनायां प्रायः 2 लाख ट्रक यानानि 16,000 बस यानानि च प्रतिष्ठापयितुं लक्ष्यं निर्धारितम्। मन्त्रिमण्डलीय समित्या ओडिशा राज्ये रामेश्वरात् पारादी पर्यन्तं 63,100 किलोमीटर परिमितस्य नूतन तटीय राजमार्ग निर्माणाय अनुमतिः प्रदत्ता। एतदतिरिच्य समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रिय राजमार्गयोः 31 तथा 31,200 च इत्येतयोः खगड़िया पूर्णिया खण्डस्य चतुर्पथ परियोजना अपि अनुमोदिता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां वेनेजुएला देशस्य राष्ट्रपतिना डेल्जी रोड्रिगेज इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। अस्याम् उच्चस्तरीय चर्चायां भारत वेनेजुएला संबंधानां अशेषेषु पक्षेषु मंथनं भविष्यति। सहैव ऊर्जा सुरक्षा व्यापार निवेश स्वास्थ्य सेवा परिवहनम् नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादिषु क्षेत्रेषु भविष्ये सहयोगस्य नूतन मार्गाणाम् अन्वेषणं च भविष्यति। रोड्रिगेज वर्यः भारत देशस्य 5-दिवसीय यात्रायां ह्यः नवदिल्लीं समागच्छत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् कृत्स्नेहि विश्वे योगस्य लोकप्रियता तीव्रगत्या वर्धमाना वर्तते। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन सन्देशेन प्रधानमन्त्रिणा संसूचितं यत् अद्य प्रथम वैश्विक योगासन प्रतियोगितायां सह आभासीय माध्यमेन सम्मिलितो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य सायंकाले त्रिपुरा राज्यस्य 2-दिवसीय यात्रायां अगरतला नगरं प्रति एष्यति। यात्रावधौ श्री शाहः पुष्पवंत पैलेस इत्यस्य शिलान्यास समारोहे भागं ग्रहीष्यति। लंकामुरा स्थिते सीमा सुरक्षा बलस्य निरीक्षणं च करिष्यति। सहैव राज्य केन्द्रीय सुरक्षा अधिकारिभिः सह एकं उच्चस्तरीय उपवेशनं करिष्यति। गृहमन्त्रिणः यात्रां वीक्ष्य त्रिपुरा प्रशासनेनापि एका उच्चस्तरीया प्राशासनिक सुरक्षा सीमा सभा आयोजिता। राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीय नगरस्य एकस्मिन् विश्रांति निलये भीषणाग्निकाण्डे 21 जनाः मृत्युमुपगताः, अनेके च जनाः व्रणिताः अभवन्। दक्षिण दिल्ल्यारक्षि विभागस्य उपायुक्तः अनंत मित्तलः अवोचत् यत् अग्निशमन विभागस्य 8 वाहनैः सह अग्निः नियन्त्रितः। आरक्षिणाम् अग्निशमनस्य तथा अन्य आपत्कालिक सेवानां संयुक्त प्रयत्नैः 40+ जनाः सुरक्षित रूपेण उद्धृताः, चिकित्सोपचारार्थं च चिकित्सालयेषु प्रेषिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घटनामुद्दिश्य गहनं दुःखं व्यक्तीकृतवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, गृहमन्त्री अमितशाहः तथा दिल्लीराज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता अपि अस्मिन् दुःखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः। सर्वैः नेतृभिः शोकसन्तप्त परिवारान् प्रति गहन संवेदना व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। यह यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। उनका आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए गए नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना में सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अवैध संपत्तियों, अनाधिकृत गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों तथा भवन उपनियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ पूरे शहर में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. The discussions will involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in areas of energy security, trade and investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. Ms. Rodriguez arrived in New Delhi yesterday on a five-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising of several ministers. The delegation will visit several sites connected with energy, pharmaceuticals and auto sectors to gain insights into India's technological and industrial capabilities and to explore opportunities for collaboration. Prime Minister Narendra Modi has stated that yoga is gaining tremendous popularity across the world. In a social media post, the Prime Minister said he will join the first World Yogasan Sports Championship 2026 virtually today. The championship will be held at Ahmedabad in Gujarat. Mr. Modi said the platform has brought together yoga enthusiasts from around the world. Union Home Minister Amit Shah will chair the 73rd plenary session of Northeastern Council in Shillong, Meghalaya today. The Ministry of Development of Northeast Region said that the session will discuss and deliberate on progress made by the CM high-level task forces constituted for critical sectors of regional development. During the session, presentations will be made on tourism, agriculture and horticulture, investment promotion, self-reliance in milk, eggs, fish and meat, sports promotion, economic corridor development, infrastructure and connectivity, and handloom and handicrafts. Union Minister for Development of Northeastern Region, Doner, Jyotiraditya Sindhya, Minister of State for Doner, Sukanta Majumdar, governors and chief ministers of all the 8 northeastern states, other members of Northeastern countries, states and senior officers of central and state governments will be present at the meeting. Varanasi, the parliamentary constituency of Prime Minister Narendra Modi and one of the world's oldest living cities, is once again set to witness a historic international event. After successfully hosting G20 meetings, Varanasi will now host the second meeting of the BRICS Culture Working Group today and tomorrow. Representatives from 11 countries including China, Brazil, Egypt, Ethiopia and Indonesia will take part in this meeting. The meeting will bring together senior diplomats, policymakers, and cultural experts. External Affairs Minister S. Jayashankar co-chaired the 10th India-Laos PDR Joint Commission meeting with Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Laos People's Democratic Republic, Thong Savan from Vihane in New Delhi yesterday. In his remarks, Dr. Jayashankar said India and the Laos PDR share close civilizational ties reflected in their common heritage of Buddhism and the Ramayana. He noted that relations between the two countries go back in history based on deep cultural and people-to-people linkages. United Kingdom Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Wet Cooper, arrived in New Delhi last night on a two-day official visit to India. Ms. Cooper is scheduled to call on Prime Minister Narendra Modi today. She will also have a meeting with External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar this evening. The Ministry of External Affairs said her visit will provide an opportunity to further strengthen the India-UK Comprehensive Strategic Partnership. A total of 21 people lost their lives after a fire broke out at a guest house in Malviya Nagar area of New Delhi yesterday. Delhi police said the deceased include 9 Indian nationals and 12 foreign nationals. The police informed that a total of 49 persons were admitted to various hospitals for treatment, of which 21 succumbed to their injuries. The police said a case has been registered and an investigation is underway. In football, hosts India have booked their place in the final of the SAF Women's Championship after defeating Bhutan 1-0 in the semi-final at Margao, Goa yesterday. And that is the end of this news bulletin.

या तो ये प्यारा सा गाना आपके लिए बनाया गया था ताकि आपको याद आए कि आकाशवाणी कितनी पुरानी और कितनी प्यारी है और कितने अलग अलग आयामों से आपसे जुड़ी हुई है। यानी हर बार कुछ ना कुछ नया हम लेकर आते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले, आपको जानकारियां भी मिले, आपके मन में ये जो गाने इनकी कहानियां भी बने और साथ ही साथ आपका एक साथी जो हमेशा आपके साथ हो वो भी रहे। और यही साथी ये भी चाहता है कि आप बिल्कुल ठीक रहें और इसीलिए हम आपको कोई ना कोई योग जो है वो भी बताते हैं गोल्ड सुप्रभात में। जैसे आज का योग है नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये जो योग है ना ये हमारे सांसों को संतुलित करता है, मन को स्थिर करता है, विचारों को साफ करता है और इसमें हमें बाएं नाक से सांस लेना है, दाएं से छोड़ना है, फिर दाएं से लेकर बाएं से छोड़ना है और दिन में ये एक दिन में 10 से 15 बार इसे करना है। इससे ऑक्सीजन बढ़ती है और हमारा जो मानसिक तनाव है वो कम होता है। इसलिए अपने आप को अगर आप एंजाइटी फ्री रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि एकदम मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो गए और उसकी वजह से पता है हमें एसिडिटी भी हो जाती है, हमारा डाइजेशन भी ख़राब होता है, तो ये सब ठीक रखने के लिए आप अगर अपनी सांसों को रेगुलेट करना सीख जाते हैं तो काफ़ी कुछ बदल सकता है। छोटी सी बात है लेकिन हाँ, इसे भी करने के लिए आपको एक योगा एक्सपर्ट चाहिए, यानी किसी के संरक्षण में ही करें, उनसे सीख कर करें। तो ये तो हुई योग की बात और बात एक और प्यारे से गाने की। तो कौन सा गाना आपको सुनाया जाए जो आपको बहुत पसंद आए? तो चलिए एक प्यारा सा गाना है आप आए बाहर आए फिल्म का, बहुत सुंदर है, सुबह सुबह के मूड के साथ बिल्कुल जेल करता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। तो चलिए इसे भी सुन लेते हैं।

इस प्यारे से गाने के साथ फिलहाल आपसे अनुमति लेते हैं। आप सुन रहे थे प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात और आइए अब सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही एफएम गोल्ड सुनते रहिएगा। पूनम चलती है पर आप कहीं नहीं जाएंगे, जानेंगे देश और दुनिया का हाल।

0: सुबह हमारी जीवन में लेकर आती है एक नई आशा और उम्मीद की किरण। इसी उम्मीद के साथ कि आज का दिन आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, आइए शुरुआत करते हैं न्यूज मैगजीन कार्यक्रम आज सवेरे की, जो रोज सुबह ताजा तरीन खबरों के साथ देता है आपको वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के इस अंक के साथ मैं हूँ सरफिरोजी और मेरे साथ हैं तन्वी खुराना। नमस्कार तन्वी।
1: नमस्कार सरफिरोजी। गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द एंटायर आकाशवाणी नेटवर्क। यस, दिस इज आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे एंड वी हैव अ लॉट इन स्टोर फॉर ऑल ऑफ यू जस्ट लाइक एवरी डे, बट एवरी डे इज डिफरेंट एंड टुडे इज 4th ऑफ जून। हाउ इज दिस पर्टिकुलर डे स्पेशल, वी लेट यू नो। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर एंड वी आर गोइंग टू प्ले अ लॉट ऑफ music, we are going to give you a lot of information and this is going to be interesting. So let's begin our program with the news headlines.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची, उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है। इससे पहले वो वर्ष 2015 में विदेश मंत्री तथा 2019, 23, 24 और 25 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी।
1: Union Home Minister Amit Shah will chair 73rd plenary session of Northeastern Council in Shillong, Meghalaya today. The Ministry of Development of Northeast Region said that the session will discuss and deliberate on progress made by the CM high-level task forces constituted for critical sectors of regional development. During the session, presentations will be made on tourism, agriculture and horticulture, investment promotion, self-reliance in milk, eggs, fish and meat, sports promotion, economic corridor development, infrastructure and connectivity, and handloom and handicrafts.
0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद बैठक की अध्यक्षता की। ये परिषद देश भर में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने संबंधी नीतियों, कार्यक्रमों और उपायों पर सरकार को सलाह देने वाली सर्वोच्च निकाय है। बैठक में जागरूकता बढ़ाने, आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, वित्त समावेशन मजबूत बनाने, आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र सुनिश्चित करने सहित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण और रोजगार के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले और बीएल वर्मा भी उपस्थित रहे।
1: Panchayati Raj Minister Rajiv Ranjan Singh yesterday said that the government has allocated 4.35 lakh crore rupees under the 16th Finance Commission to the local bodies, reflecting center's commitment to grassroots development. Addressing the National Panchayat Awards NPA 2025 ceremony in New Delhi, Mr. Singh said that rural development forms the foundation of a developed India and that the country's progress is intrinsically linked to the empowerment of villages. Emphasizing the role of technology in modern governance, the minister called for greater adoption of artificial intelligence, digital tools and innovative solutions in panchayat administration. He added that Panchayati Raj institutions are playing a pivotal role in realizing the vision of Viksit Bharat 2047.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये सोच है कि ग्रामोदय से ही भारत का उदय हो सकता है। जब तक गांव सशक्त नहीं होगा तब तक इस देश को हम विकसित भारत नहीं बना सकते। हम पंचायत के प्रतिनिधियों से आग्रह करें कि आप अपने पंचायत के आय के स्रोत में भी वृद्धि करिए, आप उसके लिए भी योजना बनाइए और उसको कार्यान्वित करने का काम कीजिए, तभी आप विकसित पंचायत के रूप में आपकी गिनती हो सके।
1: U.S. Secretary of State Marco Rubio told lawmakers that the United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. Responding to questions about his recent visit to India during a House Foreign Affairs Committee hearing last night, Rubio said Washington and New Delhi

0: are nearing completion of the pact. Secretary Rubio repeatedly highlighted India as an important strategic partner in the Indo-Pacific, signaling growing momentum in economic ties between the world's largest and oldest democracies.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में वरिष्ठ राजनयिक, नीति निर्माता और संस्कृति विशेषज्ञ सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने और आपसी साझेदारी को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। G20 बैठकों के सफल आयोजन के बाद वाराणसी एक बार फिर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। एक रिपोर्ट।
2: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: The first World Yogasan Sport Championship will begin today in Ahmedabad, Gujarat. The five-day event will bring together more than 500 athletes from over 70 countries, including US, Japan, Netherlands, Oman, Mauritius, Zambia, Uganda, Sri Lanka, Nepal, and Kenya. The meet will feature multiple disciplines, including traditional yogasan, artistic yogasan, and rhythmic pairs across different age categories. The championship includes a wide range of contests for male and female athletes across sub-junior, junior and senior divisions. Prime Minister Narendra Modi will join the event at around 6:40 p.m. today virtually. In a social media post, Mr. Modi said that yoga is gaining tremendous popularity across the world.
1: और भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से ये मैच खेला जाएगा। श्रोताओं, अब आपको देंगे महानगरों का हाल। कहां से शुरुआत कर रही हैं तन्वी?
0: एंड वी आर बिगिनिंग विद चेन्नई। The weather department has said that the southwest monsoon is expected to set in over Kerala today. While it is unlikely to bring direct rainfall to the city immediately, its onset may bring relief from the prevailing heat and humid conditions, with increased cloud cover, cooler winds and a gradual fall in temperatures over the coming days. The interaction between westerlies and easterlies may also increase the chances of evening thunderstorms during the break monsoon period. The city records an average maximum temperature of 37.2 degrees in June.
1: और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में पुराने ट्रक और बस को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दे दी है। 9585 करोड़ रुपए के वित्त परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य दिल्ली NCR में पंजीकृत उन ट्रक और बस के मालिकों को प्रोत्साहित करना है जो BS4 या उससे पहले के उत्सर्जन मानकों का पालन करते हैं, ताकि वो उन्हें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदल सके। मीडिया को जानकारी देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2 साल की इस योजना का उद्देश्य दिल्ली NCR क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस बदली जाएंगी।
3: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: दिल्ली सरकार में खाद्य और आपूर्ति विभाग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया है कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC के माध्यम से राशन व्यवस्था को लेकर भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि

0: नई व्यवस्था में भी जनता को राशन मिलता रहेगा। श्री सिरसा ने कहा कि इस व्यवस्था में ये फायदा है कि अगर लोग 2-3 महीने तक भी राशन नहीं ले पाते हैं तो वो राशन अगले महीने की पात्रता में जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि ये एक प्रोग्रामेबल डिजिटल व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि इसे अधिकृत राशन दुकानों पर अनाज खरीदने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकेगा।
1: And let's move towards Bangalore. President Draupadi Murmu virtually inaugurated the semiconductor training fabrication facility at the Center for Nanoscience and Engineering, IISc Bangalore. Supported by the Ministry of Tribal Affairs, the facility aims to strengthen India's semiconductor workforce through hands-on training in fabrication, clean room operations, device manufacturing, and also characterization. The initiative builds on IISc CENSE's successful semiconductor skilling program, which has trained over 1400 scheduled tribe participants across India and also awarded more than 1000 NSQF certifications. And we have some more news from Bengaluru itself. In a landmark initiative, the National Institute of Mental Health and Neurosciences, NIMHANS, in collaboration with the Mercury Foundation, has established the Center for Music, Brain, Mind and Health under the patronage of legendary composer and Padma Vibhushan awardee, Dr. Ilaiyaraaja. The center will serve as India's first interdisciplinary hub integrating music, neuroscience, mental health, cognition, rehabilitation and technology. It aims to promote research, clinical innovation, education and public engagement while exploring music's role in enhancing mental health and also well-being.
0: और अब रुख कर रहे हैं शहर मुंबई की ओर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के मलाड इलाके में आकाशवाणी की जमीन पर विश्व स्तरीय एकीकृत फिल्म और टेलीविजन मीडिया हब विकसित करने के लिए राज्य सरकार और प्रसार भारती द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन SPV के गठन को मंजूरी दे दी है। ये परियोजना मलाड में प्रसार भारती की लगभग 150 एकड़ जमीन पर फिल्म सिटी के समन्वय से विकसित की जाएगी। इसमें आधुनिक फिल्म स्टूडियो, साउंड स्टेज, आईटी आधारित सेवाएं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फिल्म और संगीत प्रशिक्षण केंद्र भी शामिल होंगे।
1: And about Hyderabad, Telangana state has signed a cooperation agreement with Thuringia, a state in Germany. The agreement focuses on technology, skill training, startups and also life sciences. Minister President Mario Vokhi of Thuringia met the Chief Minister A. Revanth Reddy in Hyderabad. He praised Telangana's rapid economic growth and called it a leading center for progress and innovation in India. The Chief Minister Revanth Reddy emphasized the need for skill training programs suitable for the age of artificial intelligence. He said Telangana wants to train workers for countries like Germany, Japan and also South Korea. The Chief Minister sought support from Thuringia to improve skill training in universities and technical institutes. He also requested help in establishing a German language training program in Hyderabad.
0: और अब बात करते हैं अपने आखिरी महानगर कोलकाता की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में रुकी विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे और मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक भी शामिल होंगे। श्री माजी ने बताया कि राज्य की विभिन्न रेल परियोजनाओं पर केंद्रित चर्चा में रेल विकास पर केंद्र राज्य संबंध मजबूत होने की उम्मीद है। और महानगरों के जानकारी के बाद अब आपको देंगे महानगरों के मौसम की जानकारी। शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में आज आंधी के साथ बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, बारिश और गरज का आसार है। अधिकतम तापमान के 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान के 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता भी आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा और बिजली कड़कने की संभावना है। न्यूनतम तापमान के 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
1: And Chennai is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 29 degrees and maximum will be around 40 degrees. Bangalore is expected to have thunderstorm accompanied with lightning. The minimum temperature was 22 degrees and maximum will be around 30 degrees. Hyderabad is expected to have thunderstorm accompanied with lightning, just like Bangalore. The temperature will hover somewhere between a minimum of 28 degrees and a maximum of 38 degrees Celsius.
0: तन्वी, मौसम की भी हमने बात कर ली और अब समय आ चुका है इतिहास के पन्नों को पलटने का और जानने का कि आज यानी 4 जून का जो दिन है वो इतिहास में क्यों दर्ज हो गया।
1: So let's talk about the year 1783 when the Montgolfier brothers demonstrated the world's first hot air balloon in France. And followed by another year 1878, the Cyprus Convention was signed, placing Cyprus under British administration.
0: और 1903 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में साप्ताहिक पत्र इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य नस्लीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाना था। 1917 में आज ही के दिन संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार पुलित्जर प्राइजेस प्रदान किए गए। ये पुरस्कार पत्रकारिता, साहित्य, नाटक और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिए जाते हैं और आज इन्हें दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में गिना जाता है।
1: In 1937, the world's first shopping cart was introduced in an Oklahoma grocery store. In 1942, the Battle of Midway began, becoming a turning point in World War II.
0: 1959 में आज ही के दिन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजा गोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की घोषणा की।
1: In 1989, Poland held its first partially free elections, leading to a victory for solidarity and accelerating the fall of communism in Eastern Europe.
0: और आज ही के दिन 1994 में भारत ने पृथ्वी मिसाइल का सफल उपयोगकर्ता परीक्षण किया, जो उसके स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही।
1: And in 1997, India launched the communication satellite INSAT-2D, strengthening national telecommunications services.
0: और श्रोताओं, अब याद करेंगे उन महान हस्तियों को जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए या इस दुनिया से विदा हुए।
1: So let's begin with the name Mahendranath Gupta. Today is his death anniversary. He was a disciple of Ramakrishna and a mystic himself. He was the author of many books, be it a Bengali classic, and that was written in English. It is known as the Gospel of Sri Ramakrishna. He was also an early teacher to Paramhans Yogananda, a famous 20th century yogi, guru, and philosopher. Having a devotional nature, he worshipped the Divine Mother in the form of Kali and often reflected the wisdom of his guru Ramakrishna in his daily life and mannerisms. Yogananda reverentially regarded Mahendranath Gupta's spirituality, calling him an incarnation of purity and the greatest man of humility I ever knew.
0: आज पुण्यतिथि है सुलभा देश पांडे की। ये बॉलीवुड और रंगमंच अदाकारा थी। रंगमंच कलाकार सुलभा देश पांडे ने कई मराठी और हिंदी फिल्मों तथा टीवी सीरियल में काम किया। इन्होंने मराठी और हिंदी रंगमंच के अलावा मराठी और हिंदी की कई फिल्मों में भी अभिनय किया। इनमें तमन्ना, विरासत, याराना, खून भरी मांग और इंग्लिश फिल्म जैसी कई सफल फिल्मों के नाम शामिल हैं। सुलभा देश पांडे ने भूमिका अरविंद देसाई की अजीब दास्तान, गमन जैसी फिल्मों में भी यादगार भूमिकाएं निभाई। इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है शांतता कोर्ट चालुआ है। हम इसका ही एक अंश आपको सुनाने जा रहे हैं।
2: झोपलेल्या आत्महत्येतला आनंद फार मोठा असतो, जगण्याच्या वेदनेहून मोठा। प्राण उधळावा तेव्हा तो असल्याचं भाग्य लक्षात येतं, प्राण प्राणापलीकडे जपावा तेव्हा तो उधळण्याच्या दायकीच असल्याचं पडत। काय गमतेने पुन्हा पुन्हा तेच जीवन है, असं आहे जीवन, हे तसं आहे जीवन, हे अमुक आहे जीवन, हे तमुक आहे जीवन। हा टरटरा फाटत जाणारा ग्रंथ आहे जीवन, हा स्वतःलाच डंक मारणारा महाविषारी सर्प आहे।
1: And let's talk about another Marathi personality, and he is Ashok Saraf. Today is his birthday. An Indian actor and comedian known for his work in Marathi and Hindi films along with theatre in both languages. Having appeared in more than 300 films, Ashok has received several awards including 11 Maharashtra State Film Awards and 4 Filmfare Awards of Marathi. In 2016, he received Filmfare Marathi Lifetime Achievement Award for his contribution to Marathi cinema. And he has also received Padma Shri, India's 4th

0: fourth highest civilian honor from the government of India in 2025. So let's hear a comedy dialogue of his from one of his films.
1: Hey, खबरदार जो मेरी बेटी को बहरी का
2: गलती हो गई बस अब सुबह सुबह तुम मत शुरू होना मेरी माँ
1: क्या अभी बीवी को माँ कहते हुए शर्म नहीं आती
2: मरने के बाद बोलते हुए तुमको शर्म नहीं आती
1: बोलूंगी मेरी बच्चों को कुछ बोला ना तो हजार बार बोलूंगी
2: बोलती रहो एक बार बोलती रहो हजार बार बोलती रहो तुम बोलती रहो मैं सुनता रहता हूँ और दूसरा काम ही क्या है मुझे
1: किससे बातें कर रहे हो
2: दीवार से सुना नहीं दीवार के भी कान होते हैं
1: दीवार के भी कान होते
2: मेरी शर्ट कहाँ है
1: छोड़े बोल तो डालो
0: So the clip that you just heard was from the TV series Hum Paanch and I'm sure each and every person has seen the clipping of this series or who you have heard about it.
3: और आज ही पुण्यतिथि है अभिमन्यु अनंत की भी मॉरिशस में हिंदी कथा साहित्य का सम्राट इन्हें माना जाता था इन्होंने 18 वर्षों से हिंदी का अध्यापन किया और 3 वर्षों तक युवा मंत्रालय में नाट्य कला विभाग में नाट्य प्रशिक्षक रहे अभिमन्यु अनंत को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया जिनमें साहित्य अकादमी सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मैथिली शरण गुप्त सम्मान आदि प्रमुख हैं
0: And today we are going to remember Bhagat Puran Singh. Today is his birth anniversary. He was an Indian writer, environmentalist and philanthropist. As a young man, he decided to dedicate his life to humanitarian work and in 1947 he established Pingalwada, a home for the sick and disabled in Amritsar. He was also an environmental campaigner, raising awareness of pollution and soil erosion and he wrote many books about environmental topics. After the partition of India in 1947, Bhagat Puran Singh worked as a medic in a refugee camp in Amritsar, home to over 25,000 refugees. And he was honored in 1981 by the Government of India with the Padma Shri Award, given for exceptional and distinguished service in any field. And he was also nominated for the Nobel Peace Prize in 1991 for his humanitarian work.
3: और अब हम याद कर रहे हैं श्रीपति पंडित राध्युल बाला सुब्रमण्यम को जिन्हें आप और हम जानते हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम के नाम से भी इनकी आज जयंती है ये देश के सुप्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक हैं इन्हें बालू के नाम से भी जाना जाता है एसपी ने अपने 5 दशक लंबे फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक गीत गाए पार्श्व गायक होने के साथ साथ ये एक अभिनेता संगीत निर्देशक और फिल्म निर्माता भी थे एसपी बाला सुब्रमण्यम ने 6 बार सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 25 बार तेलुगु सिनेमा में नंदी पुरस्कार जीता फिल्म मैंने प्यार किया साजन और हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों गीतों ने भी इनके सभी के दिलों को छू लिया
4: सात

0: श्रोताओं, इस खूबसूरत से गीत के साथ दीजिए इजाजत सरफिरोजी और तन्वी को, कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की।
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे।
0: नमस्कार।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
0: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
2: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार

0: करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
2: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करके ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष करके रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
1: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
3: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
1: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
4: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जांच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजना

0: समस्याओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
0: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच, अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क, भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में 7 सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोकसत्ते ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डेल्सी रोड्रिगेज इन न्यू दिल्ली टुडे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू चेयर 73

0: सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज के साथ बातचीत करेंगे। मोहतरमा रोड्रिगेज भारत के 5 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची हैं। उनके हमरा मुख्तलिफ महकमों के वजीरों पर मुश्तमिल एक वफ्द भी भारत आया है। इसमें उमूर खारजा, मईशत, खजाने, साइंस और टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन शामिल हैं। मोहतरमा रोड्रिगेज इससे पहले साल 2015 में वजीर खारजा की हैसियत से और इसके बाद 2019, 2023, 2024 और 2025 में नायब सदर की हैसियत से भारत के दौरे पर आ चुकी हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस बातचीत में भारत वेनेजुएला ताल्लुकात के तमाम तर पहलू ज़ेर गौर आएंगे और मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने के तौर तरीके तलाश किए जाएंगे, जिनमें तवानाई की यकीनी फराहमी, तिजारत, सरमायाकारी, दवासाजी, हिफ्जान सेहत, नकल व हमल और काबिल तजदीद तवानाई के शोबे शामिल हैं। वेनेजुएला का वफद भारत की तकनीकी और सनअती सलाहियत से वाकफियत हासिल करने और इश्तराक के मौके तलाश करने की खातिर तवानाई, दवासाजी और मोटर गाड़ियों के शोबे से वाबस्ता कई मकामात का दौरा भी करेगा। तवानाई और सरमायाकारी के शोबे में भारत वेनेजुएला का एक अहम साझेदार रहा है। भारत के सरकारी मिल्कियत इदारों ने तवानाई के शोबे में वेनेजुएला में काफी सरमायाकारी की है और वो अपनी मौजूदगी बढ़ाने की खातिर मुख्तलिफ मौके तलाश करने के ख्वाहिशमंद है। उम्मीद है कि वेनेजुएला के लीडर के इस दौरे से बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे और मुख्तलिफ शोबों में राबतों को तकवीत भी मिलेगी। दिल्ली से प्रिया मोंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज मेघालय के शहर शिलोंग में शुमाल मशरकी काउंसिल के 73वें मुकम्मल इजलास की सदारत करेंगे। शुमाल मशरकी खित्ते के फरोग से मुतालिक वजारत ने कहा है कि इस इजलास में इलाकाई तरक्की के अहम शोबों के लिए तश्कील दी गई आला सतह की सीएम टास्क फोर्सेज की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास के दौरान सियाहत, ज़िरात, बागबानी, सरमायाकारी के फरोग, दूध, अंडों, मछली और गोश्त में खुद किफालत, खेलों के फरोग, इक्तिसादी कॉरिडोर डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी और हथकरघा और दस्तकारी के बारे में प्रेजेंटेशंस पेश की जाएंगी। उम्मीद है कि इस तबादला ख्याल से मुश्तरक मकासद के हुसूल के लिए रियासतों और मुतल्लिका फरीकों के माबैन तालमेल के साथ इकदाम करने में सहूलत होगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। अपने इस दौरे में जनाब अमित शाह पुष्पा बांता पैलेस होटल का संग बुनियाद रखे जाने की तकरीब में शिरकत करेंगे। लंकामूरा के मकाम पर सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ की सरहदी चौकी पर वो जाएंगे और रियासती नीज मरकजी सिक्योरिटी अहदेदारों के साथ आला सतह की मीटिंग करेंगे। रियासती सरकार ने जनाब अमित शाह के दौरे के सिलसिले में आला सतह की इंतजामी और सिक्योरिटी मीटिंग का भी एहतमाम किया है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कानून साजों से कहा है कि अमरीका और भारत अपने उस तजारती समझौते को हतमी शक्ल देने से महज कुछ हफ्ते दूर हैं जिसका तवील अरसे से इंतजार था। खारजी उमूर से मुतालिक हाउस कमेटी के सवालों के जवाब देते हुए कल रात जनाब रूबियो ने बताया कि वाशिंगटन और नई दिल्ली समझौते को मुकम्मल करने के करीब हैं। जनाब रूबियो ने इस बात को कई बार उजागर किया कि भारत बहरुल काहल खित्ते में भारत अहम स्ट्रेटजिक शराकत दार है। उनका यह बयान दुनिया की 2 सबसे बड़ी और सबसे कदीम जमहूरियत के दरमियान माशी ताल्लुकात की बढ़ती रफ्तार की जानिब इशारा करता है। जनाब रूबियो ने मजीद कहा कि उनके भारत दौरे के दौरान क्वाड के उनके हम मनसबों से भी तबादला ख्याल हुआ। क्वाड ग्रुप में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने लाओ पीडीआर के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा थोंग सावान फोम्बी फाने के साथ कल नई दिल्ली में 10वीं भारत लाओ पीडीआर मुश्तरक कमीशन मीटिंग की मुश्तरक सदारत की। मीटिंग के दौरान फरीकैन ने तिजारत और सरमायाकारी, सेहत, तवानाई, डिजिटल कनेक्टिविटी, तरक्याती शराकतदारी, सलाहियत साजी और सकाफत समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इसके अलावा दोनों फरीकों ने खित्ते में भारत आसियान तआवुन और पेशरफ्त को आगे बढ़ाने पर भी बातचीत की। अपनी इफ्तिताही तकरीर में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और लाओ पीडीआर के दरमियान करीबी सकाफती ताल्लुकात हैं जो बुद्धिज्म और रामायण के मुश्तरक विरसे में नजर आते हैं। जनाब जयशंकर ने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात सदियों पुराने हैं जो गहरे सकाफती और अवाम से अवाम राबतों पर मबनी हैं। दूसरी जानिब लाओ पीडीआर के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा ने कहा कि यह मसरूफियत दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे ताल्लुक की अक्कासी करती है और मौजूदा इलाकाई और आलमी माशी गैर यकीनी और चैलेंजों के बावजूद

0: दोनों मुल्कों के मुश्तरका अजायम की यकीन दहानी कराती है। बरतानिया की वजीर खारजा और दौलत मुश्तरका मामलों की वजीर यूविट कूपर भारत के अपने दो रोज़ा सरकारी दौरे पर कल रात नई दिल्ली पहुंचीं। मोहतरमा कूपर का आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात का प्रोग्राम है। वो आज शाम वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगी। वजारत खारजा ने बताया कि मोहतरमा कूपर का दौरा भारत बरतानिया जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने का मौका फराहम करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पार्लियामानी हलका और दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक वाराणसी एक बार फिर तारीखी बैनुल अक्वामी तकरीब का गवाह बनने जा रहा है। G20 मीटिंगों की कामयाब मेजबानी के बाद वाराणसी अब आज और कल ब्रिक्स सकाफती ग्रुप की दूसरी मीटिंग की मेजबानी करेगा। इस मीटिंग में चीन, ब्राज़ील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया समेत 11 मुल्कों के नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। ये मीटिंग सीनियर सिफारतकारों, पॉलिसी साजों और सकाफती माहिरीन को यकजा करेगी। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: G20 मीटिंग के दौरान काशी के आलमी शोहरत याफ्ता GI टैग वाली मसनूआत की खसूसी नुमाइश मुनक़िद की जाएगी। नुमाइश के दौरान 6 कारीगर 6 मुनफरिद मसनूआत पेश करेंगे जो वाराणसी की गुनागुन दस्तकारी रिवायात की अक्कासी करती हैं। ये मसनूआत काशी के सदियों पुराने फ़न, कारीगरी और सकाफती विरासत का जीता जागता सबूत हैं। नुमाइश के जरिए गैर मुल्की मंदूबीन न सिर्फ इन मसनूआत की इनफरादियत से वाकिफ़ होंगे बल्कि मुकामी फ़नकारों और कारीगरों को अपनी मसनूआत आलमी बाजार तक पहुँचाने का मौका भी मिलेगा। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कलीम अहमद।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में भारत गुज़िश्ता 12 साल के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास नज़रिए के तहत काबिल ज़िक्र यकसर तब्दीली के दौर से गुजरा है। इस अरसे के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई फ्लैगशिप इकदाम किए। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 सालों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों पर खसूसी फीचर पेश कर रहा है। इसके तहत आज कारोबार को आसान बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदामात पर रोशनी डाली जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने पिछले 12 साल के दौरान कारोबार के नज़्म व ज़ब्त से मुतालिक माहौल और कारोबार में आसानी में बेहतरी के लिए कई पायदार इस्लाहात की हैं। साल 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल इख्तरा को परवान चढ़ा रही है, जिससे इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल रहा है और सरमायाकारी पर मबनी तरक्की मुमकिन हो पाई है। हुकूमत की कोशिशों से इस साल मार्च के महीने में स्टार्टअप्स की तादाद 2,23,000 हो गई है, जो साल 2016 में महज 500 के करीब थी। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए महाराष्ट्र के थाने के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बेसर ने कहा कि रास्त और बरह रास्त टैक्सों में हुकूमत की जानिब से की गई इस्लाहात से इक्तसादी इस्तेहकाम आया है।
2: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
1: साल 2016 में शुरू हुआ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम, ख्वातीन कारोबारियों, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, अपनी मदद आप ग्रुपों और दिव्यांग जनों को खरीदारी के असल धारे से जोड़ रहा है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जैम पर एक फरोख्त कुनिंदा और कंपनी की CMD कामिनी गुप्ता ने बताया कि जैम का तरीक़ेकार आसान और शफाफ है।
3: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जिम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
1: नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कलीम अहमद।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पहली आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज शाम गुजरात के शहर अहमदाबाद में शुरू हो रही है, जो खेलों के आलमी मंजरनामे पर एक तारीखी संग मील की हैसियत रखती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी शाम को वर्चुअल तरीके से इस बड़े प्रोग्राम में शामिल होंगे। इस चैंपियनशिप

0: लिए दुनिया भर से योग के मद्दा और एथलीट्स अहमदाबाद में जमा हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस 5 रोजा चैंपियनशिप में अमेरिका समेत 60 मुल्कों के 400 से ज्यादा शुरका हिस्सा लेंगे। इसका एहतमाम वर्ल्ड योगासन के तहत किया गया है और योगासन भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। संगे मेल की हैसियत रखने वाले इस प्रोग्राम का मकसद आलमी सतह पर योग और तंदुरुस्ती के बारे में बेदारी फैलाने के साथ साथ आलमी सतह पर खेल मुकाबलों में योग को शामिल करने की राह हमवार करना है। इस मुकाबले में शामिल होने वाले एथलीट्स योगासन के 7 जुमरों में हिस्सा लेंगे। आलमी सतह पर मेयार परख के पैमाने के तहत कुव्वत, लचक, तवाजुन, पायदारी और दुरुस्तगी की बुनियाद पर योगासन करने वालों को परखा जाएगा। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में वाकई गेस्ट हाउस में गुज़िश्ता रोज़ लगी ज़बरदस्त आग में 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि महलुकीन में 12 गैर मुल्की और 9 भारतीय शहरी शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि केस दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात जारी हैं। पुलिस के मुताबिक आग लगने वाली इमारत के मालिक लोकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। इस दौरान दिल्ली के वजीर आला के दफ्तर ने कहा कि उन खामियों की पूरी संजीदगी से जांच की जाएगी जो इस अफसोसनाक आतिश जदगी वाकई की वजह बनी और जवाबदेही तय की जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कल रात ब्रह्मपुर थाने के तहत आने वाले इलाके में एक प्राइवेट अस्पताल में ज़बरदस्त आग लगने से 3 अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोग ज़ख्मी हो गए। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज केरलम और माहे में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, मगरबी बंगाल के हिमालयी जैली खित्ते, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश होने का इम्कान है। फुटबॉल में मेज़बान भारत गोवा के मारगांव में सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर खवातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुँच गया है। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम।
2: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नेपाल की बरसरे इकतदार पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चेयरमैन रवि लामी छाने की मुलाकात को नुमाया किया है जिसमें पीएम ने कहा कि भारत नेपाल के साथ मिलकर काम करने का ख्वाह है। अखबार की एक और अहम खबर है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कबायली अफराद की हमाजहत तरक्की से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि आदिवासियों की हमाजहत तरक्की के लिए उनके पास जाकर उनके मसाइल को समझना होगा। मरकजी हुकूमत फिजाई आलूदगी को कम करने के मकसद से दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलेगी।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेज के साथ आज नई दिल्ली में बातचीत करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज शिलोंग में शुमाल मशरकी काउंसिल के 73वें मुकम्मल इजलास की सदारत करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका और भारत के दरमियान तिजारती समझौता चंद हफ्ते के अंदर अंदर तय पा जाएगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने केरलम और माहे में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहली आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज अहमदाबाद में शुरू हो रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी शाम को वर्चुअल तरीके से इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और फुटबॉल में गोवा में भूटान को 1 से हराकर भारत खवातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।

8:45 और ठीक 56 सेकेंड आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 MHz पर, और ये है आपका पसंदीदा शो यानी म्यूजिकल दिल लगी पूनम के साथ। नमस्कार, सुप्रभात। वैसे ये जो समय होता है ना, बहुत खास होता है, क्योंकि या तो इस समय हम नाश्ते की टेबल पर होते हैं या ऑफिस के लिए तैयार हो रहे होते हैं, या फिर तैयार होकर निकल चुके होते हैं, ड्राइविंग कर रहे होते हैं। तो अगर आप घर पर हैं, नाश्ता कर रहे हैं या तैयार हो रहे हैं, तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हो आपकी। और अगर आप रास्ते में हैं तो गाने सुनने के साथ साथ ये ज़रूरी है कि आप ट्रैफिक के नियमों का भी पालन करें, म्यूज़िक बहुत लाउड ना प्ले करें और आसपास जो आवाज़ें हैं उनका भी ध्यान रखें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें म्यूज़िकल दिल लगी में और प्यारे प्यारे गानों के साथ शुरुआत करते हैं लता जी की आवाज़ में इस प्यारे गाने से।

नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभना नारायण कथक नृत्यांगना गुरु एवं कोरियोग्राफर हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं आकाशवाणी से कई दशकों से जुड़ी हुई हूँ और मैंने देखा है कि आकाशवाणी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह मंच कलाकारों के लिए अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम रहा है, जिसने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जन जन तक पहुंचाया है। कथक जैसी समृद्ध नृत्य परंपरा को भी आकाशवाणी ने अपनी तरंगों के माध्यम से देश विदेश में पहचान दिलाने में योगदान दिया है। मैं कामना करती हूँ कि आकाशवाणी इसी प्रकार कला, संस्कृति और समाज को जोड़ते हुए नई ऊंचाइयों को छूता रहे। एक बार फिर मैं आकाशवाणी परिवार को 90 वर्ष की बहुत बहुत शुभ

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.delhitalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

8:55 और ठीक 12 सेकंड। भाई गर्मी बहुत बढ़ गई है, अब क्या करें। अब ऐसे में एक चीज़ जो हर समय हमारे साथ है वो है एसी। आप गाड़ी में है तो एसी, आप घर में है तो एसी, तो एसी के बिना हम रह ही नहीं पाते। लेकिन गर्मियों में जब एसी का इस्तेमाल हम करते हैं तो उससे बिजली का खर्चा भी बढ़ जाता है और साथ ही साथ हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि आप बार बार जब टेम्परेचर चेंज करते हैं तो सर्दी जुकाम हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, त्वचा में रूखापन हो सकता है। इनसे बचने के लिए ये ज़रूरी है कि गर्मी में जब एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मॉडरेट यानी संतुलित तरीके से करें। तो तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 26 के बीच में सेट करें, और अगर आप इससे भी कम करते हैं, जैसे मान लीजिए 18 रखते हैं, 16 रखते हैं, तो उससे बिजली का बिल तो ज़्यादा आता ही है, साथ ही साथ कंप्रेसर पर भी दबाव पड़ता है। और इसके साथ साथ पंखे का इस्तेमाल भी आप कर

सकते हैं ताकि जो ठंडी हवा है वो कमरे के कोने कोने तक आराम से पहुंच सके और आप कम कूलिंग में भी आरामदायक महसूस कर सकें। छोटी सी बात है लेकिन अगर आप इसे अपनाएंगे तो काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, जैसे बिजली का बिल कम होगा और साथ ही साथ हेल्थ भी बिल्कुल ठीक रहेगी।

जी हाँ, तो ऐसे बहुत सारे सपने, बहुत सारी चीजें आपके लिए भी चुनकर हम लेकर आते हैं, बेशक वो गाने हो, बेशक वो जानकारियां हो, ताकि आपका दिन बेहतरीन बीते। तो फिलहाल पूनम चलती है, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे, आप रहेंगे एफएम गोल्ड के साथ ही। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद नीतू होंगी आपके साथ म्यूजिकल दिल लगी का सफर आगे बढ़ाने के लिए। तो पूनम को दीजिए इजाजत, प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ऐसे ही एफएम गोल्ड सुनते रहिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई

0: संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शॉ।
1: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लगभग 6:40 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। उन्होंने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस के अनुसार कुल 49 लोगों को उपचार के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दिए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। श्री रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ भी इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। भारत का मुकाबला शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the acting president of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. Ms. Rodriguez arrived in New Delhi yesterday on a 5-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising the Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, Science and Technology, Communication and Information and Transportation. According to the Ministry of External Affairs, India and Venezuela enjoy warm and friendly relations underpinned by cooperation in the energy sector, trade and shared commitment to the Global South. It said the visit is expected to further strengthen bilateral ties and deepen engagement between the two countries across diverse sectors. Union Home Minister Amit Shah will chair 73rd plenary session of Northeastern Council in Shillong, Meghalaya today. The Ministry of Development of Northeast Region said that the session will discuss and deliberate on progress made by the CM high-level task forces constituted for critical sectors of regional development. During the session, presentations will be made on tourism, agriculture and horticulture, investment promotion, self-reliance in milk, eggs, fish and meat, sports promotion, economic corridor development, infrastructure and connectivity, and handloom and handicrafts. The deliberations are expected to facilitate coordinated action among states and stakeholders for achieving shared developmental goals. United Kingdom Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs Yvette Cooper arrived in New Delhi last night on a two-day official visit to India. Ms. Cooper is scheduled to call on Prime Minister Narendra Modi today. She will also have a meeting with External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar this evening. The Ministry of External Affairs said her visit will provide an opportunity to further strengthen the India-UK Comprehensive Strategic Partnership. U.S. Secretary of State Marco Rubio told lawmakers that the United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. Responding to questions about his recent visit to India during a House Foreign Affairs Committee hearing last night, Mr. Rubio said Washington and New Delhi are nearing completion of the pact. In Bihar, three people lost their lives and several others sustained injuries after a massive fire broke out at a private hospital located under the jurisdiction of Brahmapura Police Station in Muzaffarpur last night. Muzaffarpur District Magistrate Subrat Kumar Sen confirmed the deaths and stated that a number of patients remain in critical condition. They have been shifted to other hospitals for treatment as authorities continue to monitor the situation. According to the hospital administration, the blaze originated in the ICU due to an alleged short circuit. The inaugural edition of World Yoga Asan Sports Championship is set to kick off this evening at Trans Stadia in Ahmedabad, Gujarat, marking a historic milestone on the global sporting roadmap. Prime Minister Modi will virtually join the mega event in the evening to share his best wishes as yoga enthusiasts and athletes from across the globe gather for the competition. We have a report from our correspondent.
3: The five-day event will witness participation from over 400 participants from 60 countries, including the United States. Organized under the aegis of World Yogasana and hosted by Yogasan Bharat, this milestone event aims to pave the way for the inclusion of yoga in multi-sports event globally, along with spreading awareness about yoga and wellness globally. Competitors will participate in seven official Yogasan categories, including artistic and rhythmic yoga divisions, where they will be assessed on strength, flexibility, balance, endurance and precision under global standardized judging criteria. Aparna Khun, Akashwani News, Ahmedabad.
2: In football, hosts India have booked their place in the final of CAF Women's Championship after defeating Bhutan 1-0 in the semi-final at Madgaon in Goa yesterday. India Meteorological Department IMD has issued orange alert for heavy rainfall in Keralam and Mahe today. Places over Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Karnataka, Konkan and Goa, Lakshadweep, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu, Puducherry and Uttarakhand are also expected to experience rainfall during the day. And that is the end of this news bulletin.

परफेक्ट कन्वर्सेशन क्या होता है? वो होता है जिसमें दो लोग बराबर पार्टिसिपेट करें, यानी दोनों बोले और दोनों ही सुने।

0: एक वक्त पर एक बोले और दूसरे वक्त पर दूसरा बोले, एक ही बोलता रहे और दूसरा ही सुनता रहे, तो इसे बातचीत नहीं कहते। तो जब भी किसी बातचीत का हिस्सा बने ना, तो याद रखिएगा कि कुछ कहना है और कुछ सुनना भी जरूरी है। हमेशा कहते रहने से बात नहीं बनती है। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप नीतू के साथ, ये है म्यूजिकल दिल लगी।
1: सुनिए,
2: कहिए, कहिए,
1: सुनिए, सुनिए,
2: कहिए, कहिए ना।

ये गाना है बातों बातों में फिल्म का, और इस फिल्म का निर्देशन किया था बासु चैटर्जी ने, जिनकी आज पुण्यतिथि है। आम आदमी की छोटी छोटी खुशियां, उलझने और रिश्तों को बड़ी बारीकी और सहजता से उन्होंने बड़े पर्दे पर उतारा। रजनीगंधा, छोटी सी बात, चितचोर, पिया का घर, दिल लगी जैसी फिल्मों को हम में से कोई भी भुला नहीं सकता है। आम आदमी की इन साधारण कहानियों ने हम सब पर बहुत ही असाधारण असर डाला है। और आज ना मशहूर गायक, अभिनेता, म्यूजिक कंपोजर और प्रोड्यूसर एसपी बालसुब्रमण्यम का जन्मदिन है, पर गायकी में उनका कोई जवाब नहीं है। तो अभी मैं जो गाना आप सुनने जा रहे हैं वो एक दूजे के लिए फिल्म से है, जिसमें उनकी आवाज़ है, लता मंगेशकर की आवाज़ है, और बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। इस फिल्म की कोई भी गाना आप उठा के सुन ले, तो आइए सुनते हैं फिर ये गाना।

नमस्कार, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में AIR परिवार और करोड़ों श्रोताओं को हार्दिक बधाई। आकाशवाणी की महत्ता को चंद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए मौसम का पूर्वानुमान वर्षों तक किसानों और सरहद की चौकसी करने वाले जवानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है और आकाशवाणी ने इस दायित्व को वर्षों तक अकेले निभाया है। आज भी इसकी महत्ता कम नहीं है, तो ऐसे महनीय कार्य के लिए आकाशवाणी को इस पड़ाव पर हार्दिक शुभकामनाएं।

आकाशवाणी पर आप बहुत सारे प्रोग्राम सुनते हैं, जैसे कि अभी आपने सुना ही कि मौसम की जानकारी, समाचार, लेकिन जो फिल्मी गीत है ना, वो तो आप सुनते ही आ रहे हैं और आज भी अभी भी सुन रहे हैं। फिल्मों में भी रेडियो जो है वो एक अहम रोल प्ले करता रहा है। कभी हीरो या हीरोइन जो है वो रेडियो पर गाना गा रहे होते हैं, कभी घर में रेडियो पर गीत सुना जा रहा होता है। शुरुआती फिल्मों में एक फिल्म जो है वो मुझे याद आ रही है, जो 1939 में आई थी, दुश्मन नाम की फिल्म, जिसमें केएल सहगल साहब थे और रेडियो पर गाना गाते दिखते हैं। इस फिल्म में ना एक डायलॉग 11 बार रिपीट हुआ है। जब जब सहगल साहब रेडियो पर आते हैं वो बोलते हैं, आवाज की दुनिया के दोस्तों। बिल्कुल, आवाज की दुनिया के दोस्तों, ये लाइन आपने कई दफा सुनी होगी। अनुरोध फिल्म के गाने में भी एक लाइन है, वही गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले एक सवाल, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? बस इसी सवाल का सिंपल सा जवाब आपको भेजना है। आपको भेजना कहाँ है? ईमेल करना है fmgoldair@delhi@gmail.com पर।

0: invites online applications from unmarried male and female candidates for 10 plus 2 BTEC cadet entry scheme, permanent commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Viksit Samrit Bharat. Join Indian Navy.
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है. दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है.
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल. डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी. अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा.
1: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस. फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए.
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान. रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com. कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से.
4: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले.
5: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा.
6: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है.
5: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली

आकाशवाणी एफएम गोल्ड जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, ये है म्यूजिकल दिल लगी और मैं हूँ आपके साथ नीतू। ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधाओं से जोड़ते हुए उनका समग्र विकास करने की योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन। इस मिशन के तहत गांव के समूह को विकसित कर वहां पर सड़क, बिजली, पानी, स्वच्छता, कौशल विकास और रोजगार जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसका लक्ष्य ये है कि ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो और लोगों को रोजगार के लिए शहरों की तरफ पलायन न करना पड़े, क्योंकि गांव है तो हम हैं, गांव ना हो तो फिर क्या ही बात है। बहुत सारे लोग आजकल जो शहरों में रह रहे हैं ना, वापस से गांव के माहौल को ढूंढते हैं, तो ऐसे में गांव की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो उससे बेहतर कुछ और हो नहीं सकता।

0: जिंदगी में जब हमारे पास कुछ नहीं होता है ना, तो हम बड़े सुखी होते हैं। हालांकि हमें तब नहीं लगता है कि हम सुखी हैं, लेकिन होते हैं। ये बात अभी मैं आपको जो बात बताने वाली हूँ ना, उससे साबित हो जाएगी। उड़ीसा के एक किसान थे जिन्होंने अपने किसान हैं एक्चुअली, उन्होंने अपने बागीचे में दुनिया का सबसे महंगा आम जो है वो उगाया है। उस आम की कीमत है करीब 3 लाख रुपए प्रति किलो। अब आप सोच लीजिए, 3 लाख रुपए प्रति किलो का वो आम है जिसका नाम होता है मियाज़ाकी। ये मियाज़ाकी जो है वो उस किस्म है, जापानी आम है, और ये आम जो है वो अपनी मिठास और खुशबू के लिए मशहूर होता है। और लेकिन हुआ ये है कि जो देवा हैं, जो कि उड़ीसा के किसान, उनकी जो नींद है ना वो उड़ चुकी है रातों की। पूछिए क्यों? क्योंकि इतना महंगा आम उन्होंने उगा तो लिया है, लेकिन अब वो उसकी रखवाली करते फिर रहे हैं कि कहीं वो चोरी ना हो जाए। चोरी हो गया तो 3 लाख रुपए प्रति किलो का जो आम है वो बेचेंगे कैसे, और उनकी तो लाखों की कमाई जो है वो मारी जाएगी। इसीलिए मैंने कहा था कि जब तक कुछ नहीं होता है ना, हम बड़े सुखी होते हैं। जब कुछ आ जाता है तो उसे खोने का जो डर है ना, वो बड़ा भयानक होता है। और यही हुआ है उड़ीसा के इन किसान के साथ।
1: ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए।

0: क्या हुआ,
1: जो हुआ अच्छा हुआ और अब जो आगे होने वाला है वो भी अच्छा है। तो हमने आपसे सवाल पूछा था कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। सही जवाब है 13 फरवरी। नवीन भाटिया, मनोहर लाल गांधी, कृष्ण कुमार गुप्ता, सुमित सिन्हा, प्रकाश गोगिया, जय प्रकाश दुबे, संतोष सक्सेना, प्रद्युम्न वर्मा, महेश अग्रवाल, मीना अग्रवाल, तिलक राज अरोड़ा, अनीता तेजवानी, लखमीर सिंह, राजा आर और कैलाश शर्मा, इन सब ने सही जवाब दिया है। लेकिन जिनसे हमारी बात हो रही है उन्होंने भी सही जवाब दिया है, वो है प्रफुल्ल मोहर और ये भी एक किसान है। प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम गोल्ड पर।
2: थैंक यू मैम, थैंक यू।
1: हाँ, तो आप क्या करते हैं?
2: खेती किसानी करता हूं।
1: खेती किसानी करते हैं, तो अभी कैसा मौसम लग रहा है खेती किसानी का?
2: अच्छा मैम, बारिश की होने की संभावना है अब थोड़ी देर में।
1: अच्छा, तो बारिश से आपको फायदा पहुंचने वाला है ना?
2: हाँ मैम।
1: तो हम भी दुआ करते हैं जल्दी से बारिश हो जाए और खेतों में आपकी जो खेती है, जो आपकी फसलें हैं, वो एकदम बढ़िया से हो गए। तो आज आपने सही सवाल का जवाब दिया है। तो रेडियो आप बताइए कब से सुनते आ रहे हैं?
2: मैम तो मैं 2005 से रेगुलर सुन रहा मैम। पहले एफएम सुनता था अपने लोकल स्टेशन और निजोनेर पर, सभी स्टेशन सुनता मैम।
1: अच्छा, एफएम के सभी सुनते हैं। कौन से जो हैं चैनल्स आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं आकाशवाणी?
2: एफएम गोल्ड दिल्ली का, एफएम रेनबो दिल्ली, मुंबई का एफएम गोल्ड, एफएम रेनबो।
1: अच्छा, ये सब आप सुन पाते हैं वहाँ पे?
2: हाँ नहीं, मैं ऐप पर सुनता।
1: अच्छा, ऐप पर सुनते हैं आप? वाह वाह, आप अच्छा लग रहा है कि आपने भी टेक्निक यूज करना शुरू कर दिया है।
2: पहले दो तीन में एफएम वाले लोकल स्टेशन सुनता था मैम, अब सभी सुनता, जितने भी हो चाहे, जो भी चाहे ऑनलाइन।
1: ओके, चलिए, तो इसी खुशी में कि आपने तकनीक के साथ कदम से कदम मिलाया है और आप हमारे लाइफलाइन हैं, बेसिकली किसान जो है वो हमारी लाइफलाइन होते हैं। तो बताइए आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आज?
2: तो एसपी बाला सुब्रमण्यम का मैंने प्यार किया फिल्म का जल्दी वाना बिन सोचने के माने ना।
1: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

दिल वाकई ऐसा ही होता है, उसको समझाना समझना उसे कुछ नहीं आता है। अब देखिए ना कि हमारा दिल चाहता है हम आराम करते रहें, लेकिन जो सेहत है वो कहती है कि बाहर निकलो, वॉक करो, क्योंकि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है वॉक। खुली हवा में निकलती जो ताजगी महसूस होती है ना, तब पैदल चलना जो है वो खलता नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ना ट्रेडमिल पर दौड़ना बेहतर समझते हैं, पर क्या आपको पता है कि ट्रेडमिल का आविष्कार कैदियों को सजा देने के लिए किया गया था? कैदियों के चलने से जो ऊर्जा पैदा होती थी ना, उसका उपयोग अनाज पीसने या पानी खींचने के लिए किया जाता था।

जिससे कि उन्हें कई कई घंटे चलने पर मजबूर किया जाता था। बाद में इस तरह की सजा पर रोक लगी और फिर इस मशीन में सुधार करके इसे फिटनेस इक्विपमेंट बना दिया गया। पहले लोग मजबूरी में इस पर चलते थे, आजकल लोग खुशी खुशी इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना।

0: आज है 4 जून और हर साल 4 जून को मनाया जाता है आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये दिन उन बच्चों की पीड़ा और अधिकारों की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है जिनका बचपन युद्ध, हिंसा, आतंकवाद और विभिन्न प्रकार की आक्रामक गतिविधियों का शिकार बना है। मासूम बच्चे ना किसी भी संघर्ष में सबसे ज्यादा असहाय पीड़ित होते हैं। उनका बचपन जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, उनकी मानसिक शांति प्रभावित होती है और ये दिन ना हमें बच्चों के लिए सुरक्षित, शांतिपूर्ण और संवेदनशील वातावरण बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। तो इस दिन के बारे में जरा गौर से सोचिए और अगर कभी आपको मौका लगे तो ऐसे बच्चों की मदद जरूर कीजिए। फिलहाल म्यूजिकल दिल्लगी का समय यहीं तक है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। और अब समाचार।
1: खत्म होंदा है अगले प्रोग्राम छेती ही तो आड़े नाल फिर मुलाकात होएगी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। इस बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक की जानकारी दी है।
1: ये हमारा 23rd प्लेनरी मीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट होने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक निःशुल्क

बस सेवा उपलब्ध कराएगी। सिविल, पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जानी है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। शेयर बाजार दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 35 अंक गिरकर 74,311 पर, जबकि निफ्टी 5 अंक फिसलकर 23,401 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज जयंती है भारतीय सिनेमा के इतिहास की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक नूतन समर्थ बहल की, जिन्हें सिने प्रेमियों के बीच नूतन के नाम से जाना जाता है, जिनका जन्म 4 जून 1936 को मुंबई में हुआ था। दोपहर के 1:11:14 हुए हैं 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM गोल्ड और आपके साथ आज के कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल में मैं हूं नईम अख्तर। नूतन के बारे में बात करेंगे हम आज के इस कार्यक्रम में। नूतन जो उन सुलझी हुई महिला किरदारों में अपनी स्वाभाविक अदाकारी के लिए जानी जाती थी, जिन्हें अपरंपरागत माना जाता था। 4 दशक लंबे अपने करियर में उन्होंने 80 से ज्यादा फिल्मों में मुख्तलिफ किरदार निभाए। उन्हें 7 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले, जिनमें रिकॉर्ड 5 पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए शामिल हैं। जी हाँ, ये एक रिकॉर्ड है जिसको कोई नहीं तोड़ पाया, लेकिन जिसकी बराबरी उनकी भांजी काजोल ने जरूर की है। 1974 में नूतन को भारत का 4th सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री मिला और भी बहुत सारे पुरस्कार मिले। उनके फिल्मी जीवन के साथ साथ उनके निजी जीवन के बारे में भी बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है कलाकार बेमिसाल। बात चलेगी आज नूतन की, उन्हीं की फिल्मों के कुछ गीत आप तक पहुँचाएंगे हम।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बात कर रहे हैं आज के कलाकार बेमिसाल कार्यक्रम में नूतन की। मुंबई में फिल्म मेकर कुमार सेन समर्थ और अभिनेत्री शोभना समर्थ के घर जन्मी थी नूतन। पहली बार 1945 में अपने पिता की फिल्म नल दमयंती में एक बच्ची के रूप में कैमरा के सामने कुछ देर के लिए नजर आई थी। उसके बाद 14 साल की उम्र में 1950 की फिल्म हमारी बेटी से नायिका के तौर पर बाकायदा शुरुआत की थी, जिसका निर्देशन उनकी माँ ने किया था। उसके बाद उन्होंने 1951 की दो फिल्मों नगीना और हम लोग, इन दोनों में काम किया। दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बात हम करेंगे इसी कार्यक्रम में थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी इसी दशक यानी कि 50 के दशक के आखिर में 1957 में एक फिल्म रिलीज हुई थी पेइंग गेस्ट, जिसने बहुत कामयाबी हासिल की थी। उसी फिल्म का एक सुपरहिट गीत सुनते हैं।

आकाशवाणी समाचार हेमांगिनी सोनारा वांचे छे। सौ प्रथम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वेनेजुएला कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख डेल्सी रॉड्रिक्स वच्चे नवी दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत। प्रधानमंत्री आज गुजरात अमदावाद में योजनारी प्रथम विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप ने वर्चुअली संबोधित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूए कहूं भारत और लाओस वच्चे पारंपरिक गाढ़ संबंध। बिहार मुजफ्फरपुर में एक खानगी हॉस्पिटल में आग लगवा चार लोगों मौत। श्रीलंका की एक अदालते भूतपूर्व राष्ट्रप्रमुख गोटाबाया राजपक्षे और बे भूतपूर्व सैन्य गुप्तचर अधिकारी विदेश प्रवास पर प्रतिबंध लादो। समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नवी दिल्ली में वेनेजुएला कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख डेल्सी रॉड्रिक्स साथ बातचीत कर रहा है। आ चर्चा में भारत वेनेजुएला संबंधों संपूर्ण स्पेक्ट्रम समावेश थशे। ऊर्जा सुरक्षा व्यापार और रोकाण फार्मास्यूटिकल्स आरोग्य संभाल परिवहन और नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में वधु सहयोग साधवा चर्चा थशे। श्रीमती रॉड्रिक्स गई काले भारत की पांच दिवस की मुलाकाते नवी दिल्ली पहुंचा था। तेमनी साथे विदेश अर्थतंत्र नाणा विज्ञान और टेक्नोलॉजी और परिवहन मंत्रीओं प्रतिनिधि मंडल पण छे। विदेश मंत्रालय जणाव्युं हतुं के वेनेजुएला प्रतिनिधिमंडल भारत की टेक्नोलॉजिकल औद्योगिक क्षमताओं में समझ मेळववा और सहयोग माटेनी तको शोधवा माटे ऊर्जा फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो क्षेत्रों साथे जोड़ायेला अनेक स्थळोनी मुलाकात लेशे। भारत ऊर्जा और रोकाणना क्षेत्रों में वेनेजुएला महत्वपूर्ण भागीदार रह्या छे। भारतीय जाहिर क्षेत्र उपक्रमों ऊर्जा क्षेत्र में वेनेजुएला में नोंधपात्र रोकाण कर्युं छे अने तेओ तेमनी हाजरीने वधु वधारवा माटे तको शोधवा आतुर छे। आ मुलाकात द्विपक्षीय संबंधों ने वधु मजबूत बनावानी अने विविध क्षेत्रों में बने देशों वच्चे जोड़ाण ने गाढ़ बनावानी अपेक्षा छे। विदेश मंत्री एस जयशंकरे आज सवारे नवी दिल्ली में वेनेजुएला कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख डेल्सी रॉड्रिक्स साथ मुलाकात की। सोशल मीडिया संदेश में डॉ जयशंकरे कहूं कि भारत और वेनेजुएला वच्चे दीर्घकालीन संबंधों रहा है जो भविष्य में यथावत रहेशे। विदेश मंत्री आशा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साथ मुलाकात बने देशों वच्चे सहयोग ने वधु मजबूत बनावशे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आवतीकाले गुजरात और केन्द्रशासित प्रदेश दमण की मुलाकात लेशे। तेओ सूरत में रोड पावर और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रूपयाथी वधुना अनेक विकास प्रोजेक्ट लोकार्पण और शिलान्यास करशे। श्री मोदी सूरत में 200 पथारीवाड़ी ईएसआईसी हॉस्पिटल लोकार्पण करशे। प्रधानमंत्री दहेज पेट्रोलियम खाते आधुनिक वीज वितरण अपग्रेड अद्यतन गंदा पाणीना निकाल और सारवार माळखा सहित गुजरात सरकार की अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं उद्घाटन करशे। सांजे प्रधानमंत्री मोदी दमण पहुंचशे और लगभग 2,970 करोड़ रूपयाना विकास प्रोजेक्ट शिलान्यास करशे। आ प्रोजेक्ट आरोग्य संभाल नागरिक उड्डयन पर्यटन माळखागत सुविधा कनेक्टिविटी और जाहिर कल्याण सहित विविध क्षेत्रों ने आवरी ले छे। प्रधानमंत्री लगभग 1,340 करोड़ रूपयाना प्रोजेक्ट राष्ट्र ने समर्पित करशे जेमां नमो एरपोर्ट और नमो हॉस्पिटल नवू टर्मिनल बिल्डिंग समावेश थाय छे। नवू एरपोर्ट टर्मिनल प्रादेशिक हवाई जोड़ाण में नोंधपात्र वधारो करशे अने प्रदेश में आर्थिक विकास ने बनावशे। गुजरात अमदावाद में आज थी प्रथम विश्व योग

नूतन के निजी जीवन की बात करें तो उनकी नानी रतनबाई, मौसी नलिनी, जयवंत, बहन तनुजा, भांजियां काजोल और तनीषा भी अभिनेत्रियां हैं। नूतन की शादी नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से 1959 में हुई थी। उनके इकलौते बेटे का नाम मोहनीश बहल है और वो भी एक अभिनेता है। मोहनीश की शादी अभिनेत्री एकता से हुई और उनकी पोती यानी नूतन की पोती प्रनूतन बहल भी एक अभिनेत्री है। उनकी जिंदगी के आखिरी सफर के बारे में भी बात करके कार्यक्रम का समापन करते हैं। 1990 में नूतन को ब्रेस्ट कैंसर का पता चला और उनका इलाज कराया गया। फरवरी 1991 में उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और वहाँ पता चला कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जिन दिनों उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था उन दिनों वो दो फिल्मों की शूटिंग कर रही थी, गर्जना और इंसानियत। उनके जीवित रहते ही उनके जो आखिरी फिल्म रिलीज हुई थी वो थी 1989 की कानून अपना अपना, और उनके निधन के बाद दो फिल्में और रिलीज हुई 1992 में नसीब वाला और 1994 में इंसानियत। बस जिंदगी इतनी ही है, हर कदम एक नई जंग है। यही उनकी आखिरी वो वाली फिल्म थी जिसके लिए उनको फिल्म फेयर का अवार्ड मिला था।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असदुल्ला। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वेंजुवेला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिगेज़ के दरमियान बातचीत में तवानाई की यकीनी फराहमी, तिजारत व सरमायाकारी एजेंडे में सरफहरिस्त हैं। मरकजी वज़ीर दाखला अमित शाह की ज़ेर सदारत शिलोंग में शुमाल मशरिकी कौंसिल का 73वां मुकम्मल इजलास जारी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मिजोरम म्यामा में सुपारी स्मगलिंग नेटवर्क के सिलसिले में 9 मकामात पर छापों की कार्रवाई अंजाम दी है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान में फौजी कार्रवाई को ख़त्म करने पर मुत्तफिक हो गए हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने करारदाद मंजूर की है। जुनूब मगरबी मानसून केरलम पहुंच गया है और आज शाम अहमदाबाद में पहली आलमी योग आसन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप शुरू हो रही है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में वेंजुवेला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत में तवानाई की यकीनी फराहमी, तिजारत और सरमायाकारी, अद्वियात, सेहत की देखभाल, नकलो हरकत और काबिले तजदीद तवानाई जैसे शोबों में भारत और वेंजुवेला के दरमियान इश्तराक के मजीद इम्कान तलाश करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर ए जयशंकर ने मोहतरमा रोड्रिगेज से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और वेंजुवेला के दरमियान ताल्लुकात के सिलसिले में उनके देरीना अज़्म को एहतराम की निगाह से देखता है। उनके हमराह खारजी उमूर, इक्तसादी मालियात, साइंस और टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन के वज़रा का एक वफ्द भी है। इम्कान है कि उनके इस दौरे से मुख्तलिफ शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान राबते और बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। वो सूरत में सड़क, बिजली और सनअती शोबे से मुतालिक 18,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें वक्फ करेंगे। जनाब मोदी सेहत की देखभाल की जदीद सहूलियात फराहम करने की खातिर सूरत में 200 बिस्तर वाले ESIC अस्पताल का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत गुजरात के मुख्तलिफ अहम इकदामात का भी आगाज करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और अवामी जमहूरिया लाओ के दरमियान करीबी तहजीबी रवाबित हैं जिनकी अक्कासी बौद्ध मत और रामायण की मुश्तरका विरासत से होती है। उन्होंने मजीद कहा कि इस साल दोनों ममालिक सिफारती ताल्लुकात के क्याम के 70 साल मुकम्मल होने की तकरीब मना रहे हैं जो दो तरफा ताल्लुकात में एक अहम संगे मील है। कल राष्ट्रपति भवन में अवामी जमहूरिया लाओ के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा थोंग सावन फार्माविया का खैर मकदम करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि अक्टूबर 2024 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आसियान से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए अवामी जमहूरिया लाओ का दौरा किया था। दौरे के दौरान कई समझौते हुए थे जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान इश्तराक में मजीद तेजी आई है। सदर जमहूरिया ने कहा कि अगरचे भारत और अवामी जमहूरिया लाओ के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में इजाफा हुआ है लेकिन तिजारत और सरमायाकारी में मजीद इजाफे की गुंजाइश मौजूद है। उन्होंने कहा कि भारत इतिलाती और मुआसलाती टेक्नोलॉजी, सेहत दवाओं, ज़रात, आबपाशी, मैन्युफैक्चरिंग, काबिले तजदीद तवानाई और बिजली समेत दीगर शोबों में अवामी जमहूरिया लाओ के साथ इश्तराक को वसअत देने की

0: खुशी होगी। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में वेंजुएला की कायम मकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेस से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत वेंजुएला के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है। वजीर खारजा ने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ मोहतरमा डेल्सी रोड्रिगेस की मुलाकात से दोनों मुल्कों के दरमियान इश्तराक मजीद मुस्तहकम होंगे। मेघालय के शिलोंग में शुमाल मशरिकी काउंसिल का 73वां मुकम्मल इजलास जारी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इसकी सदारत कर रहे हैं। शुमाल मशरिकी खित्ते की तरक्की के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया, मेघालय के गवर्नर सी एच विजय शंकर, रियासत के वजीर आला कोनार्ड के संगमा, डोनर के मरकजी वजीर ममलकत सुकांतु मजुमदार, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन और डोनर की वजारत में सेक्रेटरी संजय जाजू मीटिंग में मौजूद हैं। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के गवर्नर और वज़राए आला भी दीगर मुख्तलिफ सरकर्दा शख्सियात के साथ मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मिजोरम म्यामा सरहद से मुत्तसिल कस्बे चामफई में आज 9 मकामात पर बड़े पैमाने पर तलाशी की कार्रवाई कर रहा है। एजेंसी ने कहा है कि ये कार्रवाई भारत में बड़े पैमाने पर बर्मा से चोरी छुपे गैर कानूनी सुपारी लाने के सिलसिले में सरहद के पार इंतहाई मुनज्जम नेटवर्क के खिलाफ की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि पहलवान विनेश फोगाट को सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाज़त देने के दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ भारत की कुश्ती फेडरेशन की दरख्वास्त के बाद रूनमा होने वाले वाकयात के मद्देनज़र बेमाने हो गई है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में किए गए मुशाहिदात पर गौर करने से इनकार करते हुए कहा है कि अदालत के इस फैसले को हाई कोर्ट के मुशाहिदात और नताइज के इयादे के तौर पर न देखा जाए। बेंच ने मजीद कहा है कि तमाम मामलात खुले रखे गए हैं। पहली आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज शाम गुजरात के शहर अहमदाबाद में शुरू हो रही है, जो खेलों के आलमी मंजरनामे पर एक तारीखी संग मील की हैसियत रखता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस 5 रोजा चैंपियनशिप में अमरीका समेत 60 मुल्कों के 400 से ज्यादा शुरका हिस्सा लेंगे। इसका अहतमाम वर्ल्ड योगासन के तहत किया गया है और योगासन भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। संगमील की हैसियत रखने वाले इस प्रोग्राम का मकसद आलमी सतह पर योग और तंदुरुस्ती के बारे में बेदारी फैलाने के साथ साथ आलमी सतह पर खेल मुकाबलों में योग को शामिल करने की राह हमवार करना है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान ने करारदाद मंजूर की है, जिसका मकसद डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में मजीद फौजी कार्रवाई करने से रोकना है। यह करारदाद 208 के मुकाबले 215 वोटों से मंजूर की गई। 4 रिपब्लिकन अरकान ने जंग के खिलाफ डेमोक्रेट्स का साथ दिया। जंग से मुतालिक सदर ट्रंप के इख्तियारात पर रोक लगाने की यह ऐवान की चौथी कोशिश है। ऐवानी नुमाइंदगान में मंजूर की गई इस करारदाद को रिपब्लिकन के कंट्रोल वाली अमरीकी सीनेट से मंजूर कराना जरूरी होगा। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज जुनूब मगरबी मानसून के केरलम पहुंचने की तस्दीक की है। आईएमडी के मुताबिक मानसून के पहुंचने में 3 दिन की ताखीर हुई है, क्योंकि मानसून केरलम पहली तारीख तक पहुंच जाता है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता आज साकेत के मैक्स अस्पताल गईं और कल मालवीय नगर में आग लगने के बड़े वाकये में जख्मी लोगों की खैरियत मालूम की। उन्होंने जख्मी अफराद और उनके कुनबे के लोगों से भी बातचीत और उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों से भी उनके जारी इलाज के बारे में पूछा और ओहदेदारान को सभी जरूरी मदद फराहम करने की हिदायत दी। आग लगने के इस बड़े वाकये में हलाक होने वालों के कुनबों को 10-10 लाख रुपए की नकद इमदाद का ऐलान किया गया। शदीद तौर पर जख्मी लोगों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सरकर्दा प्रोड्यूसर और सीबीएफसी के साबिक चेयरपर्सन पहलाज नहलानी का आज मुंबई में इंतकाल हो गया है। वो 76 वर्ष के थे। उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके अहम ताउन के लिए याद किया जाएगा। श्रीलंका के अंगूरथोटा में बतागोटा के मकाम पर बुजुर्ग अफराद की देखभाल के एक मरकज में आग लगने के वाकये में मरने वालों की तादाद 11 हो गई है, जबकि 3 अफराद लापता हैं, जबकि 7 जख्मी अफराद को इलाज के लिए मकामी जिला अस्पताल होराना में दाखिल कराया गया है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलांग में चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है। इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
3: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है, शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और

0: केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
1: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मित एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
2: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर

23,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सांभळी रह्या छो 100.1 FM गोल्ड खरा सोना कार्यक्रम एकदम खरा सोना जीव गीत गुर्जरी अने आजे आपनी साथे छे तरुलता करोडिया। तमाम मित्रों ने तरुलता करोडिया ना सस्नेह नमस्कार।

जीवन ले परीक्षा तो घबरावानू नहीं, काम कदी जो बगड़े तो डरवानू नहीं, मेहनत तू करे जा हूँ तारी साथे छू, लोको जे कहे ते मन पर लेवानू नहीं, समय बदलाशे तू चिंता कर तो नहीं, जीवन ले परीक्षा तो गभरावानू नहीं। मित्रों हाल में एक रील जोई, रील में आ गीत जोयू, गीत सांभळ्यू ने गीत गम्यू एटले तमारी साथे शेर कर्यू। तो नानपण में आपणे

अनेक एवी वार्ताओ सांभळी हती जेमा एक राजा हतो, खूब वैभवशाळी, खूब मोटू राजपाट। दुश्मन राजा एना राज पर चढ़ाई करे छे, बधुज लूटी ले छे, एनो वैभव, एनो राजपाट, अने राजानी हालत हवे भिखारी जेवी थई जाय छे। मित्रों, रामायण में आपणे जोयुं के भगवान श्री रामनो राज्याभिषेकनी तैयारी चलती होय छे, अने क्या एमने 14 वर्षना वनवास पर जवुं पड़े छे। मित्रों, हमेशा हूँ अमिताभ बच्चनों दाखलो टाकती होउं छुं के शून्यमांथी शिखर पर, शिखर परथी जमीन पर, जमीन परथी फरी शिखर पर, आना माटे मेहनत जोईए। अने हाँ, ज्यारे आपणे करता होईए ने त्यारे लोको तो मेणा टोणा मारे, आपणे ए सांभळवानो नहीं, अने मेहनत करता रहेवानो।

आपणी ज वार्ताना आपणी ज राजा ने राणी। मित्रों, खूब सरस संसार चलतो होय छे, खूब सरस नौकरी अने एमा मोटू पैकेज, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, लोन पर बधीज सुख साहिबीओ वसावी लीधी छे। हवे कोई ज चिंता नथी, कारण के बधूज गणित मंडाई चूक्यो छे। अरे, पण अचानक कंपनी लॉस में गई अथवा तो कोई कारणसर एक अथवा त्रण महीनानी नोटिस आपीने कही देवामां आव्यो, भाई हवे तमारी जरूर नथी, त्यारे शुं थाय? मन में कयो विचार आवे? विचार आवे खरो के पछी विचार शून्य बनी जाए, अथवा तो एवं लगे कि पग नीचे थी जमीन खसी गई है? मित्रों, फोन करो, नंबर है 0224515413, 0224515435।

प्रॉफिट अने प्रॉफिट ज भविष्यनी कोई चिंता नथी। हं आपणे तो मात्र लीला लहर। अचानक चित्र पलटाई गयुं, मंदी आवी, लॉस थयो, चोरी थई, लूटवाट थयो, विश्वासघात थयो, आग लागी, अकस्मात सर्जायो अने बैलेंस शीटमां शून्य शून्य शून्य आंकड़ाओ गोड़ गोड़ फरवा लाग्या। लेनदारों घरे आवीने उभा रह्या, हवे शुं? कयो विचार मन में आवे? विचार आवे के पछी विचार शून्य।

0: सार्थक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था। श्री टंडन ने कहा कि ऊर्जा के अलावा खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वेनेजुएला की राष्ट्रपति सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची थीं। उनके साथ विदेशी मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यविट कूपर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलांग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। सत्र में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है ताकि साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक की जानकारी दी।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 घंटों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की पुष्टि की है। मानसून 3 दिन की देरी से आया है। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 4 दिन के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी तेज वर्षा हो सकती है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर आंधी आने की प्रबल संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज तेज हवा के साथ हल्की वर्षा हुई। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मड़गांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा, जिसमें भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi today held wide-ranging discussions with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. In a social media post, the Ministry of External Affairs said that the leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare, automobiles, among others. It added that the leaders also exchanged views on global and regional issues of mutual interest. The ministry noted that both sides reaffirmed their commitment to deepening the bilateral partnership and advancing the interests of the Global South. Addressing media after the talks, Secretary E.S. Rudrendra Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries, as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation.
3: The discussions also went into broadening the economic partnership to other areas, not just in the energy sector, but also in areas like mining, animal husbandry, transportation, agriculture equipment, automotive sector, and pharmaceuticals, to try and work out ways in which Indian commercial entities can enter the Venezuelan market successfully.
2: Ms. Rodriguez arrived in New Delhi yesterday on a five-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising the Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, Science and Technology and Transportation. The 73rd plenary session of Northeastern Council is underway in Shillong, Meghalaya. Union Home Minister Amit Shah is chairing the session. Discussion on progress made by the CM high-level task forces constituted for critical sectors of regional development is high on the agenda. The Ministry of Development of Northeast Region said the deliberations are expected to facilitate coordinated action among states and stakeholders for achieving shared developmental goals. Northeast Vision Plan 2047 to provide a long-term roadmap for transforming the northeastern region into a vibrant hub of economic growth will also be discussed, as also the connectivity, innovation, sustainability and cultural prosperity by 2047. Mera Yuva Bharat, My Bharat, has been officially recognized by Guinness World Records for achieving the title of most users to take an online quiz in 1 week, with over 3,90,000 participants who completed the entire length of the quiz. Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandaviya received the certificate in a ceremony held in New Delhi today. The record was achieved through the Viksit Bharat Young Leaders Dialogue 2026 quiz from the 25th to 31st of October last year. Union Minority Affairs Minister Kiran Rijiju today said that technology has played a crucial role in improving governance and ensuring the effective delivery of welfare schemes. He made the remarks while addressing the Reforms Utsav, celebrating 12 years of reforms organized by the Ministry of Minority Affairs in New Delhi today. The U.S. House of Representatives passed a resolution that seeks to halt President Donald Trump from taking further military action in Iran. The 215-208 vote was successful after four Republicans joined Democrats in a rare public show of disapproval of the war, which began in February. This is the fourth attempt by the House to rein in Trump's war powers, which critics say lack congressional approval. The India Meteorological Department has confirmed the arrival of southwest monsoon in Kerala today. According to the IMD, the monsoon is delayed by 3 days, as the normal onset date of monsoon over Kerala was 1st of this month. The weather agency predicted heavy to very heavy rainfall at isolated places over Kerala and Mahi till 9th of this month. It is also estimated heavy rainfall over north interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 4 days. The National Human Rights Commission organized a meeting of its core group on environment and climate on the theme Heat Wave and its Mitigation in Urban Areas in New Delhi. Speaking on the occasion, NHRC Chairperson Justice V. Ramasubramaniam emphasized the need for stronger protection of existing natural ecosystems. Benchmark domestic equity indices ended on a flat note today. The BSE Sensex rose 14 points to close at 74,360. The NSE Nifty added 11 points to settle at 23,417. And that is the end of this news bulletin.

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के।
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success.

0: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1 जुलाई 2027 से प्रारंभ होने वाले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना स्कंधों के 158वें पाठ्यक्रम तथा भारतीय नौसेना अकादमी के 120वें पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 13 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा 2026 आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा 2026 की विस्तृत सूचना दिनांक 20 मई 2026 को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख है 9 जून 2026 और उम्मीदवार केवल ऑनलाइन मोड द्वारा आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट का पता है upsconline.nic.in। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति आधार पर 3 वर्षों की अवधि के लिए निदेशक के एक पद को भरने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख अब 18 जून 2026 तक बढ़ा दी गई है। इस संबंध में आगे के विवरण के लिए देखिए भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट www.iwai.nic.in। इस्पात मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम मेकॉन लिमिटेड में कनिष्ठ अधिकारी प्रशासन का एक पद रिक्त है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.mekonlimited.co.in। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग में सदस्य पर्यावरण एवं पुनर्वास का एक पद रिक्त है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए देखिए जल संसाधन नदी विभाग और गंगा संरक्षण विभाग की वेबसाइट jalshakti-dowr.gov.in। इसके अतिरिक्त ये जानकारी dopt.gov.in और nca.gov.in पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय महिला आयोग जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। सीनियर पीपीएस एक पद, सहायक विधि अधिकारी एक पद, अनुभाग अधिकारी एक पद, अनुसंधान अधिकारी 2 पद, निजी सचिव 1 पद, सहायक पीआरओ 1 पद, विधि सहायक 8 पद, अनुसंधान सहायक 4 पद, सहायक अनुभाग अधिकारी 2 पद, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक 1 पद और वैयक्तिक सहायक 5 पद। निर्धारित प्रारूप में आवेदन समुचित माध्यम से अवर सचिव स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग प्लॉट संख्या 21 जसोला संस्थागत क्षेत्र नई दिल्ली 25 को अग्रेषित किए जा सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 30 मई से 5 जून 2026 का रोजगार समाचार पत्र। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: बाबुन, आपको भी मेरा नमस्कार.
1: नमस्कार करिश्मा, एंड टू आवर लिसनर्स नमस्कार. गुड डे एवरीबॉडी, दिस इज परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम गोल्ड विद मी शगुन चोपड़ा, एंड वेल आई एम टुडे विद करिश्मा. वेरी थ्रिल्ड, वेरी एक्साइटेड टू बिगिन आवर प्रोग्राम. वेल फर्स्ट वील बिगिन विद द हेडलाइंस. Dateline India follows then. We have reports and listeners. We want you to stick around till the very end because our ending section, the segment, it's to look ahead to, look forward to. It will be pretty amazing, full of music and dialogues as well.
2: Bilkul.
1: So listeners, let's begin with headlines. Energy security, trade and investment topped the agenda of Prime Minister Narendra Modi's talks with Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi.
3: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलोंग में जारी. पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा.
1: वेटरन फिल्म प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी पासेस अवे.
3: रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट. अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया.
1: साउथ वेस्ट मानसून सेट्स इन ओवर केरला.
3: और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू.
1: सो लिसनर्स, दिस इज आवर सेगमेंट डेटलाइन इंडिया. वेल यस, वी विल टुडे डिस्कस अबाउट वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप.

0: So today marks a truly historic moment as the inaugural World Yogasan Sports Championship gets underway at Eka Arena in Ahmedabad, Gujarat. A practice that began thousands of years ago in India, it is now taking center stage as a competitive global sport, right?
1: बिल्कुल, और योग को लंबे समय से शारीरिक फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य और आंतरिक संतुलन को बढ़ावा देने के लिए सराहा जाता रहा है, लेकिन आज दुनिया योग का एक और आयाम देख रही है, एक True. ऐसा आयाम जो शक्ति, लचीलेपन, सटीकता, सहन शक्ति और खेल कूद में उत्कृष्टता का मेल है.
0: And Karishma, what better place than Gujarat to hold this landmark event? Athletes from across the world, they have gathered to showcase their mastery of yogasana, and this proves that yoga is not just a way of life, but it is also a powerful sporting discipline that transcends borders.
1: बिल्कुल सही कहा शगुन आपने, और स्कूल की कक्षाओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक योग अब एक वैश्विक आंदोलन का रूप ले चुका है. यह चैंपियनशिप भारत के उस दृष्टिकोण को दर्शाती है जिसके तहत वह इस प्राचीन ज्ञान को पूरी दुनिया के साथ साझा करना चाहता है और साथ ही एथलीटों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित भी करना चाहता है.
0: And it's fascinating, don't you think? This is a tradition which is rooted in mindfulness, and Harmony is now creating a unique sporting platform where competition, it actually means concentration, athleticism. This meets awareness.
1: बिल्कुल, और जैसे ही चैंपियनशिप शुरू होती है, यह एक सशक्त संदेश देती है कि योग एक सार्वभौमिक भाषा है जो स्वास्थ्य, अनुशासन और उत्कृष्टता के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों, महाद्वीपों और समुदायों के लोगों को आपस में जोड़ती है.
0: And Karishma, we are well aware that yoga is an ancient Indian practice and now it is a global sporting phenomenon. So yoga, it is entering an exciting new era. The first ever World Yogasan Championship, it is set to begin in Ahmedabad, and this marks a landmark moment in the journey of yoga from a way of life to a competitive sport. So today the Eka Arena in Ahmedabad, it has opened its doors to over 400 athletes from more than 60 nations. Wow, more than 60 okay. nations for this inaugural World Yogasan Championships 2026. Well, we have detailed report from our correspondent. Let's listen in.
2: The city of Ahmedabad is buzzing with

0: Unprecedented energy as it hosts the first ever World Yogasana Championship from today. This is not just a competition, it is a defining moment in the evolution of Yogasana. For centuries, this practice was synonymous with spiritual wellness, but today it is being transformed into a globally competitive sporting discipline with its eyes firmly set on the Olympic moment. With the support of Ministry of Youth and Affairs and Sports, Ministry of Ayush and Sports Authority of India, this championship has brought together a massive international contingent. From USA to Ghana, Kenya to Malaysia, athletes are ready to push their boundaries of human potential. India, as the host nation, is fielding a strong 122-member squad competing across 6 age categories ranging from sub-juniors to senior masters. The technical precision of this event is underscored by the introduction of an electronic scoring system, a first at the global level, ensuring that every posture, balance and flow is judged with absolute transparency. As this grand opening ceremony unfolds, the message is clear. Yogasana is India's greatest contribution to the world of sports, whether it is individual events, artistic displays or traditional group performances. The world is watching to see how this ancient heritage thrives in the competitive arena. For Parikrama, this is Aparna Khunt, Akashvani News, Ahmedabad.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग केवल चटाई पर किए जाने वाला व्यायाम नहीं बल्कि यह जीवन को जीने का एक तरीका है। यह एक ऐसी साधना है जो शरीर को सुदृढ़ बनाती है, मन को शांत करती है और आत्मा को शांति प्रदान करती है।
2: योगा इज नॉट ओनली अ सेट ऑफ एक्सरसाइज, इट इज मच मोर देन दैट। योगा इज अ मींस टू बोथ फिटनेस एंड वेलनेस। इट लीड्स टू अ फिट बॉडी and healthy mind.
3: Now, Dr. Sanjay Malpani, Vice President of World Yogasana, shares valuable insights about the championship.
4: योगासन हमारे देश की एक सॉफ्ट पावर है और आज विश्व भर में योग का परचम लहरा रहा है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा जो इंटरनेशनल योगा डे आरंभ हुआ हर देश में हर गली में योगासन आरंभ हो चुका है और वहां से जो एथलीट निकल कर आए हैं योगासन को खेल के रूप में यहां प्रस्तुत करेंगे।
1: बिल्कुल सही और शगुन, अब पूरी दुनिया में योगासन का असर देखने को मिल रहा है। सदियों से योग को मन, शरीर और आत्मा के पोषण के लिए सराहा जाता रहा है, लेकिन आज इसका प्रभाव केवल सेहत तक ही सीमित नहीं है बल्कि इससे कहीं आगे तक फैला हुआ है। अब जब योगासन एक व्यवस्थित खेल के रूप में उभर रहा है और 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वदेशीय विधाओं में शामिल होने के लिए तैयार है, तो पूरी दुनिया भारत के इस कालजयी उपहार को एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देख रही है।
3: सो करिश्मा, एथलीट्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब गैदर इन अहमदाबाद एंड दे आर नॉट जस्ट कम्पीटिंग फॉर मेडल्स, दे आर बिकमिंग पार्ट ऑफ अ हिस्टोरिक चैप्टर इन द इंटरनेशनल जर्नी ऑफ योगा।
1: बिल्कुल, और एक ऐसी यात्रा जो परंपरा से संचालित है, खेल से सशक्त है और विश्व मंच पर भारत की सॉफ्ट पावर से और भी अधिक प्रभावशाली बन गई है। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आज से शुरू हो रही है और इतिहास रचने के लिए तैयार है।
3: एग्जैक्टली, सो इनॉग्युरल वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप इट अनफोल्ड्स एंड इट रिप्रेजेंट्स फार मोर देन अ कॉन्टेस्ट ऑफ स्किल एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज एक्चुअली अ सेलिब्रेशन ऑफ एन एंशिएंट ट्रेडिशन and it still continues to inspire the modern world, and this brings together athletes, cultures, communities, people of around the globe through the shared values of discipline, balance and excellence. What do you think?
1: बिल्कुल, और जैसे-जैसे योग वैश्विक खेल मानचित्र पर अपनी जगह मजबूत कर रहा है, यह चैंपियनशिप भारत के स्थायी सॉफ्ट पावर की एक सशक्त याद दिलाती है, जहां सदियों पुरानी एक प्रथा दुनिया भर में स्वास्थ्य, खुशहाली और मानवीय क्षमताओं पर होने वाली चर्चाओं को लगातार आकार दे रही है। अहमदाबाद से लेकर पूरी दुनिया तक योग की इस अद्भुत यात्रा का एक नया अध्याय आज से शुरू हो रहा है।
3: So all eyes on the championship. Get ready to witness history in the making as the world's finest yogasana athletes they come together in Ahmedabad. So the inaugural World Yogasana Sports Championship begins today, and with it, a new chapter unfolds for yoga on the world's sporting stage.
1: और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
3: फर्स्ट, वेल वील टेल आवर लिसनर्स अबाउट दिल्ली। वेल, द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली, इट इज करंटली होस्टिंग समर वर्कशॉप And this features a diverse range of activities, which includes printmaking, painting, sculpture, pichwai art, and theater, creative theater. It has separate age-appropriate batches as well. The workshop is providing an exciting and interactive learning experience, and this encourages participants to discover new creative dimensions while fostering appreciation for art and culture. What better way to spend your summer vacation? And it is bringing together young minds and art enthusiasts alike to explore their creativity through immersive and engaging art practices. The workshop is underway until 16th of this month. The timing of the workshop, please note that, it is 11 a.m. to 4 p.m. daily. Right? Now, we'll head to Goa.
1: Jee.
3: So, Akashwani Panji will celebrate the landmark occasion of Akashwani completing 90 years with a special cultural program which is titled Sur Sangam. And this begins tomorrow. The event will bring together classical music, folk traditions, contemporary performances, and this reflects the rich cultural heritage that Akashwani has nurtured over 9 decades. Let's find out more details in this report.
5: For 90 years, Akashwani has been a trusted companion to millions of listeners, connecting people through news, music, culture and public service broadcasting. To commemorate this remarkable journey, Akashwani Panji is organizing Sur Sangam, a cultural evening on June 5th at McInnes Palace Auditorium in the ESG complex at Panji. Akashwani's Damodar Atlekar gave us following information about the program.
6: The program will begin at 4:30 in the evening and will feature a blend of diverse artistic traditions. Renowned vocalist Dr. Praveen Gaukar will present Hindustani classical music, while Chhatrapati Kala Evam Sanskritik Mandal from Marshall will showcase Goa's traditional Fugdi dance. The audience will also be treated to Western music and a special presentation titled Kantara by Adrian Siqueira and associates from Raya Salset. The event is being organized by Akashwani Panji under the Ministry of Information and Broadcasting as a part of the nationwide Akashwani at 90 celebrations.
5: Music lovers, artists and listeners from Goa are expected to join in celebrating the enduring legacy of India's public service broadcaster. For Parikrama, Mahesh Sopade, Akashwani News, Panji.
1: और गोवा के बाद अब चलते हैं शिमला. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भारत सरकार की एक विशेष पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश की उत्तरी सीमाओं से सटे दूर दराज के गांवों का व्यापक विकास करना है. इसी तरह देश भर में चयनित 500 युवा इन गांवों का दौरा करेंगे और यहां की संस्कृति से रूबरू होंगे. एक रिपोर्ट.
7: विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम यानी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार भारत की उत्तरी सीमाओं से सटे दूरदराज के अविकसित गांवों के समग्र विकास के लिए प्रयासरत है. जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2026 के तहत देश भर से 500 स्वयंसेवकों का चयन किया गया है, जिसके पहले चरण में 250 युवा स्वयंसेवक सीमावर्ती क्षेत्रों के 43 गांवों की यात्रा करेंगे. इसके तहत हिमाचल प्रदेश में भी किन्नौर जिला में लगभग 100 युवा प्रतिभा भागी सीमांत गांवों में स्थानीय लोगों के साथ रहकर उनके जीवन और संस्कृति को समझेंगे. ये दल आज रिकांगपियो में 17वीं वाहिनी आईटीबीपी के परिसर में आयोजित एक समारोह व सांस्कृतिक संध्या में शामिल होगा, जहां किन्नौर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लोक कला से युवा प्रतिभागी रूबरू होंगे. इसी प्रकार स्पीति घाटी के मुख्यालय काजा में 6 जून से ये कार्यक्रम शुरू होगा. यहां देश के विभिन्न राज्यों से 50 युवा भाग लेंगे. युवाओं को क्षेत्रों की संस्कृति, परंपराओं और विकास को करीब से जानने का अवसर मिलेगा. युवाओं को स्पीति के 10 चयनित गांवों में समूहों के रूप में भेजा जाएगा. वहां वे स्थानीय लोगों के साथ रहकर उनके जीवन और संस्कृति को समझेंगे. ये पहल युवाओं में राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भारत सरकार की एक पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश की उत्तरी सीमाओं से सटे दूरदराज के गांवों का व्यापक विकास करना है. परिक्रमा के लिए शिमला से मैं राजकुमारी चंदेल.
3: The National Institute of Mental Health and Neurosciences in Bengaluru has established the Center for Music, Brain, Mind and Health under the esteemed patronage of legendary music maestro Padma Vibhushan awardee Ilaiyaraaja. The Center for Music, Brain, Mind and Health will research the usefulness of music for mental health. And let's now find out details from our correspondent.
8: The National Institute of Mental Health and Neurosciences, NIMHANS, and Mercury Foundation have come together to establish the Center for Music, Brain, Mind and Health in its institute. This unique center will research the positive utility of music on our brain and mind. Renowned musician Dr. Ilayaraja will be mentoring the center. This pioneering effort will advance interdisciplinary research on utilizing music for better mental health, on its benefits in the field of neuroscience, mental health, cognition functions and holistic well-being. This will be India's first interdisciplinary national center integrating neuroscience, mental health, music, cognition, rehabilitation and technology. This center will bridge traditional wisdom, artistic excellence and modern neuroscience to develop evidence-based approaches that can benefit individuals and communities alike. India's musical visionary Ilayaraja's contribution to music will help the new center in NIMHANS to understand music as a powerful force for healing, cognition and overall health. Sudhindra reporting for Parikrama from Bengaluru.
9: और श्रोताओं, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया था। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा, जहां 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे।
3: Well, now also let's inform that India's star batter Virat Kohli is reportedly set to miss the upcoming ODI series against Afghanistan due to injury, hamstring injury, dealing a major setback to the host. So reports claim that Kohli is suffering from the hamstring injury and will not take part in the upcoming 3-match contest, which is set to begin on June 13 in Dharamshala. Now, in some business news, benchmark domestic equity indices ended on a flat note today. The BSE Sensex rose 14 points to close at 74,360. The NSE Nifty added 11 points to settle at 23,417. For more updates about the market activities like these, tune into Akashwani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
9: और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों के जिनके आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
10: We remember freedom fighter Motibai, who was martyred on the 4th of June 1858. A lieutenant of Rani Lakshmibai, Motibai took part in fighting against the British forces in and around Jhansi, ousting the British troops from the region.
11: When the British struck back and reached Jhansi, Motibai took lead and fought against the East India Company army at the Jhansi fort on 4th June 1858. However, she was injured by the enemy fire and died on the spot. We salute the great warrior, Motibai.
10: We also remember the commander of the cavalry in the army of Rani Lakshmibai, Khuda Baksh, who played a significant role in organizing and directing the independence activists against the British during the First War of Independence, 1858. Khuda Baksh fought back persistently the British army's offensive on the Jhansi fort. He was martyred while fighting the British forces on the 4th of June, 1858. We salute the great son of the soil.
11: We also remember nationalist Achant Lakshmipati, who died on June the 4th, 1962. A firm believer in Gandhian ideology of Swadeshi, Lakshmipati promoted the use of Ayurvedic medicine. A supporter of the establishment of a separate Andhra state, Lakshmipati was greatly influenced by the thoughts of the famous saint Ramana Maharishi.
10: Lakshmipati was born on March the 3rd, 1880 in Godavari district of Andhra Pradesh. He obtained a medical degree from Madras Medical College in 1909. He got inspired towards Ayurveda after studying the Vedas, Puranas and Ayurveda texts deeply. He became a disciple of Pandit Gopalacharyalu, the famous Vaidyaratna of his time. Lakshmipati devoted his life to the promotion of Ayurveda. He was the principal of Madras Ayurvedic College and Trivandrum Ayurvedic College.
11: The credit for the establishment of the famous Arogya Ashram and Andhra Ayurvedic Pharmacy of Avadi also goes to him. For the construction of the Arogya Ashram during the British period, the Madras government had accepted financial assistance with the condition that Lakshmipati would give assurance of being loyal to the British government. He refused to give such an assurance and the government withdrew the offer of assistance. Lakshmipati considered the Western education system to be a loss for India.
10: Lakshmipati had great belief and confidence not only in the effect of Ayurvedic medicines but also in the philosophy of Ayurveda and its spirituality. He tried to bring Ayurveda to the common man and published a number of books. He popularized Ayurveda by conducting Arogya Yatras, screening films, arranging

0: और इसके साथ ही आज गुजराती साहित्य के अग्रणी साहित्यकार, लेखक और सांस्कृतिक चेतना के प्रेरणा रणजीत राम बाबा भाई मेहता की पुण्यतिथि है। और आपको बता दें श्रोताओं कि रणजीत राम बाबा भाई मेहता आधुनिक गुजराती साहित्य के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले साहित्यकारों में गिने जाते हैं। उनके निबंध, कहानियां और साहित्यिक लेख उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का सशक्त चित्र प्रस्तुत करते थे। उन्हें वर्ष 1904 में गुजरात साहित्य सभा तथा 1905 में गुजराती साहित्य परिषद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनकी स्मृति में स्थापित रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक आज गुजराती साहित्य का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है।
1: Well, a true visionary, he founded Gujarat Sahitya Sabha in 1904 and Gujarati Sahitya Parishad in 1905 as well. We are remembering the eminent literary figure, Ranjit Ram Babahai Mehta.
0: और इसके साथ ही श्रोताओं, आज हम संगीत जगत के भारतीय सिनेमा के महान पार्श्व गायकों में से एक एसपी बाला सुब्रमण्यम की जयंती भी मना रहे हैं। अपनी मधुर और भावपूर्ण आवाजों से करोड़ों श्रोताओं के दिलों पर राज करने वाले एसपी बाला सुब्रमण्यम का जन्म 4 जून को आज ही के दिन यानी कि 1946 में हुआ था और उन्होंने वर्ष 1966 में अपनी फिल्मी गायन करियर की शुरुआत की और आगे चल के हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम सहित कई भारतीय भाषाओं में 40,000 से अधिक गीत रिकॉर्ड किए।
1: Well, yes, S.P. Balasubramaniam. He set a record by recording 28 songs in Kannada in a single day, along with 19 songs in Tamil, 16 in Hindi, which has also been called a record.
0: Wow.
1: Right? So, in recognition of his contributions, he received the NTR National Award from Government of Andhra Pradesh. Also, the Government of India honored him with the Padma Shri in 2001, Padma Bhushan in 2011, and Padma Vibhushan posthumously in 2021. How great.

0: Wow, such a beautiful voice, and how good this medley sounded, right?
1: बिल्कुल. और इसके साथ ही श्रोताओं, आज महान समाजसेवी, मानवतावादी और परोपकार की मिसाल भगत पूरन सिंह की जयंती है. भगत पूरन सिंह को एक महान समाजसेवी, पर्यावरण प्रेमी और मानव सेवा के लिए जाना जाता है. उन्होंने समाज के गरीब, असहाय, बीमार, दिव्यांग और बेसहारा लोगों की सेवा से ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था. भगत पूरन सिंह का मानना था कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और उन्होंने बिना किसी भेदभाव के हजारों जरूरतमंद लोगों की देखभाल की और उन्हें सम्मानपूर्ण जीवन देने का प्रयास किया. इसके साथ ही वे स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जागरूकता के भी प्रबल समर्थक थे. उनकी निस्वार्थ सेवा और समाज के प्रति अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था.
0: Well, wishing a very happy birthday to the legendary actor Ashok Saraf, a true icon of Marathi and Hindi cinema. Well, his unforgettable performances, as we all know, and timeless comedy, they have brought joy to generations. So, well, a good health, happiness and many more years of inspiring audiences to Ashok Saraf. We have dialogues as well in his... So, let's listen to his voice.
2: Upar wala khane khane wale ke naam par dane dane ka pata likar do aur do paach karta rehta hai. Samjha kuch? मैंने कितनी बार कहा है कि मैं किलर हूं, नौकर नहीं हूं. मैंने किलिंग के पैसे लिए हैं, क्लीनिंग के नहीं.
0: और आज भारत के प्रसिद्ध पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत का जन्मदिन है. प्रमोद भगत भारत के सबसे सफल पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों में गिने जाते हैं और बताया जाता है कि बचपन में पोलियो से प्रभावित होने के बावजूद उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और खेल के प्रति समर्पण के बल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया और वर्ष 2019 में उन्हें भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया.
1: Well, today we are also remembering one of the most talented and graceful actresses of Hindi cinema, Nutan. So, as she started at a very young age and won hearts with her simplicity, powerful acting and emotional depth.
0: और श्रोताओं, अभिनय प्रतिभा उन्हें विरासत में मिली थी नूतन को, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और अभिनय क्षमता के बल पर ही हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई. नूतन ने कम उम्र में ही फिल्मों में अभिनय शुरू कर दिया था और 1950 में फिल्म हमारी बेटी से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की. इसके बाद उन्होंने सीमा, सुजाता, बंदिनी, मिलन, सरस्वती चंद्र और मैं तुलसी तेरे आंगन जैसी अनेक यादगार फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों और समीक्षकों का दिल जीता.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल

0: और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: कैन एंटर द वेनेजुएलन मार्केट सक्सेसफुली।
2: दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रॉड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 घंटों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। इस प्रणाली के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय जिस उम्मीदवार की फोटो अपलोड की गई थी, वही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा देने आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार 2 गुना करने को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में ये 2 गुने से भी अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि इससे फील्ड कमांडरों की परिचालन दक्षता और मजबूत होगी। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सरकारी भवनों के छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पर बताया कि अब तक निर्धारित लक्ष्य का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश भर में 53,000 से अधिक सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों लगाई जा चुकी हैं। इनकी कुल स्थापित क्षमता 855 मेगावाट है। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा, जहां 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने आज केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की पुष्टि की है। मानसून 3 दिन देर से आया है। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrendra Tandon said, today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries, as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation.
1: The discussions also went into broadening the economic partnership to other areas, not just in the energy sector, but also

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर नसरीन है आपके साथ और मेरे साथ है मेरे तमाम सुनने वाले जो इस वक्त एफएम गोल्ड पर मौजूद हैं और शो है गाते गुनगुनाते, जिसमें हम बात करते हैं 80 और 90 के दशक की फिल्मों की, उनसे जुड़ी कुछ खास बातों की। तो एक बहुत ही प्यारा सा गीत है फिल्म थोड़ी सी बेवफाई का, जो कि 1980 में बनी थी, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप तमाम सुनने वालों के लिए।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy, combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samrit Bharat. Join Indian Navy.
3: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।

कमल हासन और रति अग्निहोत्री की सुपरहिट फिल्म जो कि निर्देशक के बालचंद्रन की फिल्म थी, जो कि एक तेलुगु फिल्म मारो चरित्र का रीमेक थी। अब इसे हिंदी में बनाना था और इस फिल्म का नाम रखा गया एक और इतिहास, और इसी नाम से फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई। बाद में ख्याल आया कि हिंदी सिनेमा की ऑडियंस के लिए ये नाम शायद ठीक नहीं रहेगा, तब इस फिल्म का नाम बदल कर रखा गया एक दूजे के लिए। फिल्म के निर्माता एलएन प्रसाद ने पहले कई हिंदी फिल्में प्रोड्यूस की थी और वो चाहते थे कि इस फिल्म में संगीतकार जोड़ी आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का ही संगीत हो। जब सिंगर की बारी आई तो के बाल चंद्र एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ चाहते थे। तब लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने कहा कि एक साउथ इंडियन सिंगर हिंदी गाने नहीं गा सकता। तब के बालचंदर ने कहा कि जब फिल्म का हीरो साउथ इंडियन है तो सिंगर भी साउथ इंडियन ही होना चाहिए। ये एसपी बाला सुब्रमण्यम की पहली हिंदी फिल्म थी। एसपी बाला सुब्रमण्यम का पहला गाना लता जी के साथ रिकॉर्ड किया गया था।

बिनाका गीत माला में ये गाना पांचवें नंबर पर प्ले किया गया। फिल्म की कहानी के हिसाब से फिल्म के गाने बहुत ही अच्छे लिखे गए थे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। इस गीत में राग शिव रंजनी का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। गीत के बोल हैं तेरे मेरे बीच में। और सबसे अच्छी बात ये कि जिस सिंगर से फिल्म के गाने रिकॉर्ड करवाने में हेसिटेशन हो रही थी, उन्हीं को फिल्म के गाने के लिए नेशनल अवार्ड मिला था। फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेशन मिला और वो गीत आज भी हम सब की जबान पर है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची थी। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त

ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसक के युग का अंत किया है और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। सत्र में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नेता मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर के निर्माण के अपने संकल्प में एकजुट हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार 2 गुना करने को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में ये 2 गुने से भी अधिक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूअल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूअल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूअल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण ये है कि देश के नागरिकों ने ये समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं और बिजली बिल 0 हो सकता है। इसके अलावा श्री जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक में सरकारी भवनों के छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की भी समीक्षा की। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी एरोन ताई और कैंग खाई रिंग को कड़े मुकाबले में हराया, लेकिन पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी कड़े संघर्ष के बावजूद पराजित हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

आशा भोसले और मन्ना डे के गाए फिल्म काला बाजार के इस गीत के साथ ही सदाबहार गीतों का ये सफर यहीं तक, लेकिन आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस चैनल पर अब आपके लिए है संस्कृत में समाचार।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ली नगरे वेन्जुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिना डेल्सी रोड्रिग्स महाभागया सह द्विपक्षीय वार्तां कृतवान्। वयोवृद्धः चलचित्र निर्माता पहलाज निहलानी अद्य दिवंगतः। अमेरिका देशस्य प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंपं ईरान देशं विरुद्ध अग्रिम सैन्य कार्याचरणात् निरुद्धं प्रस्तावं स्वीकरोत्। केरल राज्ये दक्षिण पश्चिम प्रावृढः आगमनम्। अपि च गुजरातस्य अहमदाबाद नगरे विश्व योगासन क्रीडा स्पर्धा श्रृंखला इत्यस्य उद्घाटन संस्करणस्य आरम्भः। वैश्विक क्रीडा मार्गसूच्यां ऐतिहासिकं सोपानम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ली नगरे वेन्जुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिना डेल्सी रोड्रिग्स महाभागया सह द्विपक्षीय वार्तां कृतवान्। उभाभ्यां नेतृभ्यां भारत वेनेजुएला संबंधानां

0: Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Amrish Saxena.
1: Namaskar. आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आपके लिए देश विदेश की खबरों को लेकर हाजिर हैं। प्रमुख समाचारों का हम विश्लेषण भी करेंगे। खास खास खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक उदयन रे। उदयन जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: पहले हेडलाइंस के साथ मौजूद हैं लालिमा अनीजा डेंग।
0: थैंक यू अम्ब्रीश। यस फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड ऑन फ्लैट नोट। सेंसेक्स गेन्स 14 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्स एट 23,417। मेजर एशियन स्टॉक मार्केट्स एंड विद लॉसेस एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस स्लिप।

0: And friends, before we go any further, here's a disclaimer for all of you. Well, the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजारों में आज कोई खास बदलाव नहीं हुआ। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 14 अंक बढ़कर 74,360 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक बढ़कर 23,417 पर स्थिर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार ने प्रमुख सूचकांकों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 सूचकांकों में लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।
0: Benchmark domestic equity indices ended on a flat note today. The BSE Sensex rose 14 points to close at 74,360. The NSE Nifty added 11 points to settle at 23,417. The broader market on the National Stock Exchange outperformed the frontline indices, with the mid-cap 100 and small-cap 100 indices gaining around 0.5%. Earlier today, markets opened lower amid weak global cues and ongoing geopolitical tensions in West Asia. Both indices remained range-bound for most of the session, oscillating between gains and losses before ending the day marginally higher.
1: आज सुबह कमजोर वैश्विक संकेतों और पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक तनाव के कारण बाजार गिरावट के साथ खुले। दोनों सूचकांक सत्र के अधिकांश समय सीमित दायरे में रहे। दिन भर उतार चढ़ाव के बाद अंत में मामूली बढ़त के साथ बंद हुई।
0: In the sectoral indices at the BSE, 19 out of 25 sectors ended in positive territory. Among the top gainers, consumer durables rose over 1.9%, capital goods climbed 1%, and telecommunication advanced by 0.8%. Conversely, metal emerged as the biggest drag, dropping over 0.8%, followed by commodities and IT, which shed 0.5%. Meanwhile, mid-small private banks' quality tilt index also dropped over 0.4%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,244 companies advanced, 1,940 declined and 177 remained unchanged.
1: और सेंसेक्स में शामिल 30 में से 18 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में इंफोसिस में लगभग 1.8% की गिरावट आई, बजाज फिनसर्व में 1.1% से अधिक की गिरावट आई और अल्ट्राटेक सीमेंट में लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। इसके विपरीत टाइटन के शेयरों में 3.4% से अधिक का उछाल आया, इटर्नल के शेयरों में 2.9% की वृद्धि हुई और आईटीसी के शेयरों में 1.2% की बढ़त दर्ज की गई। और रुपए का हाल भी जान लेते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपए में गिरावट दिखाई दी और यह 9 पैसे कमजोर होकर 95.79 रुपए पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 99.21 पर कारोबार कर रहा था। उदयन जी, क्या कहेंगे शेयर बाजार के आज के हाल पर? काफ़ी स्टैटिक रहा, कोई ख़ास चेंज नहीं आया, तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाज़ार को अभी आगे नहीं जाने दे रहे?
2: तो जैसे कि पहले कई हफ्तों में रहा है और आज भी और मेरे ख्याल से आगे चल के भी कई हफ्तों तक मुद्दा तो वही है जो संघर्ष हो रहा है खाड़ी में। तो जिस दिन हेडलाइंस आपके सुर्खियां बेहतर होती हैं तो ऑप्टिमिज्म आता है। आप देखेंगे कच्चे तेलों के तेल के दाम गिरते हैं, उससे एक बाउंस मिलता है स्टॉक मार्केट चारों तरफ और हमारे यहाँ पे भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट।
1: उस तरह से देखें तो अभी तो काफ़ी पॉजिटिव है कि तेल के दाम भी घटे हैं और लेबनान और इसराइल का समझौता भी हुआ, लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं दिखाई दिया।
2: वो उससे थोड़ा सा बाउंस मिला, फिर आके वो कंसोलिडेट हुआ, तब भी एक मार्जिनल पॉजिटिव टेरिटरी में जाके ख़त्म हुआ। तो ये वो ओवरराइडिंग कंसर्न

0: क्योंकि वहाँ पे कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं, तो आपके इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं, और चिंता यही है कि उसके वजह से क्या मुद्रा स्फीति पे को असर होगा। मैं मार्केट्स की, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, और उससे डिमांड में क्या असर पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी में जो लाभ है उसका जो हिस्सा है उसके ऊपर कितना डेंट लगेगा, तो ये सब चिंताएं आके प्ले करती हैं। और इसके अलावा जब भी कोई और दूसरी तरह की हेडलाइन आ जाती है, जैसे एक टैरिफ प्रपोजल यूएस की तरफ से उसका हेडलाइन एकदम से आ गया, तो उस पर एक एडिशनल प्रेशर होता है। और अभी अमरीश जी ये है कि कई चीज़ों में क्योंकि रुपी डॉलर का जो सामंजस्य है, जो वैल्यू है उसका, जो एक्सचेंज रेट चल रहा है, क्योंकि वो सुर्खियों में है, तो कोई भी हेडलाइन अगर रुपए के मूल्य को प्रभावित करता है तो वो भी आके आपके सेंटिमेंट को इम्पैक्ट कर जाता है। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे मौक़ों में करेंसी मार्केट से शुरू होता है डेवलपमेंट, और वो जाके इम्पैक्ट कर देता है आपके इक्विटी मार्केट में, नेचुरली वो डेट मार्केट में भी चला जाता है।
1: जी जी,
0: पर वहाँ से शुरुआत वहीं से होती है।
1: लेकिन जैसा आपने कहा, तो अभी करेंसी और रुपए की जो हालत है वो तो मेरे ख्याल से अभी इसी तरह से चलेगी, तो
0: जी
1: फिर उसका क्या इम्पैक्ट, फिर इसी तरह से स्टॉक मार्केट में अभी हमें कोई खास उम्मीद आने वाले समय में भी नहीं लगानी चाहिए।
0: देखिए, जब हम स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो अनलाइक अ फिक्स डिपॉजिट, मान लीजिए 3 महीने का फिक्स डिपॉजिट, आपको मालूम है कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा और पैसे मिल जाएंगे, तो स्टॉक मार्केट में जब आप निवेश करते हैं तो उसके पीरियड्स होते हैं। तो स्टॉक मार्केट्स में अगर आप एक वोल्टेज स्टेबलाइजर होते हैं, उस तरीके से आप देखें तो कम अवधि में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है। अगर 100 रुपये लगाते हैं
1: जी,
0: पर वो जैसे ही आप जितना जितना टाइम आगे बढ़ता चला जाता है तो उसकी जो फ्लक्चुएशन है, जो कांटा हिलता है, वो कम कम कम होते होते होते बहुत कम होता चला जाता है, स्थिर कभी नहीं होता, ऊंचे नीचे ऊंचा नीचे होता है। और इसीलिए पर वो जिसे कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, ये पाया गया है कि आप अगर सब्र करेंगे तो आपके आपको जो फल मिले, फल तो मिलेंगे ही और वो फल मीठे भी होंगे।
2: And Udayan, I think the gist of it is that no news is good news these days.
0: No, it's better to have news instead of having lots of nasty surprises. It's okay. Good to have news. Yeah. When you're not getting news, which you're supposed to get, then you can't also invest. Because in a higher risk investment, compared to, say, a fixed deposit or, say, bonds, you will need more information. Of course, in bonds, you'll marketable debt products, you need a lot of information. Unlike a fixed deposit, where there's a deposit insurance, etc., we won't go there. Mm-hmm. So you need that information. If you don't have that information, you will not have the conviction. So more things that you have seen, basis of which you are taking an investment decision. And now, a lot of people think that investment decision is all about buying and selling. Sometimes it is. It can be about doing nothing. And you say that, okay, I will do this only when this happens. That is also a decision.
2: Mm.
0: So it's like a verb.
2: Yeah.
0: So it's a state of being is also counted as an action, a verb.
2: Mm-hmm.
0: So this is something we need to remember. And as I mentioned that, you know, typically Larima, what happens is the fluctuation in the value of investments is tends to be more for stocks and stock related equity funds, hybrid funds, it'll be lesser for hybrid funds than say a debt investment market, which is linked to the market, and they last for debt investment, it lasts for smaller periods.
2: Mm-hmm.
0: Magnitude is more for equities and it lasts for a longer period. If we don't know where we are going to swim, then we are going to have a problem. So if it's a baby pool, I know what to expect. If it's a deep pool and it's a big water body, then I should be mentally prepared where I'm getting into. So it's important that our expectations are also realistic.
2: Uh-huh.
0: We should know where we are getting into. So in a highway, you cannot be doing the dealing as a motorist or a pedestrian the same way as a bylane.
2: Uh-huh.
0: So one has to be little mindful, and I don't think there are reasons to be concerned. This is part, India has gone through these phases and they are part and parcel now of equity investing, and it's important that we we learn to be comfortable in our skin, mm-hmm. because we are by far the I mean, it's a cliche now, the fastest growing large economy.
3: Yeah.
0: Now who but Indians should benefit from it? And you can only benefit if you stay invested in the market. And it's not about, you may not decide to buy fresh shares or units, etc. Or may decide to buy small amount. That's fine. But to get scared and go away or stop it altogether and, you know, look at all kinds of crazy advice is not a smart thing to do.
2: Are our strong fundamentals in the economy, are they overriding to a great extent and kind of offsetting the shadow of geopolitical tensions at some point?
0: Oh yes, absolutely. And that's I'm so glad that you're pointing this out, because some of the commentary which is coming out of so-called market watchers and gurus in our country, mm-hmm. seems to ignore the fact. See, this resilience is remarkable, because people of the country, this is the first time, the first period, say maybe 7-8 years, where a lot of people have gone and participated. So it's becoming a counterweight to all this. Things would have been far more difficult if such a large number of Indians had not invested in the market and continue to remain optimistic.
2: Mm-hmm.
0: So that's the most important part. If they were not optimistic, then things would have been a very different ball game. But, and that's where they're also rooted to reality. So I'll doff my hat to these investors, because they see what foreign investors are not being able to see. But to be fair to foreign investors, they are chasing higher returns. Mm-hmm. So they'll look at India,
2: mm-hmm.
0: and they'll look at the currency, they'll look at everything, and they'll look at somewhere else, say in US debt markets, where at the lower risk they can make their money grow. So they are looking at a different point of view, we are looking at a different point of view. We are not wrong. For us to grow very the way we deserve to grow, we need foreign participation. But minus them, it's not that as if we won't grow. It's just that if we want to become a 4x4 wheel drive, then we need their participation.
2: Right.
1: और चलते हैं एशिया और यूरोप के बाजारों का हाल भी जान लेते हैं. एशिया के अधिकांश बाजारों में आज गिरावट देखी गई. दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 1.8% से अधिक, हांगकांग का हैंगसेंग लगभग 1.5%, सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स 1.4%, जापान का निकेई लगभग 1.4%, और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.6% से अधिक गिर गया. प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों में आज मिला जुला रुख देखने को मिला. अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक फ्रांस का कैक सूचकांक 0.9% से अधिक और जर्मनी का डेक्स 0.3% बढ़ा, जबकि लंदन का फुटसी सूचकांक 0.5% से अधिक नीचे कारोबार करता नजर आया. कुछ उदयन आप कहना चाहेंगे, क्योंकि एशिया यूरोप लगभग सभी जगह कोई बहुत अच्छा सेंटिमेंट नहीं दिखाई दिया आज शेयर.
0: देखिए, वो स्रोत एनर्जी का स्रोत तो वही है
1: जी.
0: 20% जो ऊर्जा का स्रोत खाड़ी के देश ही हैं. अगर वो ठीक नहीं होता वहाँ पे, वो सुलझता नहीं या कंट्रोल में नहीं आता, लोगों को ये उम्मीद भी अगर हो जाती है कि ये बेहतर होगा, या उनको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, तो उस हिसाब से वो प्लान कर सकते हैं. पर अमरीश जी, इम्पोर्टेंट बात यह है, ये सप्लाई जो है ना, डिमांड को आप एडजस्ट कर सकते हैं बहुत कम समय में. सप्लाई जो आपूर्ति है उसको एडजस्ट करने में बहुत सारा वक्त लगता है. तो लोग दूसरे इंतजाम ज़रूर करेंगे, उससे हो सकता है महंगा हो या कुछ और हो. भारत भी कर रहा है, और काफ़ी प्रोएक्टिवली हमारी सरकार कर रही है. एनर्जी के जो स्रोत है, वेनेजुएला, एलपीजी के लिए हमने यूएस से इंतज़ाम किया है, तो ये सब तो हो रहा है. पर ये आप इसका जो ओरिएंटेशन है, उस पर एडजस्टमेंट है, उस रातों रात नहीं हो सकता. तो वही इम्पैक्ट यूरोप में भी होगा, वही इम्पैक्ट हर कॉन्टिनेंट में होगा, हर देश में होगा, अनलेस वो देश खुद ही एनर्जी स्रोत तैयार कर रहा है. तो अगर नॉर्वे है या वेनेजुएला है या ब्राज़ील है, उसके ऊपर उतना असर नहीं होगा जितना भारत के ऊपर होगा, क्योंकि हम आयात कर रहे हैं.
2: All right, look at the U.S. markets now. Major U.S. stock indices snapped their winning streak yesterday amid profit booking and heightened geopolitical concerns. The Dow Jones Industrial Average shed 1.2%. The Nasdaq

0: going into the US and getting refined by Indian companies who will set up refineries out there.
1: Yes.
0: So because the trade deal is on, and I wouldn't be surprised if Indian companies actually set up petrochem and refinery kind of ventures in US, but because that could be part of the deal. So this is a much larger play that's happening, and a lot of the discussions that have been going on between India and US, I'm sure every time 1 hour was spent, 10 minutes must have gone this year on Venezuela.
1: Yes, yes, that's why I think the timing is very significant, because the Indo-US deal is, as they say, 99% going by the US ambassador's announcement.
2: And let's go to the next story. Kendriya Koila and Khan Mantri G. Kishan Reddy and Britain's Videsh Rashtramandal और विकास मामलों की सचिव येवेट कूपर ने आज नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री किशन रेड्डी ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिज आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। इनका उपयोग स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, इलेक्ट्रिक वाहनों और कई रणनीतिक क्षेत्रों में होता है। श्री रेड्डी ने कहा कि यह पहल महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित और मजबूत आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा भरोसेमंद अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ब्रिटेन की मंत्री येवेट कूपर ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच यह सहयोग महत्वपूर्ण खनिजों की मजबूत, विविध और टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि क्रिटिकल मिनरल तक पहुंच और सूचनाओं का बेहतर आदान प्रदान दोनों देशों के हित में है, और इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाने और आर्थिक विकास की गति को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
1: Alright, Union Commerce Minister Piyush Goyal today said that strong fiscal management over the past 12 years under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has enabled India to support farmers, MSMEs, businesses and vulnerable sections of society while maintaining economic stability. While delivering a virtual address at the City India Conference 2026 being held in Mumbai, Mr. Goyal said India has successfully navigated the international energy crisis despite disruptions affecting energy supplies from the Gulf region due to prior efforts to diversify energy sources. Highlighting India's emergence as the world's most trusted investment destination and outlining the government's ongoing efforts to strengthen manufacturing, ease of doing business, infrastructure, technology adoption and global trade engagement, Mr. Goyal said India has signed 9 free trade agreements in the last 4 years covering 38 developed economies.
2: और इस्पात मंत्रालय ने आज बताया कि देश का इस्पात क्षेत्र लगातार उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। मई 2026 में स्टील उत्पादन और खपत से जुड़े प्रमुख आंकड़ों में पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मंत्रालय के अनुसार मई में कच्चे इस्पात का उत्पादन 2.9% बढ़कर 1,42,00,000 टन हो गया। वहीं तैयार इस्पात की खपत में 9% की वृद्धि दर्ज की गई और यह 1,43,00,000 टन तक पहुंच गई। व्यापार के मोर्चे पर पिछले महीने 6,90,000 टन का आयात हुआ और 5,10,000 टन का निर्यात किया गया।
1: All right. One ray of hope which has been amidst all these disruptions, Udayan, is that the government spent on infrastructure hasn't come down, and that is a big spark.
0: Yeah, absolutely. Spark. And in the absence of the kind of desirable levels of private investment, government investment has been important.
1: Yes.
0: But the key part will be private sector also come joining the party, because that is the boost that we badly need.
1: Yes, yes. Let's hope for the best. Well, Indian Airlines have welcomed the government's decision to approve a 10,000 crore rupee aviation turbine fuel ATF price stabilization fund, saying it will provide much needed support to the Indian aviation ecosystem. system. The Union Cabinet had yesterday approved one-time budgetary support of 10,000 crore rupees for oil marketing companies to provide ATF price stabilization support to Indian Airlines for their domestic and international operations. In a statement, Air India appreciated the government's decision to introduce aviation turbine fuel ATF price stabilization support. It said that this progressive measure provides much needed support to the

0: Indian aviation ecosystem. Air India said the decision reinforces the government's commitment to strengthening connectivity for the people of India while enabling airlines to serve passengers more effectively. IndiGo has also thanked Prime Minister for this important initiative. And crude oil, well, global crude oil prices declined today after a ceasefire deal between Israel and Lebanon boosted hopes for a broader agreement to end West Asia conflict. Brent crude was trading 2.3% down at $95.56 per barrel in intraday trade. West Texas intermediate crude was also trading 2.1% down at $94 per barrel when reports last came in. And on to gold and silver. Let's talk about the Indian bullion market, where 24 carat gold was trading 0.8% up at 1,59,850 rupees per 10 grams, while silver was trading over 0.6% up at 2,65,490 rupees per kilogram a short while ago.
1: Or multi commodity exchange mein June anubandh wala sona 0.9% ki badhat ke saath 1,55,685 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और जुलाई अनुबंध वाली चांदी 0.6% बढ़कर 2,64,479 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। उदयन, आप क्या कहेंगे सोने और चांदी के जो इस तरह के मूल्यों में जो
2: देखिए अमरीश जी, जो जब ऐसे टेंशन्स होते हैं, जो पॉलिटिकल टेंशन्स होते हैं, तब सोना बहुत पॉपुलर होता है और पीछे सब केंद्रीय बैंक जो हैं वो सोने में खरीदारी और सोने में के तरफ नज़र रख रहे थे, तो इसके प्राइस जो है, मूल्य है, वो एलिवेटेड लेवल पर रहेगा। पर जो निवेशक है उसको ये ध्यान में रखना है कि 100 रुपये का अगर निवेश है उसे 10 रुपये से अधिक ना हो।
1: और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। उदयन जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: And the headlines now again. Benchmark domestic indices end on flat note. Sensex gains 14 points. Nifty settles at 23,417. Major Asian stock markets end with losses and global crude oil prices slip. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. It's bye from all of us. Namaskar.
3: Namaste. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए नए अवसरों पर विचार किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
5: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
6: कैन एंटर द वेनेजुएलन मार्केट सक्सेसफुली।
4: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज ने कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्तीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत किया और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है, साथ ही वह लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ स्थानीय संस्कृति को भी बढ़ावा दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार को दोगुना करने को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में यह दोगुने से भी अधिक है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने यह समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आज विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योगासन का खेलों में बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता योग को खेल की दुनिया में नई पहचान दिलाने का काम करेगी। श्री मोदी ने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी चैंपियन हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants are Dr. V.K. Paul, former member, Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, President, AIIMS Bilaspur. Moderator is Priyanka Arora.
2: स्वस्थ नागरिक किसी भी सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत ने पिछले 12 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन की एक नई गाथा लिखी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, गरीबों के लिए उपचार की बेहतर व्यवस्था, आधुनिक अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों का विकास तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता दायरा, इन सभी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा और नई गति दी है। यही परिवर्तन आज करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति विषय पर आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद
2: जी। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं, सबसे पहले डॉक्टर पॉल आपसे जानना चाहती हूं कि पिछले 12 वर्ष में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आए सबसे बड़े संरचनात्मक बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं?
3: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विजनरी लीडरशिप में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनप्रेसिडेंटेड जो कभी नहीं हुए वो रिफॉर्म्स हुए।

0: और वो बदलाव आया है। इसके बहुत सारी डायमेंशंस हैं, लेकिन मैं सर्वोपरि अगर उन डायमेंशंस को देखूं तो जो एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ी है
1: जी,
0: और जो हेल्थ केयर की वजह से जो बोझ पड़ता नागरिक पे, खासकर जो गरीब परिवार है, इन दोनों में सुधार लाने के लिए, एक्सेस को बढ़ाने के लिए और जो आर्थिक बोझ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पड़ता था उनमें जो कमी आई है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। इसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की नज़र से भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और जब स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं तो व्यक्ति की और सिटीजन जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ये जो हुआ है वो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसी के साथ साथ उसी बजट स्पीच में 2018 के बजट के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब उनको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं
1: जी,
0: जो हमारी प्राइमरी केयर की व्यवस्था बनी और जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जो एक मैकेनिज्म बना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, मैं समझता हूँ कि इन दोनों को जोड़ के देखूं तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जो सुधार और जो जन जन तक इसका फायदा हुआ है उसको मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ।
1: जी हाँ, यह अभूतपूर्व पहल रही है और आज भी विश्व में सबसे बड़ी योजना के रूप में मानी जाती है। डॉक्टर अरोड़ा, अगर आपसे जानना चाहें तो जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछले 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं?
2: जैसे कि प्रोफेसर पॉल ने कहा कि एक आम व्यक्ति के जेब से आज से 12 वर्ष पहले अगर वो 100 रुपए डॉक्टर की इलाज पे या अपनी किसी बीमारी के इलाज पे खर्च करता था तो उस समय 60 रुपए उसकी जेब से जाते थे, आज ये घट करके 35-40 रुपए के बीच में आ गया है। ये एक आमूल परिवर्तन है। और दूसरी चीज जो डॉक्टर पॉल कह रहे थे, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनको इस स्ट्रैटेजिक तरीके से रणनीतिक तौर पर इनको बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं होती। यानी कि 2 किलोमीटर का जो दायरा है, रेडियस है, उस बीच में एक आयुष्मान मंदिर है
1: जी।
2: तो जिसको हम एक्सेस है या स्वास्थ्य सेवाओं की प्रति जो उसकी प्राप्ति के लिए उसकी जो सुविधा है वो उसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन किया गया है। दूसरा एक चीज और है, मेड इन इंडिया या भारत में निर्मित जो एक पूरा का पूरा अभियान चला है उसके अंतर्गत कई चीजें हुई हैं। और मैं यहाँ पर टीकाकरण क्षेत्र का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि अब इस देश में 100% जो टीके हैं वो भारतीय दिए जाते हैं
1: जी।
2: कोविड के दौरान जो 228 करोड़ टीके दिए गए वो पूरे के पूरे भारत में निर्मित थे, और उसकी वजह से जो देश में बचाव हुआ उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। एक और चीज करी गई है और जो मेड इन इंडिया की तरफ बहुत बड़ा कदम रहा है कि अनुसंधान में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे कि हमारी इलाज करने की तरीके, इलाज करने के लिए दवाइयां, इलाज करने के लिए वैक्सीन और किसी भी बीमारी के लिए अब भारत में सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें आशातीत वृद्धि हुई है। आज से 12 साल पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब किसी भी इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से हैं।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, और हम जब आयुष्मान भारत की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जाती है, तो एक किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुई है डॉक्टर पॉल?
0: हमारे देश में सुविधाओं की कमी रही कई सालों तक, उसके साथ साथ में सिटीजन को अपने आप को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए जो खर्चा होता था उसका समाधान का तरीका निकाला गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 60 करोड़ हमारे जो नागरिक हैं, 60 करोड़
1: जी,
0: उनको 5 लाख का कवरेज हर साल उनके परिवार के अंदर 5 लाख का कवरेज जो है वो सेकेंडरी टर्शरी केयर के लिए दाखिला जब होता है अस्पताल में तो वो सरकार कवर करती है
1: जी।
0: और इसके साथ साथ बहुत सारे राज्यों ने और भी अपने अपने नागरिकों को एक्स्ट्रा भी जोड़ लिया है। अब ये जो सेवाएं दी जा रही हैं ये लगभग 1900 से ज्यादा पैकेजेस की तरह से है कि आपको डेंगू का बीमारी हुई तो एक पैकेज डेंगू का है, आपको घुटने के रिप्लेसमेंट की जरूरत है एक पैकेज है। आप सोच सकते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा जो मार्जिनलाइज्ड हमारे नागरिक भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उन

0: टर्शियरी केयर में हार्ट की सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट और इवन किडनी ट्रांसप्लांट और बुखार की बीमारी, एनकेफेलाइटिस, स्ट्रोक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्लड की बीमारियां, कैंसर, इन सब बीमारियों को उनको कैशलेस, उनको सामने पैसा नहीं देना है और उनको सेवाएं मिल रही हैं 30,000 से ज्यादा अस्पतालों में, जिनमें कि कम से कम 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े हुए हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दिया गया एक आम नागरिक के लिए, ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। आयुष्मान भारत पीएमजे के अंतर्गत हर रोज 85,000 से 90,000 व्यक्ति अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, रोज 80,000 से 90,000। अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे दाखिले हो गए हैं, 10 करोड़ से ज्यादा। देखिए कितने लोगों को ये फायदा कैशलेस कवरेज का जो हुआ है। अगर हम देखें कि इससे कितनी बचत हुई है समाज को, देश के नागरिकों को, तो ये आंकड़ा आता है 1,52,000 करोड़ का फायदा जो है वो यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें कि इससे मेरे को रीच कैसे बढ़ी, तो जब शुरू हुआ था तो जो बेनिफिशरीज है, लाभार्थी हैं, उनमें लगभग एक 0.7%, less than 1% ही बेनिफिशरीज का फायदा ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम मैच्योर हुआ, आपको जान के खुशी होगी कि अब 2 से 2.5% लोग, मतलब कि 2.5 से 3 गुना बेनिफिशरीज को एक्सेस अब मिल रहे हैं। तो लोग बैठे रहते थे, अब इसको अपनी सेवाओं का को लेके जाते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो है, एक स्टडी हमें दिखाती है कि जिनको पीएमजे का कवरेज नहीं है वो टाइम पे पहुंचते हैं 30% लोग सिर्फ, और आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वो 90% लोग टाइम पे पहुंच पा रहे हैं सेवा, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास ताकत है इलाज लेने के लिए। बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि 2024 से इस कार्यक्रम के साथ में 70 और 70 से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों जोड़ दिया गया है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, अमीर गरीब सबके लिए। तो ये 6 करोड़ नागरिक हैं जिनको की एक्स्ट्रा एक आयुष्मान भारत में जगह मिली है। ये लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज परिवारों को बिलोंग करते हैं, और मुझे खुशी है बताते हुए कि 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के अंतर्गत वयो योजना जो है पीएमजे की, उसके साथ जोड़ के वयोवंदन योजना में ये समावेश हुआ है। तो जो सबसे नीडी लोग हैं उनको, क्योंकि उस उम्र पे ज्यादा बीमारियां होती हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तो उस समाज को प्रोटेक्ट करना और इस स्कीम के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है और उपलब्धि है। ये इतने बड़े स्केल के ऊपर रोज दाखिले हो रहे हैं और उन सबका इलाज हो रहा है, और इससे गरीब की जेब पे बोझ कम हुआ है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि उनको एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर मिलना शुरू हो गया है।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर अरोड़ा, अगर मैं आपसे बात करूं, आप लंबे समय से टीकाकरण कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं, मिशन इंद्रधनुष और कोविड टीकाकरण अभियान ने भारत के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है?
2: ये जब आप टीकाकरण की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इस चीज को सराहा गया है। 2014 में कुल 63% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण होता था और आज ये बढ़कर के 93-94% हो गया है। अभी NFHS का डेटा 2 दिन पहले आया है 2024-25 का, एक्चुअली उसमें डेटा 22-23 का
1: जी।
2: और उसके हिसाब से 88.7% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण उपलब्ध हो रहा। और इसका कारण, और आपने मिशन इंद्रधनुष का जो उदाहरण दिया कि जो बच्चा रह जाए जिसको टीका नहीं मिला हो उसको देने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जिनको टिटनेस का टीका नहीं मिला उनको भी देने का। लेकिन ये टीका खाली कहने पर से नहीं है, इस कार्यक्रम में जो नवाचार किया गया कि इस देश का हर बच्चा जो टीकाकरण के लिए उसका अधिकार था उसको मैप आउट किया गया, उसकी पहचान की गई और उस तक पहुंचने का प्रयास किया गया। और यह जो प्रयास था जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, ये हम सीखे खास तौर पे जब हम पोलियो उन्मूलन कर रहे थे। पूरे के पूरे टीकाकरण में हमारा अब हर बच्चा, हर महिला जो है हमारे एक तरीके से हाथ पे लिखा रहता है। और अब इसको आगे ले जाकर के यूएन आईटी प्लेटफॉर्म है जिससे कि हर एक एक हमारी रजिस्ट्री बन गई है जिसमें बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है। लेकिन इसका मुख्य लाभ जो हुआ है

0: कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ता आई है, क्योंकि अब जब मैं बच्चों के तक पहुंचता हूं, गर्भवती महिलाओं तक पहुंचता हूं, तो खाली टीकाकरण नहीं है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बाकी जो समस्याएं हैं उनको भी वहां तक लेके जाने का प्रयास किया जा रहा। साथ ही साथ जो ये माइक्रो प्लान वाला सिस्टम है, इसका प्रभाव हमारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये खास तौर पे दो बड़ी बीमारियां हैं
1: जी।
0: ये भी अपने आसपास के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चारों तरफ लगभग 5,000 की पॉपुलेशन होती है, वहां तक पहुंचाने में भी इसी उपक्रम का प्रयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी नवाचार किया जा रहा है टीकाकरण में, उसका प्रभाव खाली बच्चों की और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं पर सुदृढ़ नहीं हुआ है, लेकिन बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो भारत का टीकाकरण कार्यक्रम है, वो हमारी सारी की सारी सरकारी जो भी हमारे कार्यक्रम है, अभियान है, उसमें सबसे ज्यादा कवरेज या पहुंच जो है टीकाकरण कार्यक्रम की है। इस देश के लगभग 97% जो टीकाकरण के अधिकारी हैं, उन तक कम से कम एक टीका लग चुका है। तो यही एक रास्ता है जिससे कि बाकी जो सेवाएं हैं उनको भी पहुंचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अभी डॉक्टर अरोड़ा ने आयुष आरोग्य मंदिरों की बात की, और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिहाज से। और अभी देश में 1,70,000 से अधिक हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं। तो अगर बात करें आयुष्मान भारत, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि जो आयुर्वेद है और आयुष उपचारों को उसमें शामिल किया जा सके। तो सरकार कैसे आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा को एक साथ लेकर चल रही है?
2: आपके सवाल में दो हिस्से हैं। पहले मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो बात कही है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा।
1: जी।
2: किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्राइमरी केयर होती है, प्राथमिक सेवाएं जो होती हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में प्राथमिक सेवाओं में जो सुदृढ़ता आई है, हमारे सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालों से काम निभा रहे थे बिल्कुल लिमिटेड तरीके से, जितना भी कर पा रहे थे लिमिटेड था। 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको आज हम आयुष्मान आरोग्य मंत्र कहते हैं, उनकी संरचना, उनकी सोच लेके आए, जो एक लिमिटेड प्राथमिक सेवाएं होती थी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ या संक्रमित बीमारियों की, इन्फेक्शियस बीमारियों, कम्युनिकेबल डिजीज की, वो तो करना ही है, उसमें भी और डेप्थ और इंटेंसिटी लेके आए। लेकिन जो नहीं हो रहा, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी इतनी प्रोमिनेंट है, कैंसर, अब ये सेवाएं प्राथमिक सेवाओं में आयुष्मान आरोग्य में निहित हो गई कि हम इनको एक सीमित तरीके से, सीमित इन द सेंस कि पीरियोडिक, इतने साल के बाद हर व्यक्ति का एक चेकअप होगा, हर साल ब्लड प्रेशर चेक होगा, हर साल शुगर चेक होगी डायबिटीज के लिए, और कैंसर 3 साल में 5 साल जैसा प्रोटोकॉल है, उस पर 3 कैंसर, मुंह का कैंसर, कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर लेडीज में, और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, इसकी सबकी स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को साथ में जोड़ा गया, आई, आंख का इलाज, ENT, कान का इलाज, नाक का इलाज, डेंटल हेल्थ, फिर एल्डरली केयर को भी जोड़ा गया इसमें। तो 12 पैकेजेस बने, शुरू के 5 पैकेजेस 4 पैकेजेस के बजाय उसका आयाम बढ़ गया। अब और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 1,70,000 ये बने, उसमें 2 तरह के हैं, एक सब सेंटर लेवल का होता है 6,000 पॉपुलेशन के लिए, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है लगभग 30,000 का उसका दायरा होता है। कुल मिला के ये यूनिट बन जाता है, एक PHC वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 5 या 6 या 4 या 5 सब सेंटर वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन जाता। अब बिल्कुल आश्चर्य भी होगा आपको, 1,20,000 नए मिड लेवल प्रोवाइडर्स, इनको करने के लिए टीम को बढ़ाया गया। हमारी पुरानी टीम थी आशा वर्कर थे एक गांव में लगभग 1,000 की पॉपुलेशन पे, फिर हमारे पास ANM थे, कहीं कहीं मेल हेल्थ वर्कर होता था, लेकिन 1,20,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को लगाया गया है। इतनी रेवोल्यूशनरी बात है कि इतने संख्या में एक ह्यूमन रिसोर्स को प्राइमरी केयर के पीछे लगाया गया, और ये टिपिकली BSc पास हमारी नर्सेस होती हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और सब जगह पे टेलीमेडिसिन का प्रावधान हुआ
1: जी।
2: सब जगह पे 100 से ज्यादा दवाइयाँ, सब सेंटर वाले में 105 दवाई और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 170 फ्री मेडिसिन, सब सेंटर वाले में 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्री, और PHC वाले में 42 से ज्यादा फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रावधान किया गया है। तो सारे समाज को

0: सारे जितनी पॉपुलेशन है उसको एक सूत्र में बांध के, कमिटमेंट है कि हम इनका चेकअप करेंगे, कमिटमेंट है कि हम उनको याद दिलाएंगे कि दवाई आपको फ्री मिल रही है, दवाई जब खत्म होती है तो अगली दवाई आप लीजिए, जरूरत होगी तो टेलीमेडिसिन के द्वारा जोड़ा जाएगा, और जो बाकी सेवाएं शुरू से इम्यूनाइजेशन है, मदर चाइल्ड हेल्थ है, टीबी कंट्रोल है, लेप्रसी, ये जो प्रोग्राम वो तो चल रहे हैं, उनमें भी ताकत है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्लैनेट पर सबसे बड़ा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एक रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो आज हमारे देश में हो रहा है, और ये बहुत दूर तक हमें लेके जाएगा, क्योंकि क्रॉनिक बीमारियों को बचाने का तरीका सिर्फ यही होता है कि या तो वैसे ही हम अपने आप को अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, नहीं तो हम डिटेक्ट करें, और प्राइमरी हेल्थ के द्वारा डिटेक्शन भी हो, प्रिवेंशन भी हो, हेल्थ प्रमोशन भी हो, और जरूरत पड़े तो फिर ट्रीटमेंट भी हो, जिसमें फिर पीएम से जुड़ जाता है।
1: बिल्कुल, देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है हमारे जैसे देश की, तो घर घर जाकर इस चीज की जांच करना और उनको बताना, रोकथाम के लिए उपाय बताना, तो ये बहुत बड़ी बात है।
0: दूसरी बात आपने कही कि हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ा गया, बहुत बड़ी बात है
1: जी।
0: ये हिस्टोरिक जब देखा जाएगा तो हिस्ट्री में ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में जो भारत का अपना सिस्टम थे, आयुर्वेद था हमारा, सिद्ध है हमारे पास, यूनानी है, ये सब हमारे भारत में पनपे हुए सिस्टम है, ये इन सब के जो योग है वो भी स्वास्थ्य के लिए भी और स्वास्थ्य से भी ऊपर का है, वो उन सब को एक मेन स्ट्रीम में लाना, उनको ये बजट प्रदान करना, उनके सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और उनको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच में जोड़ना, और को जो बढ़ोतरी मिली है वो बहुत बड़ी बात है कि दोनों का समावेश हो, आधुनिक कार्यक्रम, आधुनिक पद्धति का भी हो और ट्रेडिशनल का भी हो, ताकि दोनों मिलके एक व्यक्ति को, एक नागरिक को वो दे पाए जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा, स्वास्थ्य रहे, बीमारियां नहीं हो, मन भी अच्छा हो, तन भी अच्छा हो और आत्मा भी अच्छा हो, इन सब का जो जोड़ इंटीग्रेटिव अप्रोच में लेके आए हैं, ये भारत का मॉडल जो है ये दुनिया देखेगी, और आयुर्वेद का जो प्रचलन है वो बड़ा है, आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं, और बिल्कुल ये मेन स्ट्रीम में दोनों को ले जाने का जो माहौल बना है और जो ताकत आई है ये भी अनप्रेसिडेंटेड
1: है। बिल्कुल, एक साथ ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अरोड़ा, हम जैसे बात कर रहे थे टीकाकरण की भी, तो इन दिनों सरकार जो कैंसर है उसकी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन पर, स्क्रीनिंग पर बहुत ध्यान दे रही है, और खासकर जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: वो HPV वाला टीकाकरण है, और इसके अलावा डॉक्टर पॉल ने तीन कैंसर्स के बारे में बताया, एक तो महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह वाला कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर है उसी के लिए वैक्सीन है ये
1: जी,
2: उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और मुंह का कैंसर, और एक तीसरे कैंसर के लिए वैक्सीन ऑलरेडी दी जा रही है जो हेपेटाइटिस बी है, उसकी वजह से लिवर का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर की तरफ जो है, क्योंकि जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय में हम सब लोगों का ध्यान बहुत अधिक आकर्षित हुआ है कैंसर की बीमारी की तरफ, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, जल्दी पहचान के लिए, फिर इलाज के लिए, और इस दिशा में बहुत सारा काम किया गया है। एक तो स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और हुई है हमारे देश में इस पिछले 12-13 साल में, एम्स का संख्या एक से बढ़कर के इस समय 23 एम्स हो गए
1: जी,
2: जो अपने आप में एक गजब की चीज है। कि और ये एम्स बड़े शहरों में नहीं करे गए, फॉर एग्जाम्पल झारखंड में देवघर करके एक जगह है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता, मतलब ऐसी जगह किया है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन या पिछड़े इलाकों में किया गया है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में है, इसी तरीके से JNK में दो हैं, और बाकी पूरे कंट्री में इस तरीके से करे गए, और खास तौर पे ऐसे क्षेत्रों में किया गया है एम्स को एस्टैब्लिश, जहां से ज्यादा लोगों के पास टर्शरी केयर, जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, और इनमें कैंसर के इलाज के लिए बिल्कुल आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध हैं इन सारे में, ये सब नए इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद कैंसर की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ अनुसंधान इस तरीके से किया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याएं हैं, और उसमें हमारे कुछ कैंसर स्थानीय तौर पे बहुत होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो लेरिंजियल कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है, और सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज्यादा है, तो उन क्षेत्रों में उन पे विशेष तौर पर ध्यान देकर के उसकी स्क्रीनिंग है, उसके बचाव के लिए क्या तरीका किया जाए, उसके इलाज के लिए क्या किया जाए,

0: इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बाकी सरकार जिनको सहायता करी है जैसे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, इनके चारों तरफ पूरे देश में शाखाएं बनाई जा रही हैं और कुल मिलाकर हर एक प्रदेश में कैंसर का एक रीजनल सेंटर बनाया गया है, जिससे कि लोगों को दूर दराज चल करके जाने की जरूरत ना पड़े और घर के पास ही ये सुविधाएं उपलब्ध हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर हम आज देखें, आज भारत डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और जो स्वास्थ्य आईडी जैसी पहल है, वो आम नागरिक के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से सरल और प्रभावी बना रही है?
2: भारत का जो डिजिटल हेल्थ की तरक्की हुई है वो दुनिया में बिल्कुल अलग और शायद सबसे आगे की तरक्की की तरह मानना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया और उसके जो डिफरेंट स्वरूप हैं उसमें एक है कि हमारे पास हर नागरिक का इवेंचुअली एक डिजिटल आइडेंटिटी होगा, उसको हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कहते हैं, आभा। तो आपको हैरानी होगी 87 करोड़ व्यक्तियों का, नागरिकों का आभा आइडेंटिटी आज हमारे पास अवेलेबल है, 87 करोड़, 145 करोड़ में से। इसका क्या फायदा है कि इस सिस्टम के द्वारा, इस आइडेंटिटी के द्वारा जो मेरे हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं वो उसके ऊपर लोड हो सकते हैं, वो पुराने नए अगले सब जुड़ सकते हैं और जब किसी ने इसको देखना है और प्रस्तुत करना है और रिकॉर्ड की तरह भी है तो वो डॉक्टर साहब उसको देख के फैसला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हमारे और से और लोड होते जाएंगे, ये एक इनोवेशन का भी जरिया बनेगा और इसमें बहुत सेवा की ईज जो है, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ, वो अचीव होगी। इसमें फिर जो टेलीमेडिसिन में जो तरक्की हुई है, जैसे मैंने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टेलीमेडिसिन हो गया है, हमारे पास ई संजीवनी एक टेलीमेडिसिन है, रोज हजारों कंसल्टेशन उसके ऊपर होती है, हजारों, और उसमें इतने डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। उसके अलावा प्राइवेट स्पेस में टेलीमेडिसिन हो रही है, इंस्टीट्यूशंस में एक रेवोल्यूशन आ गई है टेलीमेडिसिन। उसके और डायमेंशन भी है कि हॉस्पिटल की रजिस्ट्री बनेगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्री बनेगी, वो सब काम हो रहा है। लेकिन जो डिजिटल हेल्थ है वो एक हिस्सा बन चुका है हमारे देश में हेल्थ सिस्टम का। हम डिजिटल हेल्थ को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स को लागू करते हैं, हम बेनिफिशरीज को चिन्हित करते हैं, हम बेनिफिशरीज को फायदे के साथ जोड़ते हैं, उनको ट्रैक करते हैं। सो डिजिटल हेल्थ में जो इतना बदलाव आया है और जो उसकी वजह से हेल्थ की एक्सेस बढ़ी है, एक्यूरेसी बढ़ी है और जो इसका फ्यूचर पोटेंशियल है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और इसके आगे चलते हुए जब इस टेक्नोलॉजी को हम एआई के साथ लिंक करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के और सॉल्यूशंस होंगे, तो मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल अग्रणी देशों में होगा इस काम में।
1: डॉक्टर अरोड़ा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इशू। व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 इयर्स?
0: We have just seen last 2 days some of the recent data. One of the key issues which has been bothering all of us was stunting in children. And stunting has been traditionally recognized as the quality of health services. And during last, between NFHS 5 and 6, I think the stunting has decreased by 12 or 14 percent points. Now this is remarkable because this is, jisko kehte hain bilkul phansi hui cheez thi, jisko ठीक करने में बहुत ही मेहनत लग रहा था। और ये देश भर में पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उनके पोषण पे विशेष ध्यान देना, उस दिशा में जो काम हुआ है। तो अब हमने देखा है कि बच्चों में जो स्टंटिंग, हमारे यहाँ लगभग 50% बच्चे अपनी पूरी ऊंचाई को प्राप्त और लंबाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो अब आ गए हैं 29% पे लगभग। लेकिन अभी काम करने की जरूरत है, वो है अनीमिया, खून की कमी है। अब वो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी किशोरी बिटिया लोग हैं और बाकी बच्चों में ये अनीमिया की समस्या ऐसी है। इसकी तरफ जो है अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम आरंभ किया गया है और उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन वो विकास में और मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि देश के डिफरेंट हिस्सों में अनीमिया के कारण अलग अलग हो सकते हैं और खाने में खासतौर पे उस चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के, और एक तीसरी चीज जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे रहा है कि एक समय था जब हमारे यहाँ केवल 27% महिलाएं अपना प्रसव जो है एक संस्था में करती, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, आज वो पढ़ करके लगभग 95% हो गया है। ये भी एक अभूतपूर्व उपलब्धि है और इसकी वजह से नवजात शिशुओं

0: मृत्यु असमय मृत्यु से उसको कम किया गया है, और साथ ही साथ जो हमारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी मैटरनल मोर्टैलिटी वो एकदम नीचे आ गई है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि जो हमारी माताएं हैं और बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य में जो प्रोत्तर विकास हुआ है उस विकास में एक तेजी आई है, मृत्यु दर में कमी हुई है, चाहे वो माँ हो चाहे नवजात शिशु हो। और इसमें भी हम लोग पूरी कोशिश की जा रही है कि 2030 तक उससे पहले ही जो हमारे SDG गोल्स हैं उनको हम प्राप्त कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन चीजों की उपलब्धि प्राप्त कर सके जिसमें ज्यादातर देश प्राप्त नहीं कर पाए हमारी तरफ।
1: बिल्कुल, अगर डॉक्टर पॉल आपसे बात करूं, कोरोना के टाइम की जब कभी याद आती है तो अब भी जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस समय जो भारत की रणनीति थी उसको पूरे विश्व में सराहा गया, दो इट वॉज अ मेजर चैलेंज फॉर अस। सो वॉट मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस द COVID-19 पेंडेमिक?
2: उसके बाद में हमने अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया। एक वन हेल्थ मिशन देश में लॉन्च किया गया। उसका तात्पर्य यह है कि जो महामारियां हम अभी देख रहे हैं पिछले दशकों में, और कोविड की महामारी को भी देखा और आगे देखते हैं, तो ये लगता है कि महामारी का जो ओरिजिन है, जो वायरस है, वो एनिमल किंगडम से आता है, बैट से, चमगादड़ से आता है, या बर्ड से आता है, चिकन से आता है। अब इन सब चीजों को समझते हुए क्लियर हो गया है कि हम एनिमल किंगडम से अलग नहीं है, हम वाइल्ड लाइफ के सिस्टम से अलग नहीं है, हम जो हमारा लाइफ स्टॉक है, घरेलू जानवर है, उनसे अलग नहीं है, हम एनवायरनमेंट, जंगल, इन सब से सभी जुड़े हुए। तो वन हेल्थ के अप्रोच के द्वारा इन सब सेक्टर्स को और इन सब डायमेंशंस को जोड़ के एक जो मिशन बनाया गया है, उनके अंतर्गत जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है कि कहाँ पे क्या बीमारी हो रही है, पशु में भी क्या हो रही है, ह्यूमन में भी क्या हो रही है, उसको जीनोमिक लेवल तक जाके समझना और उसके बारे में देखना कि वो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसको कंटेन कैसे करना है। तो ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम वन हेल्थ के अंतर्गत बनाया गया है। हमारे सर्वेलेंस की पद्धतियों को स्ट्रॉन्ग किया गया है, हमारे जो इंडस्ट्री है और साइंस एकेडमी का सिस्टम है उनको अलर्ट करके उनकी अप्रोच करा गया है कि जो वायरसेस महामारी का रूप दे सकते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं उनके लिए अपनी रिसर्च को बढ़ाओ, उनके लिए तैयार रहो कि पहले से ही वैक्सीन के रिसर्च हमारी बहुत आगे तक हो, ताकि अगर मुसीबत आती है तो हम जल्दी से जल्दी 100 दिन के भीतर वैक्सीन को पैदा करने की ताकत रखें। इसके अलावा जो रिस्पांस है ग्राउंड से, जो रिस्पांस है हमारा, जो एक IDSP का सिस्टम है, 2 लाख से भी ज्यादा जगह से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, उसको सशक्त किया गया है। सिंड्रोमिक अप्रोच ICMR ने डिटेक्ट करने का सिस्टम को सशक्त किया गया। वेस्ट वाटर सर्विलेंस भी जाए कि सुएज में क्या वायरसेस आ रहे हैं, काफी बड़े तौर पे इन सारे को पिछले लेसन को लेकर और आज की साइंस को जोड़ते हुए हमने अपनी व्यवस्थाओं को बहुत स्ट्रांग किया है। और ये जो फ्यूचर के लिए हमारी बायो सिक्योरिटी है, फ्यूचर के लिए हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है, उसके लिए स्टेप जो है पूरे तरीके से लिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर बात करें आम आदमी को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, आवास मिल जाए और अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, और किफायती दाम पर जब आपको दवाएं मिलती हैं तो उससे बड़ी बहुत ही सुखद एहसास नहीं हो सकता एक आम आदमी के लिए। तो जन औषधि केंद्र ऐसे में कितने महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं?
2: जन औषधि केंद्रों के द्वारा हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो गुणवत्ता में पूरी उतरती है उनको उपलब्ध किया जाता है। देश में 19,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों का जाल बिछा हुआ है और बहुत तेजी से इसको 25,000 तक लगाने की प्लान है। इसमें हर रोज 10 लाख से ज्यादा व्यक्ति अपनी दवाइयां खरीदते हैं
1: जी,
2: किफायती दाम पे मिलती हैं। मार्केट में जो रेट होता है उससे आधी और कई दवाइयां तो सिर्फ 10% तक भी नीचे उनको उसका प्राइस से मिलता है, बहुत फायदा होता है। अगर हम देखें जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बचत भारत के नागरिक समाज को इस कार्यक्रम की वजह से उपलब्ध हुई है। और ये कार्यक्रम के द्वारा जो जन औषधि केंद्र हैं ये सब जगह, सब प्रदेशों में, सब जिलों में इसका डायमेंशन दिखाई देती है, इनकी प्रेजेंस दिखाई देती है। और दवाइयों के अलावा जो मेंस्ट्रुएशन के लिए पैड्स की भी उपलब्धि की गई है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, और जब से ये वाला कार्यक्रम शुरू हुआ 105 करोड़ से ज्यादा सुविधा नैपकिन जो है मेंस्ट्रुअल नैपकिन दिए गए जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है। तो ये दो काम कर रहे हैं, एक

0: तो गुणवत्ता की दवाइयां मिल रही हैं, दूसरा व्यक्ति को बचत हो रही है, और तीसरा इसकी वजह से एक्सेस बढ़ती है, व्यक्ति सेवाएं ले पाता है, इस्तेमाल करता है तो बीमारी रुकती है, और उसका जो जायजा है वो हम रुपयों में नहीं ले सकते। इतना बड़े भले का ये कार्यक्रम है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, नए भारत की जो स्वास्थ्य क्रांति की यात्रा है केवल नीतियों और आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन की गवाही भी है। डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आप दोनों का धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: In the special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants were Dr. V.K. Paul, former member Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, president, Ames Bilaspur. Moderator was Priyanka Arora. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर कांवड़ समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड में घायल लोगों से मिलने अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री राजधानी में अग्निकांड जैसी घटनाओं को रोकने और अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर अंकुश लगाने के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगी। दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस ने अवैध पार्किंग के खिलाफ और तय मल्टी लेवल पार्किंग सुविधाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक मुहिम शुरू की। और आईआईटी दिल्ली जेई एडवांस 2026 में पात्र होने वाले छात्रों के लिए कल से भारत के 3 शहरों में एक ओपन हाउस का आयोजन करेगी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर आयोजित कांवड़ समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान श्रीमती गुप्ता ने निर्देश दिए कि कांवड़ समितियों के पंजीकरण की प्रक्रिया समय से शुरू की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि पंजीकरण की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू करने की दिशा में सभी तैयारियां पूरी कर ली जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी समितियों को आवश्यक दस्तावेजों और वार्षिक ऑडिट संबंधी औपचारिकताओं की जानकारी समय रहते उपलब्ध कराई जाए, जिससे आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई न आए। साथ ही श्रद्धालुओं को 24 घंटे चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने और व्यवस्थाओं पर बल देने, बैंक खातों में ट्रांसफर करने तथा सिंगल विंडो व्यवस्था लागू करने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज साकेत के मैक्स हॉस्पिटल का दौरा किया और मालवीय नगर में आग लगने की दुखद घटना में कल घायल हुए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने घायलों और उनके परिवार वालों से बातचीत की और इलाज कर रहे डॉक्टरों से इलाज की समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को सभी जरूरी मदद देने का निर्देश दिया। वहीं दिल्ली सरकार में पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यह एक दुखद घटना है और इसमें कई बेकसूर लोगों की जान गई है।
4: बहुत ही दुखद घटना है और इतने सारे इनोसेंट लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मुख्यमंत्री महोदया ने इसकी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी ऑर्डर की है। निश्चित तौर पर वहां पर एक इलीगल होटल चल रहा था, रेस्टोरेंट भी इलीगली ही चल रहा था, कोई उसके लाइसेंस के डिटेल है नहीं। और एक 6 कमरों का बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना जो कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे लाई गई थी, उसका भी एक यूनिट वहां पे चल रहा था जिसको 2024 में लाइसेंस मिला था।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के मालवीय नगर अग्निकांड जैसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और अनधिकृत निर्माणों तथा अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता वो करेंगी। दिल्ली सरकार ने इस पूरे मामले में सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि मालवीय नगर अग्निकांड के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले किसी भी भवन मालिक, अधिकारी और अन्य दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
5: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा मानकों का अनुपालन, प्रभावी निगरानी व्यवस्था और जवाबदेह तंत्र सहित सभी पहलुओं पर समग्र रूप से काम करना आवश्यक है, जिससे भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। दिल्ली सचिवालय में कल आयोजित होने वाली इस बैठक में दिल्ली पुलिस, राजस्व विभाग, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, DDA, दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली जल बोर्ड तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। मंत्री ने बताया कि मालवीय नगर के एक गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग की घटना के पीछे रही कमियों की गंभीरता से जांच की जाएगी और जिसकी भी जवाबदेही बनती है उसे तय किया जाएगा। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि राजधानी में अवैध संपत्तियों, बिना अनुमति संचालित हो रहे होटलों और गेस्ट हाउसों तथा उन सभी संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो अग्नि सुरक्षा नियमों और भवन उपविधियों का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
3: दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पिछले एक महीने के दौरान राजधानी में सघन निगरानी, निरीक्षण और परिवर्तन गतिविधियां चलाई हैं। साथ ही खाद्य सुरक्षा की नियमित निगरानी प्रक्रिया के तहत विभाग ने विभिन्न खाद्य व्यवसाय प्रतिष्ठानों से एक महीने कुल 217 खाद्य नमूने एकत्र किए हैं। एक रिपोर्ट।
6: इस अवधि के दौरान विभाग को 145 खाद्य विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनमें से 133 नमूने निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप पाए गए, 12 नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए, जिनके संबंध में संबंधित खाद्य व्यवसाय संचालकों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा एक कार्रवाई में विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस के सहयोग से खारी बावली बाजार में चल रही एक कम गुणवत्ता वाली मसाले बनाने की इकाई का भंडाफोड़ किया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि नियमों का पालन आसान बनाने और व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने लाइसेंस तथा रजिस्ट्रेशन संबंधी बड़ी संख्या में आवेदनों का निस्तारण किया है। श्री सिंह ने बताया कि मई माह के दौरान कुल 503 लाइसेंस जारी किए गए, जबकि लाइसेंस नवीनीकरण के 753 आवेदनों पर भी कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से नियामक निगरानी और ज्यादा मजबूत हुई है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आनंद पाठक।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को आज वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
7: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
3: प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी बल दिया कि यह विस्तार आने वाले दिनों में प्रशिक्षकों, खेल वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और इवेंट प्रबंधकों के लिए

0: विविध अवसर पैदा करेगा। वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का ऐतिहासिक पहला संस्करण आज अहमदाबाद के एका एरेना में आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने सब जूनियर से लेकर सीनियर मास्टर्स तक 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। इस खेल को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए वैश्विक स्तर पर पहली बार एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक स्कोरिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है, जिससे हर एक आसन, संतुलन और गति का एक सटीक मूल्यांकन किया जा सके। यह आयोजन योगासन को आध्यात्मिक कल्याण के साथ साथ ओलंपिक में एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में स्थापित करने का एक बड़ा प्रयास है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस ने अवैध पार्किंग के खिलाफ और तय मल्टी लेवल पार्किंग सुविधाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के अंतर्गत यातायात की आवाजाही को आसान बनाने, सड़क किनारे होने वाली भीड़ को कम करने और पार्किंग के मामले में अनुशासन को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम इस सप्ताह से राजधानी में तय मल्टी लेवल पार्किंग सुविधाओं के आसपास एक तालमेल वाली कार्यवाही और जागरूकता मुहिम शुरू की है। इस मुहिम का उद्देश्य वाहन चालकों को सड़कों, सिविस लेन, फुटपाथ, कैरिज वे, नो पार्किंग वाली जगहों और ऐसी पार्किंग सुविधाओं के आसपास की दूसरी सार्वजनिक जगहों पर गलत तरीके से गाड़ियां खड़े करने के बजाय तय पार्किंग जगहों का इस्तेमाल करने के लिए बढ़ावा देना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि लोगों के लिए पहले से मौजूद पार्किंग सुविधाओं का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा व्यस्त बाजारों, रिहायशी व्यापारी इलाकों और सार्वजनिक जगहों के आसपास यातायात की आवाजाही आसान और बिना रुकावट की दिशा में बल देना है। इस तालमेल वाली मुहिम में 6 मल्टी लेवल पार्किंग जगहों को चुना गया है। इनमें कमला नगर के स्पार्क मॉल, ग्रेटर कैलाश के एम ब्लॉक मार्केट, हौज खास, कुतुब रोड, निजामुद्दीन बस्ती और परेड ग्राउंड शामिल है। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे तय पार्किंग सुविधाओं का इस्तेमाल करें और अपनी गाड़ियां नो पार्किंग जोन में खड़ी करने से बचें। उन्होंने यह भी सूचित किया कि इन पार्किंग सुविधाओं के आसपास गलत तरीके से खड़ी पाई गई गाड़ियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: दिल्ली सरकार में उद्योग मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने आज नरेला की इंडस्ट्री एसोसिएशन और मायापुरी के कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सोसाइटीज के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सचिवालय में बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि इस दौरान उन्होंने नरेला में जलभराव की समस्याओं पर चर्चा भी की, साथ ही जल निकासी प्रणाली को बेहतर करने और पूरे इलाके के विकास संबंधी कार्यों को लेकर अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आईआईटी दिल्ली जेई एडवांस 2026 में पात्र होने वाले छात्रों के लिए कल से भारत के 3 शहरों में एक ओपन हाउस का आयोजन करेगी। इस 3 दिवसीय सत्र का आयोजन दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु में किया जाएगा। इस ओपन हाउस में छात्रों को आईआईटी दिल्ली के छात्रों, फैकल्टी और पूर्व छात्रों से बातचीत करने का अवसर मिलेगा। साथ ही आईआईटी दिल्ली द्वारा छात्रों के पूछे गए सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इसके अलावा पढ़ाई, रिसर्च, कैंपस लाइफ और आजीविकाओं के मौकों के बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे। इससे छात्रों को अपने शैक्षणिक सफर के बारे में सोच समझकर फैसला लेने में मदद मिलेगी। दिल्ली पुलिस ने शालीमार बाग क्षेत्र से अवैध रूप से रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह विदेशी नागरिक बिना किसी वैध यात्रा और पहचान दस्तावेज के अवैध रूप से भारत में रह रहा था। पुलिस ने जांच के दौरान विदेशी नागरिक से एक फोन बरामद किया है, जिसमें बांग्लादेशी राष्ट्रीय पहचान दस्तावेज पाए गए हैं और फोन में प्रतिबंधित IMO एप्लीकेशन भी इंस्टॉल है। पुलिस ने बताया कि अवैध अप्रवासी को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उसे वापस भेजने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की मादक पदार्थ निरोधी दस्ता ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले

0: आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से 22 किलोग्राम से अधिक का मादक पदार्थ बरामद किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है। राजधानी में आज करीबन सभी जगह तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। तेज बारिश के कारण लोगों को जल जमाव का सामना भी करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने परीक्षा केंद्र तक रियायती दरों पर बस यात्रा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ यात्रा 2026 की तैयारियों को लेकर कांवड़ समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड में घायल लोगों से मिलने अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री राजधानी में अग्निकांड जैसी घटनाओं को रोकने और अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर अंकुश लगाने के लिए कल एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगी। दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस ने अवैध पार्किंग के खिलाफ और तय मल्टी लेवल पार्किंग सुविधाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए एक मुहिम शुरू की। और IIT दिल्ली JEE एडवांस 2026 में पात्र होने वाले छात्रों के लिए कल से भारत के 3 शहरों में एक ओपन हाउस का आयोजन करेगी। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति के साथ उनकी व्यापक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद का इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का काम कर रही है। पूर्वोत्तर परिषद की बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार दोगुना करने को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में ये दोगुने से भी अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण ये है कि देश के नागरिकों ने समझ लिया है कि वे अपने घरों की छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं और बिजली बिल शून्य हो सकता है। इसके अतिरिक्त श्री जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक में सरकारी भवनों के छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की भी समीक्षा की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पर बताया कि अब तक निर्धारित लक्ष्य का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और केंग खाईजिंग को शिकस्त दी। वहीं मिक्स डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला फ्रांस के थॉम मार्क गिक्वेल और डेल्फिन आरोर डेलरू से जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi today said, Yoga is India's timeless gift to humanity, virtually joining the inaugural edition of the World Yogasana Sports Championship being held at Eka Arena in Ahmedabad. The Prime Minister said, Yoga unites mind, body and spirit and inspires a healthier and more harmonious world. The Prime Minister today expressed confidence that the maiden World Yoga Championship will give Yogasana a global sports identity and open a wide range of opportunities for the youth. Mr. Modi highlighted that every major sport brings along its own comprehensive ecosystem. He stated that as Yogasana sports expand globally, it will create significant new possibilities and career paths for athletes. Furthermore, Mr. Modi emphasized that this expansion will generate diverse opportunities for trainers, sports scientists, researchers and event managers in the coming days.
3: जैसे जैसे योगासना स्पोर्ट्स का विस्तार होगा वैसे वैसे इससे जुड़ी नई संभावनाएं भी बढ़ेगी। ये खिलाड़ियों के लिए नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। यह ट्रेनर्स, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इवेंट मैनेजर्स के लिए भी नए अवसर बनाएगा।
0: Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He added, both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudendra Tandon said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation.
4: Union Minister for Petroleum and Natural Gas Hardeep Singh Puri and Union Minister for Road, Transport and Highways Nitin Gadkari today launched India's first flex-fuel passenger vehicle by Maruti Suzuki in New Delhi. Flex-fuel vehicles can operate on a range of ethanol-petrol blends from E20 up to E100. Speaking at the launch, the minister said the entry of flex-fuel technology into the passenger vehicle segment is not merely a

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम मधुरिमा आपके लिए। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ कुसुम और मैं आपके लिए लेकर आई हूं राग पीलू के गाने। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिल्म यादों की बारात के इस गीत से, आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
4: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: जी हाँ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है मधुरिमा और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ कुसुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राग पीलू के गाने। कहते हैं कि राग पीलू रागों की सबसे सुखद ध्वनि है। इसमें जिंदगी की अलग अलग भावनाओं जैसे उम्मीद, आनंद और विरह का मिला जुला संगम है। ये राग मशहूर संगीतकार ओपी नैयर साहब को इतना पसंद था कि उन्होंने अपनी फिल्म के लगभग आधे गाने इसी राग में बनाए। जी हाँ, फिल्म आर पार का टाइटल सॉन्ग सुना है आपने, कभी आर कभी पार लगा तीरे नजर, राग पीलू में ही है। इसे ओपी नैयर ने मजरूह सुल्तानपुरी से लिखवाया और गवाया, सुरों की मलिका शमशाद बेगम से गवाया। सुनते हैं वही गीत।

साल 1965 में शशि कपूर और नंदा अभिनीत एक फिल्म आई थी, जब जब फूल खिले। ये फिल्म अपनी लाजवाब प्रेम कहानी और शानदार संगीत के लिए आज भी जानी जाती है। कल्याण जी आनंद जी के संगीत और आनंद बख्शी के लिखे गीतों ने सिने प्रेमियों के दिलों में प्यार की ऐसी प्यारी परिभाषा रची कि हर प्यार करने वाला दिल कह उठा, परदेसियों से ना अखियां मिला।

वैसे कोई कितना भी कह ले कि परदेसियों से ना आंखियां मिलाना, लेकिन आखिर आंखियां मिल ही जाती हैं और तब दिल प्यार का आसरा मांग बैठाता है। ऐसे ही भाव से भरा एक गीत है फिल्म धूल का फूल में, जिसे राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा एक मुशायरे में भाग ले रहे हैं और मंच पर अपनी अपने कलाम की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये गीत भी राग पीलू के में है, आइए सुनें।

0: नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र मणि राजेश। स्पोर्ट्सकैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज, एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्सकैन के साथ खेल की हर बात। सबसे पहले मुख्य समाचार। अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन, कहा योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने शीर्ष स्थान हासिल किया, प्रिया घांगस और विश्वनाथ सुरेश ने टॉप 3 में जगह बनाई। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी मेंस डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। मेंस सिंगल्स, वीमेन सिंगल्स और मिक्स डबल्स में भारत की चुनौती समाप्त। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में मीरा एंडिवा फाइनल में पहुंची। दूसरा सेमीफाइनल डायना श्नाइडर और माजा चोलिनस्का के बीच। जापान में एशिया अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कल भारत की दोनों टीमें उतरेंगी। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए एक व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
1: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की और विस्तार से जानकारी के साथ अहमदाबाद से हमारी संवाददाता अपर्णा खूंट।
2: द सिटी ऑफ अहमदाबाद इज बजिंग विद अनप्रेसिडेंटेड

0: a strong 122 member squad competing across 6 age categories ranging from sub juniors to senior masters. The technical precision of this event is underscored by the introduction of an electronic scoring system, a first at the global level, ensuring that every posture, balance and flow is judged with absolute transparency. As this grand opening ceremony unfolds, the message is clear: Yogasana is India's greatest contribution to the world of sports. Whether it is individual events, artistic displays or traditional group performances, the world is watching to see how this ancient heritage thrives in the competitive arena.
1: और योगासन के मैट के बाद अब चलते हैं बॉक्सिंग के रिंग की तरफ, जहां विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों का जबरदस्त दबदबा देखने को मिला है। जैस्मीन लंबोरिया ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान अपने वर्ग में हासिल कर लिया है, वहीं प्रिया घांघस और विश्वनाथ सुरेश ने टॉप 3 में जगह बना ली है। सुनते हैं रिपोर्ट।
2: विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा कायम है। जैस्मीन लंबोरिया महिलाओं की 57 किलोग्राम कैटेगरी में शीर्ष मुक्केबाज बन गई हैं। 60 किलोग्राम में एशियाई चैंपियन प्रिया घांघस और 50 किलोग्राम में विश्वनाथ सुरेश टॉप 3 में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम वर्ग में विश्व नंबर 1 के तौर पर अपना दबदबा बनाए रखा है, जबकि प्रीति नंबर 3 पर पहुंच गई हैं। 70 किलोग्राम में अरुंधति चौधरी, 80 किलोग्राम में पूजा रानी और 80 से अधिक किलोग्राम वर्ग में नुपुर विश्व में दूसरे स्थान पर काबिज हैं। 51 किलोग्राम में निखत जरीन और 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहेन ने भी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में अपनी जगह बनाए रखी है। पुरुषों की टीम में भी ऐसी ही निरंतरता है। सचिन और नरेंद्र लगातार अंतर्राष्ट्रीय सफलता के बाद टॉप 5 में शामिल हो गए हैं। 70 किलोग्राम वर्ग में हितेश गुलिया छठे और 65 किलोग्राम वर्ग में अविनाश जम्वाल 8वें स्थान पर हैं। 75 किलोग्राम वर्ग में आकाश और 85 किलोग्राम वर्ग में लोकेश भी टॉप 10 में शामिल हैं। पुरुष वर्ग के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश 11वें और 70 किलोग्राम वर्ग में दीपक 12वें स्थान पर हैं। विश्व रैंकिंग में भारत की ये जबरदस्त बढ़त विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल्स और विश्व चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन के कारण ही संभव हुई है। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
1: बॉक्सिंग रिंग से अब चलते हैं रैकेट गेम की तरफ। इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज का दिन भारत के लिए थोड़ी सफलता और ज्यादा निराशा वाला रहा। एक तरफ जहां पुरुष डबल्स में भारतीय जोड़ी ने परचम लहराया, वहीं पुरुष सिंगल्स, महिला सिंगल्स के साथ साथ मिक्स डबल्स में निराशा हाथ लगी। प्रशांत, बताइए आज भारत के लिए क्या कुछ प्रदर्शन रहा?
3: जकार्ता में रफ्तार और चतुराई के खेल बैडमिंटन में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने अपने लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। इस भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी एरन ताई और कैंग खाईजिंग को 3 गेम तक चले कड़े मुकाबले में 16-21, 21-15 और 21-19 से शिकस्त देकर पहली बार किसी 1000 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का किया। पहले गेम में भारतीय जोड़ी कड़ी टक्कर देने के बावजूद पिछड़ गई। हालांकि दूसरे गेम में एक बार लय हासिल करते ही अर्जुन और अमसा करुणन का सफर जीत पर जाकर ही रुका। तीसरा गेम न सिर्फ मैच के लिहाज से बल्कि मानसिक रूप से भी काफी अहम था। एक समय दोनों जोड़ियां लगभग बराबरी की हालत में थी, लेकिन बेहतर नर्व कंट्रोल के चलते आखिरकार बाजी भारतीय जोड़ी ने अपने नाम कर ली। अब कल अर्जुन और अमसा करुणन मलेशिया के गोह जे फेई और नूर इजुजुद्दीन का सामना करेंगे। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी कड़े संघर्ष के बावजूद पराजित हो गए। उन्होंने हांगकांग के ली चियोगी के खिलाफ पहला गेम आसानी से 21-16 से अपने नाम कर लिया, लेकिन आगे इस लय को बरकरार नहीं रख सके। दूसरे गेम में आयुष को आसानी से 13-21 से शिकस्त मिली। इसके बाद उन्होंने जैसे हथियार डाल दिए, क्योंकि तीसरे गेम में भी वे 14-21 से हार बैठे। महिला सिंगल्स में अनुभवी पीवी सिंधु से बेहद उम्मीदें थीं, लेकिन दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी दक्षिण कोरिया की एन से यंग के खिलाफ एक बार फिर उनकी चुनौती टिक नहीं सकी। सिंधु ने पहले गेम में काफी संघर्ष किया, लेकिन उन्हें तमाम कोशिशों के बाद भी 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। दूसरे गेम में भी लगभग यही स्थिति रही। ये गेम सिंधु 15-21 से हारी और इसके साथ ही वे प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई। एन की सिंधु के खिलाफ ये 10वीं जीत है। सिंधु उनके खिलाफ आज तक कोई भी मैच नहीं जीत सकी हैं। शाम ढलते ढलते मिक्स डबल्स में भी निराशाजनक खबर आई, जब रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की जोड़ी चौथी वरीयता प्राप्त फ्रांस के थॉम मार्क गिक्वेल और डेल्फिन आरो डेलरू की चुनौती को पार नहीं कर सकी। भारतीय जोड़ी को आसानी से 21-12, 21-13 से हार झेलनी पड़ी। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
1: और रैकेट गेम की बात चली है तो टेनिस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट इन

0: चल रहा है और वहां से ताजा खबर यह है कि महिला सिंगल्स में मीरा एंड रीवा फाइनल में पहुंच गई हैं। दूसरा सेमीफाइनल डायना श्नाइडर और माजा चोनेलिस्का के बीच खेला जा रहा है और तो कमाल का प्रदर्शन पुरुष सिंगल्स में देखने को मिला जहां पर उलटफेर हुआ है और 104वीं रैंकिंग वाले अर्नाल्डी ने अंतिम चार में जगह बना लिया। सुनते हैं रिपोर्ट।
1: इटली के मैटेओ अर्नाल्डी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। हिप इंजरी के कारण मैटेओ बेरेटिनी को क्वार्टर फाइनल मुकाबला बीच में ही छोड़ना पड़ा जिसके चलते अर्नाल्डी को विजेता घोषित किया गया। मैच के समय अर्नाल्डी 7-5, 5-2 से आगे चल रहे थे। दूसरे सेट में बेरेटिनी की चोट गंभीर हो गई और उन्हें मुकाबले से हटना पड़ा। मुकाबले की शुरुआत बेरेटिनी ने शानदार अंदाज में की थी। उन्होंने शुरुआती 3 गेम में 2 बार सर्विस ब्रेक करते हुए 3-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। ऐसा लग रहा था कि अनुभवी बेरेटिनी पर पूरी तरह पकड़ बनाए हुए हैं। हालांकि अर्नाल्डी ने धैर्य नहीं खोया और धीरे धीरे मुकाबले में वापसी की। पहले सेट में दोनों खिलाड़ियों के बीच लंबी और कड़ी टक्कर देखने को मिली। 76 मिनट तक चले सेट में कई रोमांचक रैलियां हुई। बेरेटिनी ने एक गेम में 5 ब्रेक पॉइंट बचाए लेकिन सेट के अंतिम गेम में वो अपनी सर्विस नहीं बचा सके और अर्नाल्डी ने 7-5 से सेट अपने नाम कर लिया। दूसरे सेट में 2-1 से पीछे होने पर बेरेटिनी ने मेडिकल टाइम आउट लिया। कोर्ट पर लौटकर उन्होंने आगे खेलने की कोशिश की लेकिन दर्द लगातार बढ़ता गया। आखिरकार उन्होंने मुकाबला छोड़ने का फैसला किया। मैच के बाद बेरेटिनी ने बताया कि उन्हें पहले सेट के दौरान ही हिप में परेशानी महसूस होने लगी थी। उन्होंने दर्द को नजरअंदाज कर खेल जारी रखने की कोशिश की लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा और उन्हें ज्यादा सर्विस तथा फोरहैंड शॉट लगाने पड़े दर्द बढ़ता गया। दूसरी ओर 25 वर्षीय अर्नाल्डी का शानदार सफर टूर्नामेंट में जारी है। विश्व रैंकिंग में 104वें स्थान पर मौजूद अर्नाल्डी इस साल फ्रेंच ओपन के सबसे बड़े सरप्राइज खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरे। वो 1997 के बाद फ्रेंच ओपन में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले सबसे कम रैंक वाले खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा 1990 के बाद अर्नाल्डी सिर्फ तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जो टॉप 100 रैंकिंग से बाहर रहते हुए भी सेमीफाइनल का टिकट कटाने में कामयाब रहे हैं। अब सेमीफाइनल में अर्नाल्डी का सामना अपने ही देश के खिलाड़ी फ्लेवियो कोपोली से होगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: टेनिस के कोर्ट से चलते हैं हॉकी के मैदान की तरफ क्योंकि जापान का काका मिगाहारा कल जूनियर हॉकी में कड़े मुकाबलों का गवाह बनेगा। एशिया अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में एक तरफ भारतीय टीम चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ 2-2 हाथ करेगी तो दूसरी तरफ महिला टीम की टक्कर चीन से होगी। जबरदस्त मुकाबला होगा, कैसे जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
2: टूर्नामेंट में अब तक मिले जुले प्रदर्शन के साथ भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम पूल ए में 3 जीत और 1 हार के साथ दूसरे स्थान पर रही। टूर्नामेंट के अपने अब तक के अभियान में भारत ने 32 गोल किए जबकि उसके खिलाफ सिर्फ 6 गोल हुए। पुरुष टीम ने अपने अभियान का आगाज कजाकिस्तान के खिलाफ 13-0 की शानदार जीत के साथ किया लेकिन अगले ही मैच में उसे मेजबान जापान के हाथों 2-4 की पराजय झेलनी पड़ी। इस हार के बाद टीम ने जैसे हौसलों को फिर से समेटा और मजबूत कोरिया पर 4-1 की जीत के साथ जोरदार वापसी की। टीम का चौथा मैच बिल्कुल ही आसान रहा जिसमें उसने चीनी ताइपे को 13-1 से आसानी से पराजित कर अंतिम चार में अपनी जगह पक्की कर ली। कप्तान केतन कुशवाहा 7 गोल के साथ भारत के लिए सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। आशीष टानी पूर्ति ने 6 गोल किए हैं। गाजी खान और शाहरुख अली के नाम 3-3 गोल हैं। उधर पाकिस्तान ने अपने 3 मैच में 2 जीत और 1 हार के साथ पूल बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। पाकिस्तान के खिलाफ ये मुकाबला न सिर्फ मनोवैज्ञानिक रूप से काफी कठिन होगा बल्कि भारत के जूनियर खिलाड़ियों को पेनाल्टी कॉर्नर अटैक और डिफेंस में अपनी गलतियों को सुधार कर मुकाबले में उतरना होगा। उधर महिला वर्ग में टीम का प्रदर्शन अब तक जबरदस्त रहा। भारतीय टीम ने पूल ए में अपने 3 मैच जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। इस सफर में टीम ने गोलों की झड़ी लगा दी। भारत की जांबाज लड़कियों ने जहां विरोधियों पर 30 गोल किए वहीं अपने खिलाफ सिर्फ 2 गोल करने का मौका दिया। भारत ने अपने पहले मैच में मजबूत मलेशिया को 2-1 से पराजित किया फिर दक्षिण कोरिया पर 3-1 से जीत दर्ज की। इसके बाद उन्होंने अपने अंतिम पूल मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिंगापुर को 25-0 से धूल चटाकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान पक्का किया। टूर्नामेंट में अब तक 10 गोल के साथ नौशीन नाज भारत की सबसे अधिक गोल करने वाली खिलाड़ी रही हैं। चीन 2 जीत और 1 ड्रॉ के साथ पूल बी में दूसरे स्थान पर रहा। जाहिर है भारत के लिए अब तक का सफर काफी शानदार रहा है लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हो रही है जहां जीत का मतलब खिताब के 1 कदम और नजदीक पहुंचना होगा। टीम अगर पहले की तरह अपनी लय बनाने में सफल रहती है तो उसे जीतने से रोकना विरोधी के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो सकता है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। भारत की टीम सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है, जहां उसका मुकाबला शनिवार को बांग्लादेश से होगा। हिसोर में कल फीफा अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच में भारत और मेजबान ताजिकिस्तान की टीम आमने सामने होगी। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में एक दिन के विश्राम के बाद नवे दौर की बाजी आज खेली जाएगी। इस दौर की सबसे खास बात यह है कि पुरुष वर्ग में दो भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद और डी गुकेश एक बार फिर आमने सामने होंगे। चीन के आरुडोस में 9 से 12 जुलाई तक होने वाली पहली एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारत की 54 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर होगी मुलाकात, खेल के मैदान की हर खबर के साथ। लेकिन आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और अपना सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर जरूर भेजिए। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: The discussions also.
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित ना रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: Can enter the Venezuelan market successfully.
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और

0: मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
1: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: क्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 223,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
4: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 831,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
1: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
3: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
8: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है।

0: कॉफी वाइट। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 सशक्तिकरण और प्रगति के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे और अमरीश सक्सेना।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 आदिवासी सशक्तिकरण और समावेश का एक दशक। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अनंत प्रकाश पांडे जी, जो कि संयुक्त सचिव हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार में। पांडे जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: जैसा कि पांडे जी, अभी भारत सरकार की तरफ से जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 मनाया जा रहा है। ये एक महीने तक चलने वाला उत्सव है और जिसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय कर रहा है। ये कार्यक्रम 10 मई से शुरू हुआ और 9 जून तक चलेगा। तो 12 सालों में जनजातीय विकास के क्षेत्र में जितनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां देश ने हासिल की हैं, जो आदिवासी और जनजाति हैं उनको गरिमा प्रदान करने के लिए, उनको सशक्तिकरण करने के लिए और जो भी समाज में उनकी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए इस समारोह के माध्यम से जो भी काम किए गए हैं इसकी जानकारी देने की कृपा करें।
2: जनजातीय गरिमा उत्सव 2026, जैसा कि बताया हमारे वक्ता ने कि 10 मई से 9 जून तक ये लगभग एक महीने का कार्यक्रम रहा है, जिसमें लोगों ने अलग अलग एक एक हर हफ्ते के लिए प्रोग्राम डिजाइन किया था, जो जनजातीय समाज के लिए पिछले 12 वर्षों से सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं। तो उनके समग्र विकास की नई गाथा लिखी है पिछले 12 वर्ष में। उन्हें न केवल रोजगार का अवसर, जो बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे स्वास्थ्य है, एक्सेस एजुकेशन के लिए है और हेल्थ एक्सेस है, इस तरह की तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे वो घर बनाना हो, चाहे पीने के पानी की सुविधा हो, तो तमाम सुविधाओं को सरकार ने अपने पूरे जोर से पिछले 12 सालों में लगे रहे हैं। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि अगर हम लोग केवल बजट का तुलना करें कि बजट पिछले 12 सालों में कितना बढ़ गया है, तो अगर ट्राइबल जनजातीय विकास के लिए अगर ट्राइबल पे बजट जो पहले लगभग 2012-13 में 4000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, आज वो 15000 करोड़ के आसपास हो गया, जो कि लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है, बहुत बड़ी वृद्धि है बजट में। और इसी प्रकार से अगर देखेंगे आपकी, जैसा मैंने बताया कि अलग अलग जो बुनियादी सुविधाएं, जिसमें सबसे बड़ी शिक्षा के ऊपर जो सरकार की पूरी जोर रही है कि ट्राइबल बच्चों को कैसे अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिल पाए, उसके तहत एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल या आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। लगभग 500 स्कूल आज की डेट में नए बने हैं और जिनसे लगभग 1,40,000 स्टूडेंट्स हमारे जो शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। पूरी तरह आवासीय सुविधा है और मुझे बताते हुए बहुत

0: सड़क बिजली पानी इस तरह की जो अलग बुनियादी जो सुविधाएं हैं उसमें भी इस सरकार के तहत पीएम जनमन योजना हो चाहे धरती आबा उत्कर्ष उत्थान योजना है, इस तरह की तमाम जो योजनाएं हैं उनके थ्रू भी बहुत सारे कन्वर्जेंस के थ्रू अलग अलग जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं बुनियादी सुविधाओं पे बहुत जोर दिया गया है। और धरती आबा में आपके 17 मंत्रालय हैं और 25 इंटरवेंशन के तहत अलग अलग इंटरवेंशन किए जा रहे हैं ताकि जनजाति समुदाय का विकास हो सके और उन्हें जो सभी महत्वपूर्ण सुविधाएं मिल सकती हैं वो सुविधाएं मिले। और पूरे 12 साल के जो तमाम समग्र विकास के लिए कार्य किए गए हैं उन सबको सेलिब्रेट करने के लिए और उसको कैसे हम लोग एक उत्सव के रूप में मना सकें कि जो सरकार ने और सरकार के ऐतिहासिक कदमों ने इस पूरे जनजातीय विकास की नई जो गाथा लिखी है उसको कैसे उत्सव को मनाया जा सके, उसके लिए मंत्रालय ने जनजातीय गौरव गरिमा उत्सव 2026 एक मंथ का हम लोग चला रहे हैं जिसमें पहले हफ्ते में हमारे सभी श्रोता जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आज की डेट में तकनीकी जो जितना एडवांसमेंट हो रहा है वो बहुत बड़ा योगदान आजकल कर रहा है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और जो सुविधाएं देना चाहते हैं ट्राइबल जनजातीय भाई बहनों को उसको किस तरह से टेक्नोलॉजी के थ्रू आसानी से पहुंचाया जा सके। और उसके तहत हमारा 10th मई से 17th मई तक ये टेक्नोलॉजी इज एज अ डेवलपमेंट ड्राइवर मतलब विकास में कैसे ड्राइव कर सकता है टेक्नोलॉजी, उस पे एक पूरा वीक हम लोगों ने आयोजन किए तमाम प्रोग्राम।
1: पांडे जी एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, तो जितनी आपने योजनाएं बताई और निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने बनाई है, लेकिन एक मोटे तौर पे हम देखते हैं कि ज्यादातर जो जनजातीय इलाके हैं वहां पर सुविधाओं को पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं उस तरह का ढांचा होता नहीं, तो ऐसे में प्रशासन क्या ऐसे अतिरिक्त कदम उठाता है जो सुविधाएं हैं उनको जनजातीय लोगों तक जहां वो हैं वहीं तक पहुंचाया जा सके।
0: पहला जो हम लोगों ने वीक मनाया वो तो टेक्नोलॉजी कैसे ड्राइव कर रहा है, और टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा इनेबलर होता है अगर आप अपनी बात कहीं गांव तक पहुंचाना चाहते हैं लास्ट माइल तक। आजकल बहुत जगह बहुत ट्राइबल क्षेत्रों में भी इंटरनेट का भी पहुंच हो गई है और इसलिए तमाम ऐप के माध्यम से और इस तरह की जो वेबसाइट और पोर्टल के माध्यम से भी बहुत सारी हम लोग योजनाएं अवेयरनेस के तौर पे पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअल योजना जिसे आपने कहा बहुत सही बात आपने बताई कि ट्राइबल हमारे जो भाई बहन साथी हैं वो बहुत सुदूर और डिफिकल्ट एरियाज में रहते हैं और उन तक पहुंचना एक अपने आप में चुनौती रहती है, और इस चुनौती को ओवरकम करने के लिए सरकार ने आप देखिए तो पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों में लगातार जन भागीदारी अभियान चलाते रहे हैं और इसी तहत एक बहुत बड़ा जन भागीदारी अभियान जो हमारा इस पूरे जनजाति गरिमा उत्सव का जो दूसरा हफ्ता था जिसमें 18 से 25 मई इस दौरान हमने सबसे दूर सबसे पहले नाम की एक पहल शुरू की जिसमें जन भागीदारी के थ्रू जितने सर्विसेज थी वो उनके डोर स्टेप जिनके पास तक कैसे सारी पहुंच सके, इसके लिए लगभग 76,000 जो हमारे गांव थे 600 डिस्ट्रिक्ट में वहां पे 57,000 कैंप्स किए गए और लगभग 90,00,000 ट्राइबल जो हमारे भाई बहन शामिल उसमें हुए। और कुछ आंकड़े आप सभी श्रोताओं के लिए बताना चाहूंगा, उसमें लगभग 13,000 लोगों की जन सुनवाई हुई जिसमें उन्होंने अपनी समस्याएं अपनी मांग ट्राइबल समुदाय के लोगों ने रखी और 19,000 आदि सेवा केंद्र जो कि एक तरह से एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पे हम लोग मंत्रालय उसको प्रस्तुत कर रहा है कि एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था गांव के लेवल पे रहे जहां पे कुछ बिल्डिंग को चिन्हित करके उसे आदि सेवा केंद्र के तौर पे चिन्हित किया गया और वहां पे जो ट्राइबल से रिलेटेड और जो ग्राम विकास से रिलेटेड मंत्रालय हैं अलग अलग सोशल डेवलपमेंट के मंत्रालय हैं उनके डिपार्टमेंट्स के लोग वहां जाएंगे और लोगों के बीच में उनकी समस्याएं सुनेंगे स्पेशली ट्राइबल लोगों की। तो ये आदि सेवा के माध्यम से इसी तरह अगर आप देखोगे इन सारे कैंप्स में बहुत सारे जो स्कीम्स का सैचुरेशन का भी माध्यम किया गया, तो अगर आप आधार कार्ड इनरोलमेंट की बात करेंगे तो लगभग 2.5 लाख लोगों को आधार कार्ड में इनरोल किया गया केवल इस एक हफ्ते के दौरान की मैं प्रगति बता रहा हूँ। आयुष्मान भारत कार्ड लगभग 2.25 लाख लोगों को दिया गया और इसी तरह हेल्थ स्क्रीनिंग जो है टीबी और सिकल सेल के हेल्थ स्क्रीनिंग लगभग 1.35 लाख लोगों की गई। तो इस तरह के अभियान जो आपका प्रश्न था कि डिफिकल्ट एरिया में कैसे मंत्रालय एक्सेस कर पाता है, तो मंत्रालय स्टेट गवर्नमेंट्स के जो राज्य सरकारों के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बीडीओ लेवल पे जो गांव के लेवल के स्तर पे अधिकारी और कर्मचारी हैं उन सबके साथ कंधे से

0: नाम मिला के इस तरह के अभियान लगातार समय समय पे चला के वो हमारे पास ट्राइबल ना आए, ट्राइबल को ज्यादा दूर ना जाना पड़े, सरकार उनके द्वारा एक तरह से जाती है और वहां पे जाके योजनाओं के बारे में बताती है और कुछ योजनाओं को जो लाभ मिल सकता है उसको कैंप के माध्यम से वहां पे लगातार देने का प्रयास।
1: जी, यहाँ पे एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा पांडे जी, सरकार की तरफ से जैसा आपने बताया बहुत प्रयास कर रहे हैं, जागरूकता फैलाना सबसे एक महत्वपूर्ण काम है, इन प्रयासों की सफलता तभी है जब जिसके लिए काम किया जा रहा है उनकी भी भागीदारी हो, जिसको हम सामुदायिक भागीदारी की बात कहें, तो सामुदायिक भागीदारी को और बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से क्या किया गया है?
0: सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट, जैसे हम लोगों ने पहले बताया कि अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष एक बहुत बड़ा अभियान आदि कर्मयोगी अभियान के रूप में उसको चलाया गया था और माननीय प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत का सपना है उस संकल्प के लिए बिना समुदाय के शामिल हुए इस पूरे संकल्प को पूर्ण कर पाना आसान नहीं है। उसी के तहत आदि कर्मयोगी अभियान में हम लोगों ने लगभग 20 लाख ट्राइबल लोगों तक पहुंच बनाई, जिसमें अलग अलग विभाग अपने जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक ट्रेनिंग कम अवेयरनेस और सेंसिटिविटी की गई ताकि मास्टर ट्रेनर्स बने और मास्टर ट्रेनर्स के साथ फिर मिलके ग्राम स्तर पर जो विलेज डेवलपमेंट एक्शन प्लान बनाया गया, विलेज विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया, गांव वालों के साथ बैठ के कि ट्राइबल गांव के लोग हैं उनके साथ मिलके कैसे कोई प्लानिंग की जा सकती है, उनसे चर्चा करके कैसे प्लानिंग की जा सकती है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का, किसी भी समुदाय का भागीदारी सुनिश्चित करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका वो हो सकता है कि उसके डिसीजन मेकिंग में, उसके विकास के जो हमें वो कैसे प्लान हो उसके गांव का विकास, उसमें उसकी भागीदारी सुनिश्चित किया। तो इसके लिए लगभग 56,000 गाँव तक हम लोग पिछले 6 महीने में पहुंचे और उस 56,000 गाँव में गाँव वालों के साथ मिलके जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, कुछ हम लोगों ने आदि सेवा केंद्र भी जो मैंने बताया था जैसे उसमें आइडेंटिफाई हुए थे, आदि सहयोगी और आदि साथी भी चिन्हित किए गए थे, कुछ वॉलंटियर्स और कुछ जो ग्राम स्तर पे राज्य सरकारों के अधीन जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके साथ मिलके और गाँव वालों के साथ मिलके प्लानिंग भी की गई, कुछ बढ़िया डॉक्यूमेंट्स भी बने हैं उस पर भी काम हो रहा है। तो इस तरह से लगातार प्रयास ये रहता है कि जब तक गाँव के जो असली जो वहां रहते हैं जब तक उनकी बात सुन के समुदाय क्या चाहता है वो चीज बिना जाने अगर हम प्लानिंग करते रहे यहाँ दिल्ली से या किसी स्टेट हेडक्वार्टर से तो वो कामयाब नहीं होता। लेकिन मंत्रालय ने पूरा इस बार सीरियसली इस मामले में प्रयास किया है कि हम ग्राम स्तर पे कैसे लोगों को जोड़।
1: जी, यहाँ पर मैं और एक बात आपसे पूछना चाहूंगा पांडे जी कि जब हम उद्यमशीलता की बात करते हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक उद्यमशीलता को विकसित करना भी जरूरी है, तो इस क्षेत्र में खासतौर पे क्या विशेष प्रयास किए गए हैं?
0: जनजाति की अवस्था अगर देखी जाए तो सरकार का जो पहला फोकस रहा वो ये रहा कि कैसे इनको बेसिक सुविधाओं से अच्छी तरह से लैस किया जाए। अच्छी तरह से लैस करने का मतलब कि बेसिक सुविधाएं कैसे पहुंचाई जा सके, जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। तो मैंने जैसे पहले बताया कि इन सारे क्षेत्रों में धरती आबा अभियान हो, चाहे पीएम जनमन हो, चाहे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, स्कॉलरशिप है जो लगभग हम लोग 20 लाख पोस्ट मैट्रिक और 10 लाख प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देते हैं शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट को ताकि वो स्कूल ड्रॉप आउट ना हो सके उनको पूरी तरह से। तो इस तरह की जो बेसिक सुविधाएं हमने मतलब सरकार ने अपनी तमाम योजनाओं तक पहुंचाई है, पहुंचा रही है। अब जो बहुत महत्वपूर्ण चरण है वो ये है कि अब इनको कैसे ग्रेजुएट, मतलब इनको कैसे दूसरे लेवल इनकम कैसे जनरेट की जा सके ताकि अपने पैरों पे खड़े हो सके और अब पूरे देश के जो विकसित भारत 2047 में अपना योगदान दे सके। तो उसके लिए जो दो बहुत महत्वपूर्ण मतलब एजेंडा है सरकार के उस पे, एक तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कैसे डेवलप की जाए, तो उसके लिए हम लोग इंस्टीट्यूट स्किल के साथ जॉइंटली अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की ट्रेनिंग कई जगह जितने हमारे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल वहां पे कर रहे हैं। कुछ हम लोगों ने CSR के माध्यम से, क्योंकि सरकार की भी ये सोच रहती है कि प्राइवेट पार्टनरशिप भी की जाए, पब्लिक सेक्टर को भी लाया जाए ताकि समाज के हर वर्ग को जोड़ा जा सके, तो CSR के माध्यम से भी हम लोग बूट कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की ट्रेनिंग दी जा सके।
1: जी पांडे जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जनजातीय गरिमा उत्सव के बारे में और आदिवासियों के सशक्तिकरण और समावेशन के लिए सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है और एक पूरे महीने तक जिस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप

रहे थे जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 सशक्तिकरण और प्रगति के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे और अमरीश सक्सेना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय के पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: The discussions also
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: Can enter the Venezuelan market successfully?
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
3: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60

0: adoption. Mr. Puri said that the larger scale adoption of flex fuel technology can significantly multiply the impact of ethanol-based mobility. The southwest monsoon has arrived in Keralam today, and the India's Meteorological Department has forecast heavy to heavy rainfall over Keralam and Karnataka and heavy rainfall over Tamil Nadu during the next 7 days. Heavy to heavy rainfall is also likely over Mahi, Puducherry and Karaikal tomorrow. Meanwhile, the National Delhi Capital Region also witnessed heavy rainfall, bringing relief from warm. And that's the end of the news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रत्ना पांडे। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और ब्रिटेन भविष्योन्मुखी और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी बनाने में सक्षम हैं। अमरीका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसदों ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को समाप्त करने की मांग की। अमरीकी प्रतिनिधि सभा में सैन्य कार्रवाई के खिलाफ प्रस्ताव पारित। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे योगासन को वैश्विक खेल की पहचान मिलेगी। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घांगस और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष तीन में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति के साथ उनकी व्यापक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुदेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: The discussions also.
3: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
2: Can enter the Venezuelan market successfully.
1: श्री टंडन ने कहा कि भारत को ऊर्जा क्षेत्र में वेनेजुएला के साथ मजबूत प्राकृतिक तालमेल दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि इस महीने वेनेजुएला कच्चे तेल के मामले में भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस के साथ मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि भारत की वेनेजुएला के साथ 2008 से एक दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के विदेश सचिव यवेट कूपर से आज नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने हाल के समय में भारत ब्रिटेन साझेदारी के मजबूत होने की सराहना की है, जिससे दोनों देशों के लिए विकास के अभूतपूर्व अवसर खुले हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन भविष्योन्मुखी और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी बनाने में सक्षम हैं। आज नई दिल्ली में ब्रिटेन के विदेश सचिव यवेट कूपर के साथ हुई बैठक में अपने संबोधन में विदेश मंत्री ने कहा कि ये बैठक विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के क्षेत्रों में भारत ब्रिटेन विजन 2035 पर

0: चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि ये भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करने का भी अवसर है। बाद में विदेश मंत्री और ब्रिटेन के विदेश सचिव की उपस्थिति में लिवरपूल विश्वविद्यालय को बेंगलुरु में अपना परिसर स्थापित करने के लिए स्वीकृति पत्र सौंपा गया। अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसदों ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को समाप्त करने की मांग की। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकना है। ये प्रस्ताव 215 के मुकाबले 208 मतों से पारित हुआ। 4 रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट सांसदों का साथ दिया। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। हालांकि प्रस्ताव को अभी रिपब्लिकन बहुमत वाली सीनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। यदि सीनेट इसे मंजूरी भी दे देती है तब भी राष्ट्रपति ट्रंप इसे वीटो कर सकते हैं। इसराइल और लेबनान के बीच संघर्ष को रोकने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में हुए युद्ध विराम समझौते को बड़ा झटका लगा है। हिजबुल्ला ने समझौते की प्रमुख शर्तों को अस्वीकार कर दिया है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने इस प्रस्ताव को स्थायी युद्ध विराम का अंतिम अवसर बताया। संयुक्त राष्ट्र के एक शांति सैनिक की आज लेबनान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र मारजायोन के पास मोर्टार गोलीबारी में मृत्यु हो गई। लेबनान के संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के अनुसार गोलीबारी में शांति सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया था। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को आज वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मन शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
1: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये विस्तार आने वाले दिनों में प्रशिक्षकों, खेल वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और इवेंट प्रबंधकों के लिए विविध अवसर पैदा करेगा।
1: हर बड़ा स्पोर्ट अपने साथ एक पूरा इकोसिस्टम लेकर आता है। ये रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। इसलिए जैसे जैसे योगासना स्पोर्ट्स का विस्तार होगा, वैसे वैसे इससे जुड़ी नई संभावनाएं भी बढ़ेगी। ये खिलाड़ियों के लिए नई कैरियर अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। यह ट्रेनर्स, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इवेंट मैनेजर्स के लिए भी नए अवसर बनाएगा।
0: वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का ऐतिहासिक पहला संस्करण आज अहमदाबाद के एका एरिना में आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। एक रिपोर्ट।
2: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: श्रीलंका की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और 2 पूर्व सैन्य खुफिया अधिकारियों की विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आदेश कल कोलंबो फोर्ट मजिस्ट्रेट ने 2019 के ईस्टर संडे हमलों से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान जारी किया। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांगस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष 3 में जगह बनाने में सफल हुए हैं। अंत में मुख्य

0: आकाशवाणी है। भारत में व्यवस्थित रेडियो प्रसारण 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो के नाम से शुरू हुआ था। इस प्रसारण को शुरू हुए 90 वर्ष हो गए हैं। इस उपलक्ष में प्रस्तुत है वृत्त रूपक प्रसारण की प्रतिध्वनियां। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। लेखक और प्रस्तुतकर्ता पार्थ सारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही। संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। परिकल्पना एवं निर्देशन मनीषा जैन और प्रमोद कुमार।
1: हो स्वतंत्र भारत उपवन में लोकतंत्र बासंती आया, बनने लगी नीति शासन की, जन जन में उल्लास समाया।
2: जन जन के भावों में उपजी आशाओं की अमर कहानी, ऑल इंडिया रेडियो को फिर नाम दिया आकाशवाणी।

0: 1947 में देश के विभाजन से पूर्व भारत में रेडियो स्टेशनों की कुल संख्या 9 थी। विभाजन के समय ढाका, लाहौर और पेशावर स्टेशन पाकिस्तान में चले गए। जो 6 रेडियो स्टेशन भारत में रह गए उनके नाम थे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, लखनऊ और तिरुचिरापल्ली।
1: स्वाधीनता प्राप्ति के बाद देश नव निर्माण और भविष्य की योजनाओं को बनाने में लग गया। भारत की स्वाधीनता प्राप्ति से पहले 1946 में एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी। उसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 4 नवंबर 1948 को नागपुर में रेडियो स्टेशन का शुभारंभ करते समय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था,
2: ब्रॉडकास्टिंग का हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा भारी है और उसके लिए जो योजना हमने बनाई है वो कुछ समय लेगी। उसके लिए इंतजाम करने में हमें बाहर मुल्क से जो सामान सरंजाम मंगवाना है उसमें वक्त लगेगा, लेकिन सब प्रांतों की ख्वाहिश ये थी कि ये काम जल्दी किया जाए तो उनको बहुत सुविधा होगी। इसलिए एक हमने काम चलाऊ योजना बनाई है और ये योजना के अंदर हमने जो प्रोग्राम रखा था उसमें नागपुर में स्टेशन खोलने का इंतजाम किया।
1: सरदार पटेल ने कहा था कि आज रेडियो लोगों की जीवन की आवश्यकता हो गया है, इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए।
2: रेडियो आजकल की जिंदगी में कोई के लिए एक आवश्यक वस्तु हो गई है। उससे

0: में अहम भूमिका निभा रहा है, लेकिन आरंभिक दिनों में इसका उद्देश्य देशवासियों खासकर युवाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था।
1: 10 जनवरी 1959 को लखनऊ के रंग भवन में आयोजित समाज शिक्षा समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इसे शिक्षा के प्रसार का सशक्त माध्यम बताया था।
2: साक्षरता का बड़ा महत्व है और उसे बढ़ाना चाहिए, मगर मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि साक्षरता के अलावे बिना निरक्षर लोगों को भी हमें आज शिक्षित करना। शिक्षित शब्द एक तरह से संकुचित भाव में आज इस्तेमाल होता है और उसका अर्थ हम ये मान लेते हैं कि जो आदमी लिख लेता है, पुस्तकों को पढ़ लेता है, वही शिक्षित है। मेरा ख्याल ये है कि बिना लिखे हुए, बिना लिखना जानते हुए और बिना पढ़ना जानते हुए भी मनुष्य को बहुत प्रकार की शिक्षा मिल सकती है, जो उसके जीवन के लिए, जो समाज के लिए, जो संसार के लिए लाभकारी होगी। आज तो ये शिक्षण का काम बहुत प्रकार से कुछ आसान भी हो गया। हम जानते हैं कि हमारे देश में प्राचीन काल से गांव-गांव में सब लोग बैठ करके शास्त्रों की कथा, ग्रंथों का पाठ दूसरों से सुना करते थे और केवल कान के द्वारा बिना अक्षर पढ़े हुए, बिना पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त किए हुए वो बहुत सी बातें जान लेते थे और सीख लेते थे। और इतना ही नहीं, दर्शन के गूढ़ से गूढ़ तत्व भी ऐसी भाषा में लोगों को बताए जा सकते थे कि जो बड़ी बड़ी फिलॉसफी की पुस्तकों में जल्दी नहीं मिलती और आसानी से समझाई नहीं जा सकती। तो मैं चाहूँगा कि कोई भी जो जन साधारण में शिक्षण का काम प्रचारित करना चाहे, उसको इस साधन को छोड़ना नहीं चाहिए और उससे अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए।
1: राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की इच्छा थी कि रेडियो के माध्यम से लोगों तक केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि ज्ञान विज्ञान भी पहुंचे और वो भी सहज और सरल ढंग से।
2: आपने रेडियो का जिक्र किया, रेडियो तो घर घर में पहुंच सकता है। मैं चाहूँगा कि इन साधनों को अधिक से अधिक उपयोगी बनाकर शिक्षा देने के ख्याल से कार्यक्रम इनका बनाया जाए और इनके द्वारा शिक्षा का प्रसार किया जाए कि जिसमें वो लोग भी जो साक्षर नहीं हैं, जो पुस्तकें नहीं पढ़ सकते, जो समाचार पत्र भी नहीं पढ़ सकते, उनको भी सब प्रकार के ज्ञान प्राप्त हो सकें और हर तरह की बातें वो जान सकें। मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है और शायद जितना समय साक्षरता प्रचार के बाद ज्ञान पहुँचाने में लगेगा, उससे बहुत कम समय में इस प्रकार से हम साधारण लोगों के पास दूर से दूर के गांवों में, पहाड़ों में और जंगलों में बसने वाले लोगों तक हम ज्ञान पहुंचा सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं है कि उनके पास हम कथा कहानी पहुंचाया करें, उनके पास जैसे बच्चों को कहानियां कह करके बुलाते हैं, उस तरह से कहानियां कह करके उनको हम खुश रखने का प्रयत्न करें। उनको कठिन से कठिन विषय में अगर हम ठीक तरह से समझाएंगे तो उनको हम समझा सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि आज के आधुनिक विज्ञान के युग में विज्ञान की बातें भी आसानी के साथ

0: रोगों को मामूली तौर से बताई जा सकती हैं, जिनसे उनको साधारण ज्ञान प्राप्त हो जाए और वो विज्ञान के तत्वों को समझ सके।
1: स्वाधीन भारत में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का महत्वपूर्ण माध्यम बना रेडियो। प्रसारण की महत्ता समझने वाले आकाशवाणी में वरिष्ठ अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके धीरंजन मालवे मानते हैं कि आकाशवाणी केवल सूचना और मनोरंजन का साधन ही नहीं बल्कि लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ भी है। वे इसे जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद का एक सशक्त माध्यम मानते हैं।
2: लोकतंत्र यानी ऐसा शासन जो जनता का हो, जनता के लिए हो और जनता के द्वारा हो। ऐसी व्यवस्था की सफलता के लिए जनता में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता अत्यंत आवश्यक हो जाती है। ऐसे में आज़ादी के बाद देश के समक्ष यह एक बड़ी चुनौती उभर कर आई कि जो जनता सदियों से गुलामी की बेड़ियों से जकड़ी रहती आई है, उसे लोकतंत्र के मूल्यों, भावनाओं और प्रक्रिया में कैसे प्रशिक्षित किया जाए। स्वतंत्र भारत में रेडियो ने इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब देश में केवल 12% लोग साक्षर थे। साथ ही भारत की लगभग 80% आबादी गांव में रहती थी। फलतः प्रिंट मीडिया की पहुंच अत्यंत सीमित थी और रेडियो से अधिक कारगर कुछ नहीं हो सकता था।
3: 1950 में भारत ने स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाया, संवैधानिक व्यवस्थाएं स्थापित होने लगीं और ऑल इंडिया रेडियो साक्षी बना समृद्ध होते लोकतंत्र का, साक्षी बना गणतंत्र की स्थापना का।

0: 1950 में पहले गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन इरविन स्टेडियम में किया गया, जिसे अब मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। इतिहास की इस अविस्मरणीय घटना को जन जन तक पहुंचाया आकाशवाणी ने।
1: 1955 से गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन राजपथ पर किया जाता रहा है, जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है।

और तालियों की गड़गड़ाहट मिल रही है इस टैंक को और यूनिट को। थल सेना अध्यक्ष के 3 प्रशंसा पत्र, जीओसीएनसी के 2 प्रशंसा पत्र प्राप्त करने का गौरव हासिल है। पीले रंग का ये टैंक देखने में बहुत ही सजीला लेकिन मारक क्षमता में बहुत ही घातक, और ये सलामी दी नाल झुका करके सलूट करते हुए उस पर जो एक सैनिक है, और ये टैंक दस्ता बढ़ता हुआ धीरे धीरे इंडिया गेट की तरफ सलामी मंच के ठीक सामने, और पहले एक टैंक उसके पीछे 2 टैंक।

0: दिल्ली लोकसभा के चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच कराए गए। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ। नवगठित सरकार में डॉ. बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाए गए। वे 10 वर्षों तक इस पद पर रहे।
1: भारतीय संस्कृति के पक्षधर डॉ. बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर को शास्त्रीय संगीत, गीत भजन और लोकगीत बहुत प्रिय थे। उनका मानना था कि फिल्म संगीत समाज को संस्कारित नहीं करता। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिल्म संगीत का रेडियो से प्रसारण कम करा दिया और शास्त्रीय संगीत को प्रोत्साहित किया।

0: रेडियो से फिल्मी गीतों के प्रसारण बंद होने के फैसले का व्यवसायिक लाभ लेते हुए रेडियो सिलोन ने हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय गानों पर आधारित कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू कर दिया। भारत के रेडियो श्रोताओं पर इसका असर ये हुआ कि वे समाचारों के लिए बीबीसी और मनोरंजन के लिए रेडियो सिलोन सुनने लगे।
1: उन दिनों ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक थे जगदीश चंद्र माथुर। उन्होंने श्रोताओं की नब्ज को समझा और आकाशवाणी के कई कार्यक्रमों का स्वरूप बदल डाला। उनके समय में आकाशवाणी से अखिल भारतीय स्तर के कई नए कार्यक्रम आरंभ किए गए।
0: 1950 में आकाशवाणी में वाद्य वृंद स्थापित किया गया।
1: आइए सुनते हैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी को।
2: वाद्य वृंद आकाशवाणी का राष्ट्रीय वाद्य वृंद वो इतनी बड़ा एक वो प्रतिष्ठित एक हमारा एक वो आयोजन वो था कि जब भी कहीं देश में किसी बाहरी देश का राष्ट्राध्यक्ष आते थे, चाहे कनेडी जी आए हो चाहे क्रुश्चेव आए हो, तो आकाशवाणी का वाद्य वृंद जाता था वहां पर राष्ट्रपति भवन जहां भी है, तो वहां पर वो अपनी प्रस्तुतियां करने के लिए। और जब भी कोई राष्ट्रीय किसी तरह का राष्ट्रीय आयोजन हो तो हमारा वाद्य वृंद वहां जाता था। जब मैं था तो ये प्रयास हमने किया कि जो भी कलाकार थे उनको लिया और बाहर से कलाकार लिए और वाद्य वृंद को पुनर्जीवित हुआ। बल्कि एक बार तो वहां जाके एक राष्ट्रीय आयोजन में भी बजाया हमारे वाद्य वृंद में जाकर के, फिर जाकर जो हमारा ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई थी कृषि मंत्रालय की तरफ से, तो वहां प्रस्तुति दी, हैबिटेट सेंटर में दो बार प्रस्तुति दी, पूरा सभागार जिस तरह भरा हुआ था और 45 लोग जो है करीब करीब 50 लोग साथ लेके तरह तरह के बैठे हैं, वो दृश्य अपने आप में बड़ा अनुपम होता है। जब वो भारत को तरह तरह की उसमें नए नए वो प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें एक भारत वाली प्रस्तुति थी कि कैसे वाद्य वृंद के माध्यम से कश्मीर से लेके फिर पंजाब से लेके चलते चलते और पूरे कन्याकुमारी दक्षिण भारत तक जाना और संगीत के माध्यम से पूरी यात्रा, या फिल्म संगीत क्योंकि 100 साल हुए थे सिनेमा के, तो उस पर एक विशेष जो प्रस्तुति थी लोग दीवाने हो जाते थे, इतनी शानदार वो प्रस्तुति होती थी। और देहरादून में वैली ऑफ वर्ड्स इंटरनेशनल फेस्टिवल में हमारा वाद्य वृंद गया, तो बहुत जगह पर प्रस्तुतियां दी और बहुत सारी प्रशंसा लूट करके वो लोग लाए। उनका समर्पण और उनका उनकी प्रस्तुतियां उसके लिए जो है वो एक बहुत बड़ी एक काम, मतलब आकाशवाणी दिल्ली की एक बहुत बड़ा योगदान इस तरह का था कि उस वाद्य वृंद को एक रिवाइव करना। और यही वो कार्यक्रम था एक बार जब इस वाद्य वृंद की प्रस्तुति में, शायद ऐसा इतिहास में बहुत कम हुआ होगा, जब भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित नेहरू दोनों ने वहां पर उस कार्यक्रम में मौजूद थे सिर्फ आकाशवाणी के वाद्य वृंद को सुनने के लिए। और वो आप सोचिए कि फिल्म संगीत के जो पुरोधा अनिल विश्वास, वो अपना सिनेमा का वो सारा ग्लैमर छोड़ करके और इस राष्ट्रीय उसमें शामिल हुए। इसमें पंडित रविशंकर भी जुड़े थे, इसमें देश के बड़े मूर्धन्य जो है वो संगीत के कलाकार, उन्होंने मतलब कंपोजर के नाते या प्रस्तुति में किसी दूसरे रूप में वो शामिल रहे।

0: जुलाई 1952 में संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जुलाई 1953 में नेशनल प्रोग्राम ऑफ टॉक्स, अक्टूबर 1954 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन और अगस्त 1955 में सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान माला शुरू की गई।
1: गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी को सर्वभाषा कवि सम्मेलन का प्रसारण शुरू किया गया। साथ ही 15 अगस्त 1956 से नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम, 16 अगस्त 1956 से रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम और 1961 से संसद समीक्षा की शुरुआत की गई। हिंदी वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम की शुरुआत भी उन्हीं दिनों में की गई थी।
0: कार्यक्रमों में इन बदलावों का असर ये हुआ कि देश के करोड़ों श्रोता आकाशवाणी के दीवाने हो गए। केवल श्रोता ही नहीं बल्कि देश के कई विद्वानों, साहित्यकारों, चिंतकों और विचारकों पर भी इन कार्यक्रमों का असर हुआ और वे भी आकाशवाणी से जुड़ने लगे।

0: सुमित्रा नंदन पंत, रविंद्रनाथ टैगोर, उपेंद्रनाथ अश्क, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, गोपाल दास, डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र, अली सरदार जाफरी, आद्य रंगाचार्य शास्त्री, सादत हसन मंटो, इला चंद्र जोशी, दुष्यंत कुमार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, खुशवंत सिंह, प्रभाकर माचवे जैसे कवियों, शायरों, गीतकारों, नाट्यकर्मियों ने आकाशवाणी के माध्यम से अपने प्रशंसकों के दिलों में स्थान बनाया।
1: भारतीय श्रोताओं की रेडियो सिलोन के फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रमों में रुचि को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी अपना स्वयं का एक मनोरंजन चैनल शुरू करने का फैसला किया।
0: इसकी परिकल्पना की पंडित नरेंद्र शर्मा ने। परिणाम ये हुआ कि रेडियो के श्रोताओं ने 3 अक्टूबर 1957 को एक ऐसा अनाउंसमेंट सुना जिसको सुनकर सभी के दिल झूम उठे। वो घोषणा थी,
1: ये विविध भारती है, आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम। पंचरंगी यानी पांच रंगों वाले कार्यक्रम। विविध भारती के पांच रंग थे, गीत, संगीत, नाटक, समाचार और साहित्य। विविध भारती के पंचरंगी कार्यक्रम शुरू हुए तो फिर वे छा गए श्रोताओं के दिलों पर। इनमें से कुछ कार्यक्रमों की संगीतमय पहचान आज भी श्रोताओं के दिलों में ताजा है।
2: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।

0: गीत सरिता
1: तीन अक्टूबर 1957 को विविध भारती के प्रसारण का शुभारंभ पंडित नरेंद्र शर्मा के लिखे और सुप्रसिद्ध संगीतकार अनिल बिस्वास के संगीतबद्ध किए इस गीत से हुआ।

0: ऊंच नीच, जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषाई संस्कृति का भेद किए बिना सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रसारण होता रहा। यही कारण है कि आज देश के हर वर्ग का श्रोता आकाशवाणी को अपना मानता है और इससे जुड़ना चाहता है।
1: आकाशवाणी के विकास और विस्तार की कुछ और रोचक कहानियों और जानकारियों को लेकर हम अगली कड़ी में फिर उपस्थित होंगे। अब अनुमति दीजिए।

अभी आप सुन रहे थे प्रसारण की प्रतिध्वनियां, इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। वाचन स्वर थे निशा भारद्वाज और देवेंद्र त्रिपाठी के। लेखक और प्रस्तुतकर्ता पार्थसारथी थपलियाल और अशोक अग्रोही। संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। परिकल्पना एवं निर्देशन मनीषा जैन और प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ. अलका गुर्जर और डॉ. सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चंफाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर 1 स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

0: toi.
1: This is Akashvani, the news read by Kiran Jha. Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudhrendra Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries, as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. Union Home Minister Amit Shah today said that Narendra Modi government ended the era of violence in the Northeast and transformed the region from the hotspot of disputes to that of opportunities. After attending the 73rd plenary session of the Northeastern Council, NEC, Mr. Shah, in a social media post, said, "Today NEC is serving as an institution for strategic planning for the development of region while fulfilling people's aspirations and promoting culture." In the NEC meeting, the Home Minister instructed CMs to shift the focus from law and order to shielding the rights of citizens, as insurgency is no longer an issue. He also directed states to build AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. Mr. Shah said that he also instructed to market Northeast potential in agarwood, foreign trade and health tourism. Prime Minister Narendra Modi today said yoga is India's timeless gift to humanity. Virtually joining the inaugural edition of the World Yogasan Sports Championship being held at the EK Arena in Ahmedabad, the Prime Minister said yoga unites mind, body and spirit and inspires a healthier and more harmonious world. He expressed confidence that the maiden World Yoga Championship will give Yogasan a global sports identity and open up a wide range of opportunities for the youth. Mr. Modi highlighted that every major sport brings among and along its own comprehensive ecosystem. He stated that Yogasan sports expand globally, it will create significant new possibilities and career paths for athletes. The Ministry of Women and Child Development has invited women students, scholars, social activists and teachers for its internship program during August-September term. The program is open to women students, scholars, social activists and teachers who are enrolled in or associated with any university, academic or non-academic institution. The Ministry of Women and Child Development informed that women candidates in the age group of 21 to 40 years from non-tier 1 cities and rural areas of India are eligible to apply. It added that applicants are to be submitted online through the internship program portal wcd.intern.nic.in. The Bharatiya Janata Party announced that the party Manipur President Adhikari Mayum Sharda Devi will be party candidate for the upcoming Rajya Sabha election of Manipur. The party announced today that the party's prominent woman leader of Manipur will contest the lone Rajya Sabha seat of Manipur, which voting will be held on 18th June. It may be mentioned that the term of the current Rajya Sabha MP of Manipur, Leshimba Sanaja Uba, who represents the Bharatiya Janata Party, ends on 21st of June. India has retained its strong presence in the latest world boxing rankings. Jasmine Lamboria climbed to world number one in the women's 57 kg category, while Asian Championships Priya Gangas in 60 kg and Vishwanath Suresh in 50 kg. And that's the end of the news.
0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants are Dr. V.K. Paul, former member, Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, President, AIIMS Bilaspur. Moderator is Priyanka Arora.
3: स्वास्थ्य नागरिक किसी भी सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत ने पिछले 12 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन की एक नई गाथा लिखी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, गरीबों के लिए उपचार की बेहतर व्यवस्था, आधुनिक अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों का विकास तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता दायरा, इन सभी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा और नई गति दी है। यही परिवर्तन आज करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति विषय पर आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद
3: जी। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं, सबसे पहले डॉक्टर पॉल आपसे जानना चाहती हूँ कि पिछले 12 वर्ष में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आए सबसे बड़े संरचनात्मक बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं?
4: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विजनरी लीडरशिप में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनप्रेसिडेंटेड जो कभी नहीं हुए वो रिफॉर्म्स हुए और वो बदलाव आया है। इसके बहुत सारी डायमेंशंस हैं, लेकिन मैं सर्वोपरि अगर उन डायमेंशंस को देखूं तो जो एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ी है
3: जी,
4: और जो हेल्थ केयर की वजह से जो बोझ पड़ता खास नागरिक पे, खासकर जो गरीब परिवार है, इन दोनों में सुधार लाने के लिए, एक्सेस को बढ़ाने के लिए और जो आर्थिक बोझ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पड़ता था उनमें जो कमी आई है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। इसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की नज़र से भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और जब स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं तो व्यक्ति की और सिटीजन जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ये जब हुआ है वो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसी के साथ साथ उसी बजट स्पीच में 2018 के बजट के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब उनको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं
3: जी,
4: जो हमारी प्राइमरी केयर की व्यवस्था बनी और जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जो एक मैकेनिज्म बना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, मैं समझता हूं कि इन दोनों को जोड़ के देखूं तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जो सुधार और जो जन जन तक इसका फायदा हुआ है उसको मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ।
3: जी हाँ, यह भूतपूर्व पहल रही है और आज भी विश्व में सबसे बड़ी योजना के रूप में मानी जाती है। डॉक्टर अरोड़ा, अगर आपसे जानना चाहें तो जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछले 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं?
5: जैसे कि प्रोफेसर पॉल ने कहा कि एक आम व्यक्ति के जेब से आज से 12 वर्ष पहले अगर वो 100 रुपए डॉक्टर की इलाज पे या अपनी किसी बीमारी के इलाज पे खर्च करता था तो उस समय 60 रुपए उसकी जेब से जाते थे, आज ये घट करके 35-40 रुपए के बीच में आ गया है। ये एक आमूल परिवर्तन है। और दूसरी चीज जो डॉक्टर पॉल कह रहे थे, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनको इस स्ट्रैटेजिक तरीके से रणनीतिक तौर पर इनको बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं होती। यानी कि 2 किलोमीटर का जो दायरा है, रेडियस है, उस बीच में एक आयुष्मान मंदिर है
3: जी।
5: तो जिसको हम एक्सेस है या स्वास्थ्य सेवाओं की प्रति जो उसकी प्राप्ति के लिए उसकी जो सुविधा है वो उसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन किया गया है। दूसरा एक चीज और है, मेड इन इंडिया या भारत में निर्मित

0: एक पूरा का पूरा अभियान चला है, उसके अंतर्गत कई चीजें हुई हैं। और मैं यहाँ पर टीकाकरण क्षेत्र का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि अब इस देश में 100% जो टीके हैं वो भारतीय दिए जाते हैं। कोविड
1: जी
0: के दौरान जो 228 करोड़ टीके दिए गए वो पूरे के पूरे भारत में निर्मित थे, और उसकी वजह से जो देश में बचाव हुआ उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। एक और चीज करी गई है, और जो मेड इन इंडिया की तरफ बहुत बड़ा कदम रहा है, कि अनुसंधान में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे कि हमारी इलाज करने की तरीके, इलाज करने के लिए दवाइयां, इलाज करने के लिए वैक्सीन, और किसी भी बीमारी के लिए अब भारत में सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें आशातीत वृद्धि हुई है। आज से 12 साल पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब किसी भी इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, और हम जब आयुष्मान भारत की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जाती है, तो एक किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुई है डॉक्टर पॉल?
2: हमारे देश में सुविधाओं की कमी रही कई सालों तक, उसके साथ साथ में सिटीजन को अपने आप को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए जो खर्चा होता था उसका समाधान का तरीका निकाला गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 60 करोड़ हमारे जो नागरिक हैं, 60 करोड़
1: जी,
2: उनको 5 लाख का कवरेज हर साल, उनके परिवार के अंदर 5 लाख का कवरेज जो है वो सेकेंडरी टर्शरी केयर के लिए दाखिला जब होता है अस्पताल में तो वो सरकार कवर करती है
1: जी।
2: और इसके साथ साथ बहुत सारे राज्यों ने और भी अपने अपने नागरिकों को एक्स्ट्रा भी जोड़ लिया है। अब ये जो सेवाएं दी जा रही हैं ये लगभग 1900 से ज्यादा पैकेजेस की तरह से है कि आपको डेंगू का बीमारी हुई तो एक पैकेज डेंगू का है, आपको घुटने के रिप्लेसमेंट की जरूरत है एक पैकेज है। आप सोच सकते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा जो मार्जिनलाइज्ड हमारे नागरिक भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनको टर्शरी केयर में हार्ट की सर्जरी, आप नी रिप्लेसमेंट और इवन किडनी ट्रांसप्लांट और बुखार की बीमारी, एनकेफेलाइटिस, स्ट्रोक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्लड की बीमारियां, कैंसर, इन सब बीमारियों को उनको कैशलेस, उनको सामने पैसा नहीं देना है, और उनको सेवाएं मिल रही हैं 30,000 से ज्यादा अस्पतालों में, जिनमें कि कम से कम 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े हुए हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दिया गया एक आम नागरिक के लिए, ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। आयुष्मान भारत PMJ के अंतर्गत हर रोज 85 से 90 हजार व्यक्ति अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, रोज 80 से 90 हजार। अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे दाखिले हो गए हैं, 10 करोड़ से ज्यादा। देखिए कितने लोगों को ये फायदा कैशलेस कवरेज का जो हुआ है, अगर हम देखें कि इससे कितनी बचत हुई है समाज को, देश के नागरिकों को, तो ये आंकड़ा आता है 1,52,000 करोड़ का फायदा जो है वो यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें कि इससे मेरे को रीच कैसे बढ़ी, तो जब शुरू हुआ था तो जो बेनिफिशरीज है, लाभार्थी हैं, उनमें लगभग एक 0.7%, less than 1% ही बेनिफिशरीज का फायदा ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम मैच्योर हुआ, आपको जान के खुशी होगी कि आप 2 से 2.5% लोग, मतलब कि 2.5 से 3 गुना बेनिफिशरीज को एक्सेस अब मिल रहे हैं। तो लोग बैठे रहते थे, अब इसको अपनी सेवाओं का को लेके जाते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो है, एक स्टडी हमें दिखाती है कि जिनको PMJ का कवरेज नहीं है वो टाइम पे पहुंचते हैं 30% लोग सिर्फ, और आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वो 90% लोग टाइम पे पहुंच पा रहे हैं सेवा, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास ताकत है इलाज लेने के लिए। बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि 2024 से इस कार्यक्रम के साथ में 70 और 70 से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को जोड़ दिया गया है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, अमीर गरीब सबके लिए। तो ये 6 करोड़ नागरिक हैं जिनको की एक्स्ट्रा एक आयुष्मान भारत में जगह मिली है। ये लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज परिवारों को बिलोंग करते हैं, और मुझे खुशी है बताते हुए कि 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के अंतर्गत बायो योजना जो है पीएमजे की, उसके साथ जोड़ के

0: गठबंधन योजना में ये समावेश हुआ है। तो जो सबसे नीडी लोग हैं उनको, क्योंकि उस उम्र पे ज्यादा बीमारियां होती हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तो उस समाज को प्रोटेक्ट करना और इस स्कीम के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है और उपलब्धि है। ये इतने बड़े स्केल के ऊपर रोज दाखिले हो रहे हैं और उन सबका इलाज हो रहा है और इससे गरीब की जेब पे बोझ कम हुआ है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि उनको एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर मिलना शुरू हो गया।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर अरोड़ा, अगर मैं आपसे बात करूं, आप लंबे समय से टीकाकरण कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं। मिशन इंद्रधनुष और कोविड टीकाकरण अभियान ने भारत के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है?
2: ये जब आप टीकाकरण की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इस चीज को सराहा गया है। 2014 में कुल 63% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण होता था और आज ये बढ़कर के 93-94% हो गया है। अभी NFHS का डेटा 2 दिन पहले आया है 2024-25 का, एक्चुअली उसमें डेटा 22-23 का
1: जी, जी।
2: और उसके हिसाब से 88.7% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण उपलब्ध हो रहा। और इसका कारण, और आपने मिशन इंद्रधनुष का जो उदाहरण दिया कि जो बच्चा रह जाए जिसको टीका नहीं मिला हो उसको देने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जिनको टिटनेस का टीका नहीं मिला उनको भी देने का। लेकिन ये टीका खाली कहने पर से नहीं है, इस कार्यक्रम में जो नवाचार किया गया कि इस देश का हर बच्चा जो टीकाकरण के लिए उसका अधिकार था उसको मैप आउट किया गया, उसकी पहचान की गई और उस तक पहुंचने का प्रयास किया गया। और यह जो प्रयास था जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, ये हम सीखे खास तौर पे जब हम पोलियो उन्मूलन कर रहे थे। पूरे के पूरे टीकाकरण में हमारा अब हर बच्चा हर महिला जो है हमारे एक तरीके से हाथ पे लिखा रहता है। और अब इसको आगे ले जाकर के UN IT प्लेटफॉर्म है जिससे कि हर एक हमारी रजिस्ट्री बन गई है जिसमें बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है। लेकिन इसका मुख्य लाभ जो हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ता आई है, क्योंकि अब जब मैं बच्चों के तक पहुंचता हूं, गर्भवती महिलाओं तक पहुंचता हूं, तो खाली टीकाकरण नहीं है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बाकी जो समस्याएं हैं उनको भी वहां तक लेके जाने का प्रयास किया जा रहा। साथ ही साथ जो ये माइक्रो प्लान वाला सिस्टम है इसका प्रभाव हमारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये खास तौर पे 2 बड़ी बीमारियां हैं
1: जी।
2: ये भी अपने आसपास के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चारों तरफ लगभग 5,000 की पॉपुलेशन होती है वहां तक पहुंचाने में भी इसी उपक्रम का उपयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी नवाचार किया जा रहा है टीकाकरण में उसका प्रभाव खाली बच्चों की और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं पर सुदृढ़ नहीं हुआ है लेकिन बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो भारत का टीकाकरण कार्यक्रम है वो हमारी सारी की सारी सरकारी जो भी हमारे कार्यक्रम है, अभियान है, उसमें सबसे ज्यादा कवरेज या पहुंच जो है टीकाकरण कार्यक्रम की है। इस देश के लगभग 97% जो टीकाकरण के अधिकारी हैं उन तक कम से कम एक टीका लग चुका है। तो यही एक रास्ता है जिससे कि बाकी जो सेवाएं हैं उनको भी पहुंचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अभी डॉक्टर अरोड़ा ने आयुष आरोग्य मंदिरों की बात की और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिहाज से। और अभी देश में 1,70,000 से अधिक हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं। तो अगर बात करें आयुष्मान भारत, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि जो आयुर्वेद है और आयुष उपचारों को उसमें शामिल किया जा सके, तो सरकार कैसे आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा को एक साथ लेकर चल रही है?
0: आपके सवाल में 2 हिस्से हैं। पहले मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो बात कही है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा
1: जी।
0: किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्राइमरी केयर होती है, प्राथमिक सेवाएं जो होती हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में प्राथमिक सेवाओं में जो सुदृढ़ता आई है, हमारे सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालों से काम निभा रहे थे बिल्कुल लिमिटेड तरीके से, जितना भी कर पा रहे थे लिमिटेड था। 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको आज हम आयुष्मान आरोग्य मंत्र कहते हैं, उनकी संरचना, उनकी सोच लेके आए, जो एक लिमिटेड प्राथमिक सेवाएं होती थी, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ या संक्रमित बीमारियों के।

0: इन्फेक्शियस बीमारी, कम्युनिकेबल डिजीज की, वो तो करना ही है, उसमें भी और डेप्थ और इंटेंसिटी लेके आए। लेकिन जो नहीं हो रहा था, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी इतनी प्रोमिनेंट है, कैंसर, अब ये सेवाएं प्राथमिक सेवाओं में आयुष्मान भारत केंद्र में निहित हो गई कि हम इनको एक सीमित तरीके से, सीमित इन द सेंस कि पीरियोडिक, इतने साल के बाद हर व्यक्ति का एक चेकअप होगा, हर साल ब्लड प्रेशर चेक होगा, हर साल शुगर चेक होगी डायबिटीज के लिए, और कैंसर तीन साल में, पांच साल जैसा प्रोटोकॉल है, उस पर तीन कैंसर, मुंह का कैंसर, कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर लेडीज में, और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, इसकी सबकी स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को साथ में जोड़ा गया, आई आंख का इलाज, ENT कान का इलाज, नाक का इलाज, डेंटल हेल्थ, फिर एल्डरली केयर को भी जोड़ा गया इसमें। तो 12 पैकेजेस बने, शुरू के 5 पैकेजेस, 4 पैकेजेस के बजाय उसका आयाम बढ़ गया। अब और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 170,000 ये बने, उसमें दो तरह के हैं, एक सब सेंटर लेवल का होता है 6,000 पॉपुलेशन के लिए, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है, लगभग 30,000 का उसका दायरा होता है। कुल मिला के ये यूनिट बन जाता है, एक PHC वाला आयुष्मान रोके मंदिर, और 5 या 6 या 4 या 5 सब सेंटर वाले आयुष्मान रोके मंदिर बन जाता। अब बिल्कुल आश्चर्य भी होगा आपको, 120,000 नए मिड लेवल प्रोवाइडर्स, इनको करने के लिए टीम को बढ़ाया गया। हमारी पुरानी टीम थी, आशा वर्कर थे एक गांव में लगभग 1,000 की पॉपुलेशन पे, फिर हमारे पास ANM थे, कहीं कहीं मेल हेल्थ वर्कर होता था, लेकिन 120,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को लगाया गया है। इतनी रेवोल्यूशनरी बात है कि इतने संख्या में एक ह्यूमन रिसोर्स को प्राइमरी केयर के पीछे लगाया गया, और ये टिपिकली BSc पास हमारी नर्सेस होती हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और सब जगह पे टेलीमेडिसिन का प्रावधान हुआ
1: जी।
0: सब जगह पे 100 से ज्यादा दवाइयाँ, सब सेंटर वाले में 105 दवाई और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 170 फ्री मेडिसिन, सब सेंटर वाले में 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्री, और PHC वाले में 42 से ज्यादा फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रावधान किया गया है। तो सारे समाज को, सारे जितनी पॉपुलेशन है उसको एक सूत्र में बांध के कमिटमेंट है कि हम इनका चेकअप करेंगे, कमिटमेंट है कि हम उनको याद दिलाएंगे कि दवाई आपको फ्री मिल रही है, दवाई जब खत्म होती है तो अगली दवाई आप लीजिए, जरूरत होगी तो टेलीमेडिसिन के द्वारा जोड़ा जाएगा, और जो बाकी सेवाएं शुरू से हैं, इम्यूनाइजेशन है, मदर चाइल्ड हेल्थ है, TB कंट्रोल, लेप्रसी, ये जो प्रोग्राम वो तो चलने ही है, उनमें भी ताकत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्लैनेट पर सबसे बड़ा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एक रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो आज हमारे देश में हो रहा है, और ये बहुत दूर तक हमें लेकर जाएगा, क्योंकि क्रॉनिक बीमारियों को बचाने का तरीका सिर्फ यही होता है कि या तो वैसे ही हम अपने आप को, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, नहीं तो हम डिटेक्ट करें, और प्राइमरी हेल्थ के द्वारा डिटेक्शन भी हो, प्रिवेंशन भी हो, हेल्थ प्रमोशन भी हो, और जरूरत पड़े तो फिर ट्रीटमेंट भी हो, जिसमें फिर PMC जुड़ जाता है।
1: बिल्कुल, देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है हमारे जैसे देश की, तो घर घर जाकर इस चीज की जांच करना और उनको बताना, रोकथाम के लिए उपाय बताना, तो ये बहुत बड़ी बात है।
0: दूसरी बात आपने कही कि हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ा गया है, बहुत बड़ी बात है
1: जी।
0: ये हिस्टोरिक जब देखा जाएगा तो हिस्ट्री में ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में जो भारत का अपना सिस्टम थे, आयुर्वेद था हमारा, सिद्ध है हमारे पास, यूनानी है, ये सब हमारे भारत में पनपे हुए सिस्टम है, ये इन सब की जो योग है कोविड स्वास्थ्य के लिए भी और स्वास्थ्य से भी ऊपर का है, वो उन सब को एक मेन स्ट्रीम में लाना, उनको लिए बजट प्रदान करना, उनके सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, और उनको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच में जोड़ना, और को जो बढ़ोतरी मिली है वो बहुत बड़ी बात है कि दोनों का समावेश हो, आधुनिक कार्यक्रम, आधुनिक पद्धति का भी हो और ट्रेडिशनल का भी हो, ताकि दोनों मिलके एक व्यक्ति को, एक नागरिक को वो दे पाए जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा, स्वास्थ्य रहे, बीमारियां नहीं हो, मन भी अच्छा हो, तन भी अच्छा हो और आत्मा भी अच्छा हो, इन सब का जो जोड़ इंटीग्रेटिव अप्रोच में लेके आए हैं, ये भारत का मॉडल जो है ये दुनिया देखेगी। और आयुर्वेद का जो प्रचलन है वो बड़ा है, आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं, और बिल्कुल ये मेन स्ट्रीम में दोनों को ले जाने का जो माहौल बना है और जो ताकत आई है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड
1: है। बिल्कुल, एक साथ ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अरोड़ा, हम जिसे बात कर रहे थे टीकाकरण की भी, तो इन दिनों सरकार जो कैंसर है उसकी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन पर, स्क्रीनिंग पर बहुत ध्यान दे रही है।

0: का जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
1: जो HPV वाला टीकाकरण है, और इसके अलावा डॉक्टर पॉल ने 3 कैंसर्स के बारे में बताया, एक तो महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह वाला कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर है उसी के लिए वैक्सीन है ये
0: जी,
1: उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और मुंह का कैंसर, और एक तीसरे कैंसर के लिए वैक्सीन ऑलरेडी दी जा रही है जो हेपेटाइटिस बी है, उसकी वजह से लिवर का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर की तरफ जो है, क्योंकि जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय में हम सब लोगों का ध्यान बहुत अधिक आकर्षित हुआ है कैंसर की बीमारी की तरफ, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, जल्दी पहचान के लिए, फिर इलाज के लिए, और इस दिशा में बहुत सारा काम किया गया है। तो एक तो स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और हुई है हमारे देश में इस पिछले 12-13 साल में, एम्स का संख्या 1 से बढ़कर के इस समय 23 एम्स हो गए
0: जी,
1: जो अपने आप में एक गजब की चीज है। कि और ये एम्स बड़े शहरों में नहीं करे गए, फॉर एग्जाम्पल झारखंड में देवघर करके एक जगह है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता, मतलब ऐसी जगह किया है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन या पिछड़े इलाकों में किया गया है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में है, इसी तरीके से JNK में 2 हैं, और बाकी पूरे कंट्री में इस तरीके से करे गए, और खास तौर पे ऐसे क्षेत्रों में किया गया है एम्स को एस्टैब्लिश, जहां से ज्यादा लोगों के पास टर्शरी केयर, जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, और इनमें कैंसर के इलाज के लिए बिल्कुल आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध हैं इन सारे में, ये सब नए इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद कैंसर की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ अनुसंधान इस तरीके से किया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याएं हैं, और उसमें हमारे कुछ कैंसर स्थानीय तौर पे बहुत होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो लेरिंजियल कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है, और सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज्यादा है, तो उन क्षेत्रों में उन पे विशेष तौर पे ध्यान देकर के उसकी स्क्रीनिंग है, उसके बचाव के लिए क्या तरीका किया जाए, उसके इलाज के लिए क्या किया जाए। और अब ये जो HPV वैक्सीन के बारे में आपने कहा, ये हमारी बच्चियों के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए है, और ये वैक्सीन इतनी सुरक्षित है, और वैक्सीन मिलने के बाद कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह का कैंसर प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। इनफैक्ट WHO की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि ये वैक्सीन के साथ साथ अगर हम स्क्रीनिंग और इलाज करते हैं तो अगले 15-20 साल में इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कैंसर की तरफ जो है बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। कुछ बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बाकी सरकार जिनको सहायता करी है, जैसे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, इनके चारों तरफ पूरे देश में शाखाएं बनाई जा रही हैं, और कुल मिलाकर हर एक प्रदेश में कैंसर का एक रीजनल सेंटर बनाया गया है, जिससे कि लोगों को दूर दराज चल करके जाने की जरूरत ना पड़े और घर के पास ही ये सुविधाएं उपलब्ध हैं।
0: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर हम आज देखें, आज भारत डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और जो स्वास्थ्य ID जैसी पहल है, वो आम नागरिक के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से सरल और प्रभावी बना रही है?
2: भारत का जो डिजिटल हेल्थ की तरक्की हुई है वो दुनिया में बिल्कुल अलग और शायद सबसे आगे की तरक्की की तरह मानना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया और उसके जो डिफरेंट स्वरूप हैं उसमें एक है कि हमारे पास हर नागरिक का इवेंचुअली एक डिजिटल आइडेंटिटी होगा, उसको हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कहते हैं, आभा। तो आपको हैरानी होगी 87 करोड़ व्यक्तियों का, नागरिकों का आभा आइडेंटिटी आज हमारे पास अवेलेबल है, 87 करोड़, 145 करोड़ में से। इसका क्या फायदा है कि इस सिस्टम के द्वारा, इस आइडेंटिटी के द्वारा जो मेरे हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं वो उसके ऊपर लोड हो सकते हैं, वो पुराने नए अगले सब जुड़ सकते हैं, और जब किसी ने इसको देखना है और प्रस्तुत करना है और रिकॉर्ड की तरह भी है तो वो डॉक्टर साहब उसको देख के फैसला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हमारे और से और लोड होते जाएंगे, ये एक इनोवेशन का भी जरिया बनेगा, और इसमें बहुत सेवा की ईज जो है, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ, वो अचीव होगी। इसमें फिर जो टेली मेडिसिन में जो तरक्की हुई है, जैसे मैंने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टेली मेडिसिन हो गया है, हमारे पास ई संजीवनी एक टेली मेडिसिन है, रोज हजारों कंसल्टेशन उसके ऊपर होती है, हजारों, और उसमें इतने डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, उसके अलावा प्राइवेट

0: बड़ी है और जो इसका फ्यूचर पोटेंशियल है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और इसके आगे चलते हुए जब इस टेक्नोलॉजी को हम एआई के साथ लिंक करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के और सॉल्यूशंस होंगे, तो मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल अग्रणी देशों में होगा इस काम में।
1: डॉक्टर अरोड़ा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इशू। व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 इयर्स?
2: We have just seen last 2 days some of the recent data. One of the key issues which has been bothering all of us was stunting in children. And stunting has been traditionally recognized as the quality of health services. And during last, between NFHS 5 and 6, I think the stunting has decreased by 12 or 14 percent points. Now, this is remarkable because this is, jisko kehte hain, bilkul phasi hui cheez thi, jisko ठीक करने में बहुत ही मेहनत लग रहा था। और ये देश भर में पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उनके पोषण पे विशेष ध्यान देना, उस दिशा में जो काम हुआ है। तो अब हमने देखा है कि बच्चों में जो स्टंटिंग, हमारे यहाँ लगभग 50% बच्चे अपनी पूरी ऊंचाई को प्राप्त और लंबाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो अब आ गए हैं 29% पे लगभग। लेकिन अभी काम करने की जरूरत है, वो है अनीमिया, खून की कमी है। अब वो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी किशोरी बिटिया लोग हैं और बाकी बच्चों में ये अनीमिया की समस्या ऐसी है। इसकी तरफ जो है अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम आरंभ किया गया है और उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन वो विकास में और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि देश के डिफरेंट हिस्सों में अनीमिया के कारण अलग अलग हो सकते हैं और खाने में खासतौर पे उस चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के, और एक तीसरी चीज जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे रहा है कि एक समय था जब हमारे यहाँ केवल 27% महिलाएं अपना प्रसव जो है एक संस्था में करती, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, आज वो पढ़ करके लगभग 95% हो गया है। ये भी एक अभूतपूर्व उपलब्धि है और इसकी वजह से नवजात शिशुओं की मृत्यु, असमय मृत्यु से उसको कम किया गया है। और साथ ही साथ जो हमारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, मैटरनल मोर्टैलिटी, वो एकदम नीचे आ गई है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि जो हमारी माताएं हैं और बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य में जो प्रोत्तर विकास हुआ है, उस विकास में एक तेजी आई है, मृत्यु दर में कमी हुई है, चाहे वो माँ हो चाहे नवजात शिशु हो। और इसमें भी हम लोग पूरी कोशिश की जा रही है कि 2030 तक, उससे पहले ही जो हमारे SDG गोल्स हैं उनको हम प्राप्त कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन चीजों की उपलब्धि प्राप्त कर सके जिसमें ज्यादातर देश प्राप्त नहीं कर पाए हमारी तरफ।
1: बिल्कुल, अगर डॉक्टर पॉल आपसे बात करूं, कोरोना के टाइम की जब कभी याद आती है तो अब भी जैसे रोंगटे खड़े हो जाते, लेकिन उस समय जो भारत की रणनीति थी उसको पूरे विश्व में सराहा गया, दो इट वॉज अ मेजर चैलेंज फॉर अस। सो वॉट मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस द COVID-19 पेंडेमिक?
0: उसके बाद में हमने अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया। एक वन हेल्थ मिशन देश में लॉन्च किया गया। उसका तात्पर्य यह है कि जो महामारियां हम अभी देख रहे हैं पिछले दशकों में, और कोविड की महामारी को भी देखा और आगे देखते हैं, तो ये लगता है कि महामारी का जो ओरिजिन है, जो वायरस है, वो एनिमल किंगडम से आता है, बैट से, चमगादड़ से आता है, या बर्ड से आता है, चिकन से आता है। अब इन सब चीजों को समझते हुए क्लियर हो गया है कि हम एनिमल किंगडम से अलग नहीं है, हम वाइल्ड लाइफ के सिस्टम से अलग नहीं है, हम जो हमारा लाइफ स्टॉक है, घरेलू जानवर है, उनसे अलग नहीं है, हम एनवायरनमेंट, जंगल, इन सब से सभी जुड़े हुए। तो वन हेल्थ के अप्रोच के द्वारा इन सब सेक्टर्स को और इन सब डायमेंशंस को जोड़ के एक जो मिशन बनाया गया है, उनके अंतर्गत जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है कि कहाँ पे क्या बीमारी हो रही है, पशु में भी क्या हो रही है, ह्यूमन में भी क्या हो रही है, उसको जीनोमिक लेवल तक जाके समझना और उसके बारे में देखना कि वो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसको कंटेन कैसे करना है। तो ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम वन हेल्थ के अंतर्गत बनाया गया है। हमारे सर्वेलेंस की पद्धतियों को स्ट्रॉन्ग किया गया है, हमारे जो इंडस्ट्री है और साइंस एकेडमिया का सिस्टम है उनको अलर्ट करके उनकी अप्रोच करा गया है कि जो वायरसेस महामारी का रूप दे सकते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं, उनके लिए अपनी रिसर्च को बढ़ाओ, उनके लिए तैयार रहो कि

0: पहले से ही वैक्सीन के रिसर्च हमारी बहुत आगे तक हो, ताकि अगर मुसीबत आती है तो हम जल्दी से जल्दी 100 दिन के भीतर वैक्सीन को पैदा करने की ताकत रखें। इसके अलावा जो रिस्पांस है ग्राउंड से, जो रिस्पांस है हमारा, जो एक IDSP का सिस्टम है, 2 लाख से भी ज्यादा जगह से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, उसको सशक्त किया गया है। सिंड्रोमिक अप्रोच ICMR ने डिटेक्ट करने का सिस्टम को सशक्त किया गया। वेस्ट वाटर सर्विलेंस भी करा जाए कि सुएज में क्या वायरसेस आ रहे हैं। काफी बड़े तौर पे इन सारे को पिछले लेसन्स को लेकर और आज की साइंस को जोड़ते हुए हमने अपनी व्यवस्थाओं को बहुत स्ट्रांग किया है। और ये जो फ्यूचर के लिए हमारी बायो सिक्योरिटी है, फ्यूचर के लिए हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है, उसके लिए स्टेप जो है पूरे तरीके से लिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर बात करें आम आदमी को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, आवास मिल जाए और अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो, और किफायती दाम पर जब आपको दवाएं मिलती हैं तो उससे बड़ी बहुत ही सुखद एहसास नहीं हो सकता एक आम आदमी के लिए। तो जन औषधि केंद्र ऐसे में कितने महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं?
0: जन औषधि केंद्रों के द्वारा हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो गुणवत्ता में पूरी उतरती है उनको उपलब्ध किया जाता है। देश में 19,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों का जाल बिछा हुआ है और बहुत तेजी से इसको 25,000 तक लगाने की प्लान है। इसमें हर रोज 10 लाख से ज्यादा व्यक्ति अपनी दवाइयां खरीदते हैं
1: जी,
0: किफायती दाम पे मिलती हैं। मार्केट में जो रेट होता है उससे आधी और कई दवाइयां तो सिर्फ 10% तक भी नीचे उनको उसका प्राइस से मिलता है, बहुत फायदा होता है। अगर हम देखें जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बचत भारत के नागरिक समाज को इस कार्यक्रम की वजह से उपलब्ध हुई है। और ये कार्यक्रम के द्वारा जो जन औषधि केंद्र हैं, ये सब जगह, सब प्रदेशों में, सब जिलों में इसका डायमेंशन दिखाई देती है, इनकी प्रेजेंस दिखाई देती है। और दवाइयों के अलावा जो मेंस्ट्रुएशन के लिए पैड्स की भी उपलब्धि की गई है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, और जब से ये वाला कार्यक्रम शुरू हुआ है 105 करोड़ से ज्यादा सुविधा नैपकिन जो है मेंस्ट्रुअल नैपकिन दिए गए जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है। तो ये दो काम कर रहा है, एक तो गुणवत्ता की दवाइयां मिल रही हैं, दूसरा व्यक्ति को बचत हो रही है, और तीसरा इसकी वजह से एक्सेस बढ़ती है, व्यक्ति सेवाएं ले पाता है, इस्तेमाल करता है तो बीमारी रुकती है, और उसका जो जायजा है वो हम रुपयों में नहीं ले सकते। इतना बड़े भले का ये कार्यक्रम है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, नए भारत की जो स्वास्थ्य क्रांति की यात्रा है केवल नीतियों और आंकड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन की गवाही भी है। डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आप दोनों का धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर VK पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: In the special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants were Dr. VK Paul, former member Niti Aayog, and Dr. NK Arora, president, AIIMS Bilaspur. Moderator was Priyanka Arora. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आपने ट्यून इन किया हुआ है। आज आपके संग है अर्पना और आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। 11:46 हो चुके हैं, तो चलिए गीत मेरे मनमीत की शुरुआत करते हैं अमित कुमार की आवाज के साथ। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत है और आरटी बर्मन का संगीत है और फिल्म का नाम है आपका अपना, यानी छोटा सा प्यारा सा बहुत खूबसूरत फिल्म बालिका वधू से ये गीत।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 तक सिर्फ FM गोल्ड पर।
2: वक्त मिला ले 11:51 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मन मीत। अगला गीत जो आपके लिए लेकर आई हूँ वो है, फिल्म का नाम है अनुरोध, किशोर कुमार की आवाज होगी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का होगा। एक बार फिर से ये गीत लिखा हुआ है आनंद बख्शी साहब ने।

खूबसूरत गीतों का ये, मधुर गीतों का ये सिलसिला यूं ही चल रहा है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अगला गीत मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ है और आवाज होगी मुकेश साहब की। फिल्म का नाम है धरती कहे पुकार के। इसी गीत के साथ अर्पना को दें इजाजत। गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश,

0: स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुदेन्द्र टंडन ने मीडिया को बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के साथ नागरिक के अधिकारों की रक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करें क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल शिलांग में उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र NESAC की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, आपदा प्रबंधन, जलवायु अनुकूल शासन और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रमुख रणनीतिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इनमें उच्च रिजोल्यूशन, ग्राम संसाधन मानचित्रण, आर्द्र भूमि, वन, नदियों और भू दृश्यों की नियमित निगरानी, पूर्वोत्तर में भू स्थानिक और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा, सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म NER शील्ड का विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के आकलन के लिए विशेष ढांचा तैयार करना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ. अलका गुर्जर और डॉ. सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ. सुभाष सी कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. कश्यप ने अपने शोध, लेखन और जनसेवा के माध्यम से भारत के संविधान और संसदीय लोकतंत्र की समझ में अमूल्य योगदान दिया। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में MR अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के रॉन ताई और कैंग खाईचिंग को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi yesterday held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare, and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health, and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrendra Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries, as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. UK Foreign Secretary Yvette Cooper yesterday called on Prime Minister Narendra Modi in New Delhi. In a social media post, the Prime Minister said that he appreciated the deepening of the India-UK partnership in recent times that has unlocked unprecedented growth opportunities for both the countries. Mr. Modi said that India-UK Vision 2035 will continue to guide the partnership and strengthen their joint efforts for global good. Prime Minister Narendra Modi has condoled the passing of former Secretary General of the Lok Sabha, Dr. Subhash C. Kashyap. In a social media post, Mr. Modi said that Dr. Kashyap was one of the India's foremost constitutional scholars whose contributions to parliamentary and constitutional discourse enriched the society. The Prime Minister further added that his writings and commitment to strengthening democratic institutions were noteworthy. A delegation of the United States Trade Representatives, USTR, led by the chief negotiator, yesterday concluded its fourth day visit India to advance discussions on trade agreement. Ministry of Commerce and Industry said that during the visit, the teams held constructive and positive discussions across a wide range of issues covering trade and goods, non-tariff measures, customs and trade facilitation, economic security alignment, and other areas of mutual interest. The ministry said that the engagements were marked by a spirit of cooperation and pragmatism, with both sides reaffirming their commitment to concluding a mutually beneficial agreement that strengthens bilateral trade and economic ties. India and the United States agreed on framework for an interim agreement regarding reciprocal and mutually beneficial trade in a joint statement issued on 7th of February. The BJP has released the names of its 11 candidates for the upcoming Rajya Sabha elections, and by poll party has fielded National General Secretary Tarun Chugh and Rajneesh Agrawal from Madhya Pradesh, another party General Secretary Dr. Alka Gurjar and Dr. Satish Punia has been fielded from Rajasthan. From Gujarat, party candidates are Raju Bhai Shukla, Mukesh Bhai Rathava, Man Singh Parmar and Jitendra Meghji Bhai Kanzaria. Tai Tagak is the candidate from Arunachal Pradesh, and Isharda Devi is from party candidates from Manipur. For Rajya Sabha by poll in Odisha, party has fielded Debashish Samantare, who recently joined BJP after quitting BJD. Election for 24 seats of Rajya Sabha will be held on 18th of this month. Rajya Sabha by poll will be held for one seat each in Odisha, Maharashtra and Tamil Nadu. The Congress party also released its list of the 7 candidates for the upcoming Rajya Sabha poll. Party President Mallikarjun Khadge, Pawan Kheda, Manzoor Ali Khan are the party candidates. From Karnataka, Congress has fielded Meenakshi Natarajan from Madhya Pradesh, Neeraj Dangi from Rajasthan and Pranav Jha from Jharkhand. Praveen Chakravarti will contest Rajya Sabha by poll from Tamil Nadu. And that's the end of the news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आज की रात मैं हूँ आपके साथ माधुरी, कार्यक्रम निशिकंधा लेकर। नमस्कार। अच्छा, हम जब भी निशिकंधा की बात करते हैं तो बात ये होती है कि यहाँ पर जिंदगी की हर धड़कन सुनाई देती है, और हमने इसी प्लेटफॉर्म से अपनी बहुत सारी बातें की हैं, अपने जज्बातों का इजहार किया है, मोहब्बत की बातें की हैं, ख़तों की बातें की हैं, न जाने कितनी कितनी बातें की हैं। पर आज जो बात करेंगे वो अपनी तो है ही, साथ ही साथ हम सब की भी है। बात है हमारे आसपास की, बात हमारे पर्यावरण की। तो बात को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, बस आपका साथ चाहिए। निशिकंधा के बहाने करेंगे बहुत सारी बातें।

कि जिस चित्रकार ने हमें सुंदर सी खिली खिली हर मौसम से लबरेज ये धरती दी है, तो वहाँ हमारा भी कुछ फर्ज है कि हम इस धरती को ऐसा ही सुंदर बनाए रखें। प्रकृति जो है ये हमारी प्रकृति माँ की गोद में हम सब कितने अच्छे से जी रहे हैं, फल फूल रहे हैं। वो हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देती है, पानी देती है, फल फूल देती है, लेकिन कभी सोचते हैं कि हम क्या दे रहे हैं? बस लालच, प्रदूषण और बेरुखी। आज जब जंगलों की कटाई हो रही है, नदियां विषैली हो रही हैं, आकाश धुंधला हो रहा है, तब भी हम सोचते हैं कि केवल पेड़ लगाने भर से पर्यावरण बच जाएगा, पर सच्चाई ये नहीं है दोस्तों। बिना एक पौधा लगाए भी हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, सुंदर और सुरक्षित धरती को छोड़ सकते हैं, और इसी के साथ हम सबकी जिंदगी फूलों की तरह खिली खिली रहेगी। बस एक बार हमें ध्यान से सोचने की ज़रूरत है और कुछ छोटी छोटी चीज़ें कर गुजरने की ज़रूरत है।

पता है आपको कि हमारे एक एक हम सब जो एक एक हैं और हमारे एक छोटे छोटे प्रयासों से या कहें कि जो हमारे ख़राब जो छोटे छोटे ख़राब सी आदतें हैं उन्हें सुधार कर बस हम आगे बढ़ें तो बहुत कुछ हो सकता है। जब लाखों दिल एक साथ धड़कते हैं ना तो तूफान बन जाता है और इसी तरह से हम सबको छोटे छोटे से प्रयास करने हैं। हर दिन जो हम प्लास्टिक की बोतल थैली और पैकेट इधर उधर फेंकते रहते हैं ना उसका प्रबंधन करना है। सदियों ये जो चीज़ें हैं जो इधर उधर हम प्लास्टिक की फेंक देते हैं ये सदियों तक धरती को जहर देते रहते हैं और क्या हम चाहेंगे कि हमारी धरती जहरीली हो जाए? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए हमें बस थोड़े थोड़े से प्रयास करने हैं। गीला सूखा और प्लास्टिक जैसे कूड़ों को अलग अलग करके फेंकना है और जो प्लास्टिक है उसे तो रिसाइकलिंग जो केंद्र हैं वहाँ तक पहुँचाना है। हमारे इन्हीं छोटे छोटे प्रयासों से लाखों टन प्रदूषण कम कर सकते हैं हम। यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन ये सच है। और जो हमारे भाई बहन जो हम गर्मियों में जाते हैं पहाड़ों पर घूमने, वहाँ पर भी हम चिप्स के पैकेट फेंक देते हैं, पानी की बॉटल छोटी छोटी इधर उधर गिरा देते हैं, फेंक देते हैं, तो ये सब हमारी धरती में ही तो जज्ब हो रहा है, कहाँ जा रहा है? तो ये सब हमें नहीं करना है, वरना हम कहाँ जाएंगे नीले पर्वतों की धारा देखने, हम कहाँ घूमने जाएंगे? तो थोड़ा तो सोचना बनता है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आपने क्यों उनके हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और समय हो गया है रात के 12:29:10। ये कार्यक्रम है निशिगंधा और आज की रात मैं माधुरी हूँ आप सभी के साथ। देखिए ना, हम इस जगह से अपनी बात करते हैं, अपने घर के, अपने परिवार के, हर चीज़ की बात करते हैं, बहुत सारे जज्बातों को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, उन पर चर्चा करते हैं। और आज जो है यहीं से मैंने सोचा सोने से पहले कैसी बात हम सबको मंथन करनी चाहिए कि जब हम घर से बाहर पैर निकालते हैं तो वो जो जगह है वो भी तो हमारी है, ये दुनिया हमारी है, देश हमारा, ये शहर हमारा, ये मोहल्ला हमारा है, तो सोचेंगे भी तो हम ही ना कि घर तो साफ कर लिया लेकिन उसके बाहर क्या, उसके बाहर भी हम ही हैं और हमें ही सब करना है। एक एक कड़ी मिलके हम ये सारे काम करते जाएंगे तो देखिएगा घर से बाहर भी सब कुछ सुंदर, अच्छा, स्वच्छ होगा और हमारा पर्यावरण खुश होगा। और ये जो पर्यावरण में नए नए रंग बिखरे हुए हैं ना, इनसे हम अपनी एक नई कहानी लिखेंगे।
1: I reached a point where I said stardom is now very big. Stardom has to finish somewhere.

प्लास्टिक खाकर मर रहे हैं? क्या हम इतने निर्दयी हो गए हैं? पानी और बिजली की बचत भी जो है वो पर्यावरण संरक्षण ही है। बस छोटी छोटी सी बातें हैं, नहाते समय नल बंद रखिए, टपकते नल को तुरंत ठीक करवा लीजिए, बिजली के बल्ब को LED में बदल लीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनसे लाखों लीटर पानी बच सकता है, बिजली बच सकती है। और पता है हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे बहुत ही दूर से पानी लेके आते हैं, महिलाएँ बहुत दूर से पानी लेके आती हैं। देखिए पानी का तो कोई रंग नहीं होता, लेकिन हम सबके रंग अलग अलग हैं। कुछ लोग हैं जो पर्यावरण संरक्षण के कामों में लगे हुए हैं, अपने छोटे छोटे प्रयासों से कुछ ना कुछ कर गुजर रहे हैं, और कुछ लोगों ने अपने बहुत ही खराब खराब रंग दिखाए हैं। तो ये हम में है, ये हमें सोचना है कि हमें कैसा इंसान बनना है, पानी का रंग कैसा होना चाहिए, ये हमें तय करना है।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये सफ़र है निशे कंधाकार, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम छोटे छोटे प्रयासों के ज़रिए अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। और ये ख़ास तौर पर रात के कार्यक्रम में इसीलिए लेकर आए कि जब हम सोएं तो एक बार अपनी प्रकृति के बारे में सोचें, एक बार उस आबो हवा के बारे में सोचें जिसमें हम सांस लेते हैं, और सोच कर देखें कि हमें हमारी ज़ात के अलावा भी इस प्रकृति को देने के लिए कुछ है और हमें वो देना चाहिए।

जी हाँ, जब बोलने पे आते हैं तो पर्वत भी बोलने लगते हैं। और बात तो ये है कि हमने ना अपनी ज़रूरतें कुछ ज़्यादा ही बढ़ा ली हैं। हमें उपभोग से ज़्यादा खरीदने की आदत हो गई है, ज़रूरत से ज़्यादा सामान इकट्ठा करने लगे हैं, तो थोड़ी सी रिफ्यूज़ करने की भी आदत डाली कि नहीं, अब बस ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए। बहुत सारा सामान जो ज़रूरत का भी नहीं है, हम बाज़ार से वो भी ख़रीद लाते हैं। पुरानी चीज़ों को, नए कपड़े, पुरानी चीज़ों को जो है उन्हें भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। कुछ दिन हो गए, चलो अब नया कुछ ले लेते हैं। तो घर में पुरानी चीज़ भी पड़ी होती है, नई चीज़ भी आ जाती है, और घर में भी उन चीज़ों को रखने की जगह कम पड़ जाती है। तो पुराने को निकालते निकालते भी बहुत सारा कूड़ा होता है। और आप देखेंगे, अगर आप आज से भी अपने घर में देखना शुरू कर दें तो आपको लगेगा कि बहुत सारा सामान ऐसा है जिसकी आपको ज़रूरत थी लेकिन कभी पड़ी नहीं, हम ले आए और हमने घर में रख ली चीज़ें। तो और जो बिना ज़रूरत का सामान है वो हम दूसरों में बांट भी सकते हैं। किताबें, खिलौने, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके शायद आज आपको ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें दूसरों में बांट दें। परिवार, मित्रों और पड़ोसियों से भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को अपनाने के लिए बताएं। हम एक किताब से पहले जो है दो तीन मतलब साल निकाल देते थे, हमने पुरानी किताब खरीदी, उसे पढ़ा, फिर हमसे किसी ने खरीद लिया आधे रेट में, ऐसे भी हुआ था। आप देखेंगे कि पहले ऐसा होता था, लेकिन आज हर सेमेस्टर में आपको नई किताब चाहिए। हर क्लास में जब नया बच्चा जाता है नई क्लास में, तो हम उसे पूरा नया सेट ला के देते हैं। तो हमने भी जो है ना अपनी ज़रूरतें यूं ही बढ़ा ली हैं। शायद उसकी उतनी ज़रूरत है नहीं, लेकिन हमने उसे तरजीह देना शुरू कर दिया है। तो छोटी छोटी सी आदतें अगर हम बदलेंगे तो ज़रूर हमारा पर्यावरण भी बदलेगा, और हम प्रकृति से नज़रें मिलाने के काबिल हो जाएंगे। ये जो अगला गीत मैं चला रही हूँ, ये थोड़ा सा जज्बाती है, जज्बातों की तरफ ले जाके हमें कुछ सिखा रहा है, लेकिन हाँ, सिखा तो रहा है।

देखिए ना, प्रकृति हमसे बदला तो नहीं लेती है, वो सिर्फ चुपचाप सहती रहती है, लेकिन उसकी चुप्पी अब चीख बन रही है बाढ़ सूखा ग्लोबल वार्मिंग के रूप में। हमें अब जागना होगा। बिना पेड़ लगाए भी हम अपने व्यवहार आदतों और सोच को बदल कर एक हरा भरा भविष्य बना सकते हैं, और हम ज़रूर बनाएंगे। आज की रात सोचेगा ज़रूर। और जाते जाते ये गीत आप सभी के लिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग

0: विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: The discussions also.
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: Can enter the Venezuelan market successfully.
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल शिलांग में उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र NESAC की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, आपदा प्रबंधन, जलवायु अनुकूल शासन और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रमुख रणनीतिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इनमें उच्च रिजोल्यूशन, ग्राम संसाधन मानचित्रण, आर्द्र भूमि, वन, नदियों और भूदृश्यों की नियमित निगरानी, पूर्वोत्तर में भूस्थानिक और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा, सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म NER शील्ड का विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के आकलन के लिए विशेष ढांचा तैयार करना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ. अलका गुर्जर और डॉ. सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को कर्नाटक से उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन, राजस्थान से नीरज डांगी और झारखंड से प्रणव झा को पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। इसके अलावा तमिलनाडु से होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए प्रवीण चक्रवर्ती को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ. सुभाष सी कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. कश्यप ने अपने शोध, लेखन और जनसेवा के माध्यम से भारत के संविधान और संसदीय लोकतंत्र की समझ में अमूल्य योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. कश्यप देश के अग्रणी संवैधानिक विद्वानों में से एक थे जिनके संसदीय और संवैधानिक विमर्श से जुड़े योगदानों ने समाज को समृद्ध किया। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइकिन को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Ajay Kumar. Prime Minister Narendra Modi yesterday held talks with Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare, and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talk, Secretary East Rudrendra Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries as the Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. Union Minister for Ministry of Development of Northeastern Region Jyotiraditya M. Sindhya yesterday attended the meeting of the Northeastern Space Application Center, NISAC, in Shillong. The Union Minister outlined five strategic initiatives to position NISAC as a transformative institution for regional development, disaster preparedness, climate-smart governance, scientific innovation, and data-driven policy-making. These include high-resolution village resource mapping, regular monitoring of wetlands, forests, rivers and landscapes, promotion of geospatial and space technology startups in the Northeast, development of an all-hazard disaster resilience digital twin platform, NER Shield, and creation of a Northeast Green Wealth and Natural Capital Accounting Framework. Prime Minister Narendra Modi has condoled the passing of former Secretary General of the Lok Sabha, Dr. Subhash C. Kashyap. In a social media post, Mr. Modi said that Dr. Kashyap was one of the India's foremost constitutional scholars whose contributions to parliamentary and constitutional discourse enriched the society. The Prime Minister further added that his writings and commitment to strengthening democratic institutions were noteworthy. A delegation of the United States Trade Representative, a USTR led by the chief negotiator, yesterday concluded its four-day visit to India to advance discussions on the trade agreement. Ministry of Commerce and Industry said that during the visit, the teams held constructive and positive discussions across a wide range of issues covering trade in goods, non-tariff measures, customs and trade facilitation, economic security alignment, and other areas of mutual interest. India and the United States agreed on a framework for an interim agreement regarding reciprocal and mutually beneficial trade in a joint statement issued on the 7th of February. India and Zimbabwe yesterday reaffirmed commitment to deepen bilateral defence cooperation during the inaugural meeting of India-Zimbabwe Joint Defence Committee held in New Delhi. Joint Secretary International Cooperation in the Ministry of Defence, Amitabh Prasad, and Permanent Secretary of Zimbabwe, Arun Daniel Tonde Nefra, co-chaired the meeting. Both sides agreed to enhance bilateral defence ties by expanding existing cooperation in areas such as training, support and maintenance of common air assets. The road for victory of five Mahayuti candidates, one from BJP and two each from NCP and Shiv Sena, was cleared yesterday when opposition candidates withdrew their name for the upcoming MLC polls in Maharashtra. Elections for the remaining 12 seats will be held on 18th June with counting scheduled for 22nd June. Kolkata is set to become the country's 18th city to be connected with the water metro service. After a meeting with the Union Ministry of Shipping, Chief Minister Suvendu Adhikari announced that after Kochi, which was 17th city, the centre has now given policy approval for Kolkata's water metro project. The system will provide a fast, eco-friendly and alternative public transport link across the Hooghly River. India has retained its strong presence in the latest world boxing rankings. Jasmine Lamboria climbed to world number one in the women's 57kg category, while Asian champions Priya Ghanghas in 60kg and Viswanath Suresh in 50kg surged into the top three of their respective categories. And that is the end of this news bulletin.

0: 101.1 MHz पर। और मैं हूँ आपके साथ माधुरी, नमस्कार। और रात के इस वक्त हम लेकर आते हैं एक ख़ास पेशकश जिसका नाम है गीत सुहाने, और इसमें हम आपको सुनवाते हैं ओल्ड क्लासिक्स।
1: मारे,

जी हाँ, चंपी से क्या घबराना, और चंपी तो सर को हल्का ही करती है। और ये जो गीत है ये बहुत ही प्यारा गीत, और ये गीत हम आपके लिए लेकर आए थे फिल्म प्यासा से मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है फिल्म सीआईडी से शमशाद बेगम के आवाज़ में।

0: गाइए ना।
1: दिल की उमंग है जवान,
0: गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताओ।

वाह क्या बात है, मस्ती भी मौसी की भी। और जो अगला गीत आप तक हम पहुंचा रहे हैं वो है फिल्म मधुमती का गीत लता जी की आवाज़ में।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये सफर है गीत सुहाने का और समय हो रहा है इस वक्त रात के 1:26 और पूरे 15 सेकेंड।

ये जो गीत सुना आपने, ये गीत था फिल्म कौन सी फिल्म से है ये गीत? ये गीत है फिल्म हावड़ा ब्रिज से, और इसे गाया आशा जी ने। माफ कीजिएगा, मैं भी गुम हो गई इस गीत में। और अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म 16वां साल से, हेमंत कुमार की आवाज़ का ये गीत है, एसडी बर्मन के संगीत से सजा हुआ।

वाह वाह, हेमंत कुमार जी की आवाज़ का जवाब नहीं। और आपने एक चीज़ नोट की, जी हाँ, माउथ ऑर्गन जो बज रहा था कितना प्यारा बज रहा था और पूरे गाने में था। और कुछ आपने नोट किया? ज़रूर करिएगा। हर गाने में, जो पुराने गाने हैं, इसमें इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है और तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं। आज तो संगीत बनाने का जो रिवाज है वो कुछ और ही हो गया है, लेकिन इनमें आपको अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सुनाई देंगे और वो एकदम से कानों को लगते हैं कि अरे ये तो ये चीज़ बज रही है, ये चीज़ बज रही है। चलिए अगले गाने की तरफ पहुंचते हैं और ये अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म चलती का नाम गाड़ी से, आशा जी की आवाज़ में।

ये गाना सुन रहे थे आप फिल्म आर पार से जो आई थी 1954 में। गीता दत्त की आवाज में ये गीत सुना आपने ओपी नैयर के संगीत के साथ। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म दिल्ली का ठग से।

आप सभी जुड़े हुए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये सफर है गीत सुहाने का, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं ओल्ड मेलोडीज, और सच में एक से बढ़कर एक इतने प्यारे प्यारे से गाने हैं जो मन को लुभा रहे हैं। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए फिल्म नया दौर से, आशा जी और शमशाद बेगम की आवाज में, संगीत ओपी नैयर साहब का।

ये प्यारा सा गीत सुना आपने फिल्म लीडर से मोहम्मद रफ़ी और लता जी की आवाज़ में और संगीत दिया नौशाद जी ने। और अगला गीत है

0: रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मन।
1: भाई वक्त कह रहा है कि गीत सुहाने को हम यहीं विराम दें, बिल्कुल रुक नहीं सकते और अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
2: आज की ताजी
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
4: The discussions also.
5: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित ना रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
4: Can enter the Venezuelan market successfully.
3: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल शिलांग में उत्तर पूर्वी

अंतरिक्ष उपयोग केंद्र NESSC की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, आपदा प्रबंधन, जलवायु अनुकूल शासन और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 5 प्रमुख रणनीतिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। इनमें उच्च रिजोल्यूशन, ग्राम संसाधन मानचित्रण, आर्द्र भूमि, वन, नदियों और भू दृश्यों की नियमित निगरानी, पूर्वोत्तर में भू स्थानिक और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा, सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म NER शीड का विकास तथा प्राकृतिक संसाधनों के आकलन के लिए विशेष ढांचा तैयार करना शामिल है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ. अलका गुर्जर और डॉ. सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को कर्नाटक से उम्मीदवार बनाया गया है। मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन, राजस्थान से नीरज डांगी और झारखंड से प्रणव झा को पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। इसके अलावा तमिलनाडु से होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए प्रवीण चक्रवर्ती को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपये के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 5-7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। उनकी ये यात्रा विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री खनाल नई दिल्ली में डॉ. जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और लोगों के बीच संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ये दौरा नेपाल और भारत के बीच स्थायी और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर माधुरी है आप सभी के साथ। नमस्कार। मोहब्बत का कोई सदमा उठाना चाहिए था, भुलाया था जिसे वो याद आना चाहिए था। और मेरी आरजू और उसकी आरजू में फर्क ये था, मुझे बस वो उसे सारा जमाना चाहिए था।

याद आना उसका महंगा पड़ गया, रंग तन्हाई का फीका पड़ गया। हर तरफ यादें ही थीं उस शहर में, मैं वहां जाकर अकेला पड़ गया।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

आपने ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और ये सफर है रात सुरमई का और रात सुरमई में होती हैं दिल की बातें आपसे। नाउमीदी मौत से कहती है अपना काम कर, आज कहती है ठहर, खत का जवाब आने को है। और जगजीत सिंह की आवाज़ में ये जो गज़ल आप तक पहुंच रही है जिसमें वो कहते हैं कि तेरे खुशबू में बसे खत में जलाऊं कैसे, यानी खतों की जो अहमियत है, खतों में जो बात है, जो प्यार का खजाना छुपा है, उसे अपने से दूर कैसे करूं। यार दूर हो भी जाए पर ये जवाब, ये खतों खतूत का ये मामला अपने से दूर कैसे किया जाए।

0: देर तक देखा किए, फिर सो गए। चांद दरिया पेड़ गड्ढमड्ढ हो गए। तारों ने सब बसेरा कर लिया, पेड़ के अरमा पूरे हो गए। चार छह सिक्के थे, खोटे ही सही, देखिए किस्मत की वो भी खो गए।
1: तेरे खुशबू

बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है, बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता।

और अब जाते जाते ये भी सुनिए कि जाने वाले से मुलाकात न होने पाई, दिल की दिल में ही रही बात न होने पाई, तो फिर क्या हो, फिर मिलने का वादा हो, यही बात होगी। और ये रात सुरमई का आखिरी नगमा आप सभी के लिए। इसी के साथ दीजिएगा इजाजत माधुरी को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: The discussions also.
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: Can enter the Venezuelan market successfully.
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल 5 से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। उनकी ये यात्रा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री खानाल नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ये दौरा नेपाल और भारत के बीच स्थायी और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के मुख्य वार्ताकार के नेतृत्व में आया अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत की 4 दिन की यात्रा संपन्न कर कल स्वदेश लौट गया। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच वस्तुओं के व्यापार, गैर शुल्कीय बाधाओं, सीमा शुल्क तथा व्यापार सुगमता, आर्थिक सुरक्षा समन्वय और अन्य साझा हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। भारत और अमेरिका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में पारस्परिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने की मंजूरी दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल इस महीने की 10 तारीख से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने UNIFIL के साथ तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। भारतीय मिशन ने सोशल मीडिया पर इस हमले में मारे गए सर्बियाई शांति सैनिक को श्रद्धांजलि अर्पित की और घायल शांति सैनिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कल केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। Prime Minister Narendra Modi yesterday held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare, and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health, and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talk, Secretary Srudhendra Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries, as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. Nepal's Minister for Foreign Affairs, Shishir Khanal, is visiting India from 5 to 7 June at the invitation of the Minister of External Affairs of India, Dr. S. J. Shankar. During the visit, Minister for Foreign Affairs Khanal will hold a formal meeting with Dr. S. Jayashankar in New Delhi. The two sides will discuss matters of mutual interest with a view to enhancing cooperation across key areas including trade, investment, connectivity, energy and people-to-people ties. As part of regular exchange of high-level visits, this visit will further consolidate the enduring and multifaceted bilateral relations between Nepal and India, said the MOFA. The Enforcement Directorate, ED, yesterday conducted searches at 9 premises in Champai, Mizoram, in connection with a case related to Myanmar areca nut smuggling and money laundering involving proceeds of crime over 970 crore rupees. The agency said investigations revealed that Burmese nationals smuggled dry areca nuts across the Thiaw River into India without customs clearance through Zugtawar and Champai and handed over the consignments to local facilitators at the border. The probe agency noted that the investigation further revealed that e-way bills amounting to 251.19 crore rupees SGST and 86.25 crore rupees CGST were fraudulently issued in Champai district during the period from 2021 to 2024 for the movement of areca nuts, using forged plantation certificates and false custom clearance documents despite the plantation owners not being registered under GST. RBI Governor Sanjay Malhotra will today announce the bi-monthly monetary policy. According to the SBI research report, a repo rate hike will not be an appropriate response to deal with challenges like rising inflation and crude prices, depreciating rupee and potentially weak monsoon. It has instead suggested that RBI can use short-term interest rate tools and liquidity measures to address market distortions and support financial stability. A U.S. brokered ceasefire agreement between Israel and Lebanon has faced an immediate setback after Hezbollah rejected key provisions of the deal, raising fresh doubts about efforts to stabilize the conflict and prevent a wider regional escalation. Hezbollah Secretary General Naim Qassem rejected the terms, saying any requirement for the group to withdraw while Israel military operations continue would amount to surrender. He warned that attacks would continue as long as Lebanese territory remains under fire. The southwest monsoon has set in over Kerala yesterday. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over Kerala and Karnataka and heavy rainfall over Tamil Nadu during the next 7 days. Heavy to very heavy rainfall is also likely over Mahe, Puducherry and Karikal today. The IMD has predicted heavy rainfall over the Andaman and Nicobar Islands, Andhra Pradesh, Konkan, Goa, Lakshadweep, Madhya Maharashtra, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Telangana, Uttarakhand and the northeastern states during the next 2 days. According to the weather agency, Himachal Pradesh, Ladakh and Jammu and Kashmir are likely to experience thunderstorms and hailstorms till Saturday. Thunder squalls with winds reaching 50 to 60 kilometers per hour expected over Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Chhattisgarh, East Rajasthan, Madhya Pradesh, Odisha and Uttar Pradesh. Thunderstorms and lightning are also likely over Bihar, Maharashtra, Gujarat, Jharkhand and West Rajasthan today. And that is the end of this news bulletin.

आप सुन रही हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है रात्रि के 3:11 और हमेशा की तरह आप सुनते हैं रोज अपना पसंदीदा कार्यक्रम हमराही। कार्यक्रम के साथ मैं अर्चना गोयल। नमस्कार दोस्तों, दिन भर की भागदौड़, जिम्मेदारियों और थकान के बाद अब समय है कुछ पल खुद के साथ बिताने का। रात का ये सुहाना सफर लेकर आया है कुछ खूबसूरत बातें, कुछ अनमोल एहसास और कुछ यादें और कुछ ऐसे जज्बात जो अक्सर दिन के उजाले में हमसे छूट जाते हैं। तो आइए दिल के दरवाजे खोलिए, भावनाओं को बहने दीजिए और इस खुशनुमा रात का आनंद।

0: गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो हो, हो। अरे मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत था फिल्म तीन देवियां से। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, ये अपने साथ सुकून भी लाती है। दिन में हम दुनिया की आवाजें सुनते हैं, लेकिन रात में अपने दिल की आवाज सुन पाते हैं। रात की खामोशी में घड़ी की टिक टिक भी कहानी सुनाती है। हवा की हल्की सरसराहट भी किसी अपने का संदेश लाती है।

कई बार हम दिन भर मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन रात होते ही कुछ यादें चुपके से आकर बैठ जाती हैं, जिनको रोक पाना मुश्किल होता है। कहती भी हैं कि रात चुप थी मगर दिल में शोर बहुत था, जिसे भूलना चाहा उसी का जिक्र बहुत था।

मेरे सनम फिल्म में ये आवाजें थी आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। यादें भी बड़ी अजीब होती हैं, कुछ यादें मुस्कुराहट बन जाती हैं, कुछ आंखों में नमी छोड़ जाती हैं। कभी स्कूल के दोस्त याद आते हैं, तो कभी बचपन की गर्मियों की छुट्टियां, कभी माँ की आवाज, तो कभी किसी खास का साथ। यादें कभी पुरानी नहीं होती, बस वक्त के साथ और कीमती हो जाती हैं। वक्त गुजर जाता है लेकिन कुछ लोग नहीं जाते, दिल के किसी कोने में हमेशा बसे रह जाते हैं।

यह आवाजें थी मोहम्मद रफी और नंदा की, फिल्म का नाम था जब जब फूल खिले। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही और मैं हूं आज आपके साथ अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 3:30 और 43 सेकंड।

दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत रिश्ते होते हैं। घर बड़ा हो या छोटा, अगर उसमें अपनापन है तो वही सबसे खूबसूरत जगह है। एक फोन कॉल, एक हालचाल और एक सच्ची मुस्कुराहट, कई बार इतना ही काफी होता है किसी का दिन बेहतर बनाने के लिए। आज अगर कोई अपना याद कर रहा है तो उसे जरूर बात कीजिए, हो सकता है वो भी आपकी आवाज सुनने का इंतजार कर रहा हो।

हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, कुछ सपने, कुछ मुलाकातें, कुछ शिकायतें, लेकिन शायद ज़िंदगी का नाम ही अधूरापन है। अगर सब कुछ सबको मिल जाए तो तलाश ख़त्म हो जाएगी, और जब तलाश ख़त्म हो जाएगी तो ज़िंदगी भी उतनी दिलचस्प नहीं रह जाएगी। कहते भी हैं कि कुछ ख्वाहिशें अधूरी रहें तो अच्छा है, ज़िंदगी को आगे बढ़ने का बहाना मिलता है।

दोस्तों, रात का समय खुद से मिलने का सबसे अच्छा समय है। पूछिए खुद से, आज मैंने क्या सीखा? किसी को खुश किया? किसी का दिल तो नहीं दुखाया? अगर जवाब अच्छे हैं तो मुस्कुराइए। अगर कहीं गलती हुई है तो कल उसे सुधारने का संकल्प लीजिए, क्योंकि हर सुबह नया मौका देती है।

दोस्ती वो रिश्ता है जो खून से नहीं दिल से बनता है। सच्चा दोस्त वो होता है जो आपके अच्छे दिनों में तालियां बजाए और बुरे दिनों में आपका हाथ थाम ले। ऐसे दोस्तों को कभी मत खोइए, क्योंकि जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों में दोस्ती का रंग जरूर होता है।

जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भले ही साथ ना हो लेकिन दिल से कभी दूर नहीं जाते। उनकी बातें, उनकी हंसी, उनका साथ, सब कुछ यादों में जीवित रहता है। रात अक्सर उन्हीं लोगों की याद लेकर आती है। चांद को देखा तो तेरी याद चली आई, रात महकी और तन्हाई मुस्कुराई।

चल। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की रात के इस सफर में आपको अपने दिल के करीब कुछ पल मिले होंगे। जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगी, जो बीत गया उसे याद रखिए, जो मिला है उसका सम्मान कीजिए और जो आने वाला है उसका स्वागत कीजिए। मैं आपकी हमराही अर्चना गोयल अब आपसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेन टंडन ने मीडिया को बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। उनकी ये यात्रा विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ. जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ये दौरा नेपाल और भारत के बीच स्थायी और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने की मंजूरी दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल इस महीने की 10 तारीख से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरल उपाय अपना सकता है। आज पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1973 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कल केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी आज गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Ajay Kumar. Prime Minister Narendra Modi yesterday held talks with acting President of Venezuela, Elsie Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health, and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talk, Secretary East Rudrendra Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said the discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. Russian President Vladimir Putin hailed Moscow's strategic partnership with New Delhi and asserted that Western attempts to force India into scaling back its cooperation with Russia are futile and damaging to global stability. In an interaction with heads of leading global news agencies, Putin lauded India's economic growth and its independent foreign policy and said Russia is determined to expand its economic engagement with the country. He said that India's economic growth is the result of the hard work that the government of India has been doing under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. The Russian president said that India's diplomatic engagement with the United States does not hinder or undermine its time-tested relationship with Russia. He said Russia considers India as a reliable partner and it sees no negative consequences from New Delhi's bilateral relations with any other country. He said that India is a great nation and democracy and Russia will continue to expand its relations with it. Nepal's Minister for Foreign Affairs, Shishir Khanal, is visiting India from 5 to 7 June at the invitation of the Minister of External Affairs of India, Dr. S. Jaishankar. During the visit, Minister for Foreign Affairs Khanal will hold a formal meeting with Dr. S. Jaishankar in New Delhi. The two sides will discuss matters of mutual interest with a view to enhancing cooperation across key areas including trade, investment, connectivity, energy and people-to-people ties. As part of regular exchange of high-level visits, this visit will further consolidate the enduring and multifaceted bilateral relations between Nepal and India. The Appointments Committee of the Cabinet has approved a one-year extension for Tarun Kapoor, a retired 1987 batch IAS officer, as advisor to the Prime Minister Narendra.

नई सुबह की पहली आहट के साथ आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम अरुणिमा में। मैं आपकी हमसफर अर्चना गोयल अगले 50 मिनट तक हम साथ बिताएंगे कुछ ऐसे पल जो मन को शांति देंगे, विचारों को पॉजिटिव दिशा देंगे और जीवन में नई ऊर्जा भर देंगे। इस समय घड़ी में सुबह के 4:11 हुए हैं। बाहर अभी अंधेरा है, लेकिन प्रकृति के भीतर एक नई सुबह जन्म लेने की तैयारी कर रही है। पक्षियों की चहचहाहट अभी शुरू नहीं हुई, सड़कों पर सन्नाटा है और वातावरण में एक अद्भुत शांति फैली हुई है। यही वो समय है जब हम अपने मन की आवाज सबसे स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं, और ये आवाज अगर प्रार्थना के रूप में हो तो क्या बात है।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत था फिल्म शागिर्द से। दोस्तों, हर सुबह हमें एक नया अवसर देती है। कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज का दिन हमारे हाथ में है। एक छोटी सी बात याद रखिए, सूरज हर दिन ये संदेश लेकर आता है कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। जीवन में समस्याएं सभी के पास होती हैं, लेकिन सफल वही होता है जो समस्याओं के बीच भी संभावनाएं ढूंढ लेता है।

सुबह का ये समय आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। इस समय मन शांत रहता है और विचारों में स्पष्टता आती है। आज का विचार है कि दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दीजिए, स्वयं को बेहतर बनाने की शुरुआत कीजिए। जब हम अपने भीतर परिवर्तन लाते हैं तो दुनिया अपने आप बदलती हुई दिखाई देने लगती है।

0: आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा और मैं हूं आज आपके साथ अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 4:28 और ठीक 43 सेकेंड।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: अक्सर हम अपनी खुशियों को भविष्य के किसी दिन के लिए टाल देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि यात्रा का हिस्सा है।

एक बार एक व्यक्ति गुरु के पास गया और बोला, मेरे जीवन में बहुत परेशानियां हैं। गुरु उसे एक तालाब के पास ले गए और एक मुट्ठी नमक पानी में डाल दिया, फिर बोले, इस पानी को पीकर देखो। व्यक्ति ने कहा, पानी कड़वा हो गया। गुरु फिर उसे एक बड़ी झील के पास ले गए और उतना ही नमक उसमें डाल दिया। जब व्यक्ति ने झील का पानी पिया तो वह सामान्य था। गुरु मुस्कुराए और बोले, दुख नमक की तरह है, उसकी मात्रा नहीं बदलती। फर्क सिर्फ इतना है कि आपका मन तालाब जितना छोटा है या झील जितना विशाल। इसलिए अपने मन को बड़ा बनाइए, समस्याएं छोटी लगने लगेंगी।

दोस्तों, जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब कुछ लोग जागकर अपने सपनों को आकार दे रहे होते हैं और कुछ लोग ईश्वर का स्मरण कर रहे होते हैं। विश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब रास्ता दिखाई ना दे तब विश्वास वो दीपक है जो आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। आज सुबह ईश्वर को धन्यवाद कहिए। धन्यवाद उस जीवन के लिए जो मिला, उन लोगों के लिए जो आपके साथ है और उन चुनौतियों के लिए जिन्होंने आपको मजबूत बनाया।

हम अक्सर बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं और छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन सोचिए, सुबह की ठंडी हवा, चाय की पहली चुस्की, माता पिता का आशीर्वाद, बच्चों की मुस्कान, ये कितनी बड़ी नेमतें हैं। आज का संकल्प, मैं हर दिन कम से कम ऐसी बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा जो मेरे जीवन को सुंदर बनाती है।

दोस्तों याद रखना, हारने वाले भी वही रास्ते देखते हैं जो जीतने वाले देखते हैं। फर्क सिर्फ नज़रिए का होता है। अगर आपको कोई काम कठिन लग रहा है तो खुद से कहिए कि मैं कोशिश करूँगा या मैं कोशिश करूँगी। यही कोशिश धीरे धीरे सफलता में बदल जाती है।

और अब धीरे धीरे पूर्व दिशा में उजाला फैलने को तैयार है। नई सुबह आपका इंतजार कर रही है। जाने से पहले एक विचार, हर सुबह जीवन हमें दो विकल्प देता है, सपनों के साथ सोती रहिए या उठकर उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए। इसी प्रेरणा के साथ मैं अर्चना गोयल आपसे अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार।

ये था कार्यक्रम अरुणिमा। 5:10 पर आपसे फिर मुलाकात होगी कार्यक्रम भूल सुहानी में। और अब वक्त है समाचारों का, आइए सुनते हैं समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला संबंधों पर चर्चा की। इसके साथ ही ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: The discussions also
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता अपना सकता है। नेपाल की विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। उनकी ये यात्रा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री खनाल नई दिल्ली में डॉ. जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। ये दौरा नेपाल और भारत के बीच स्थायी और बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केरल द्वारा किए गए एक पोस्ट का खंडन किया है। इस पोस्ट में राजेश एक्सपोर्ट्स के चालू वित्त वर्ष के आंकड़ों की तुलना भारत के वित्त वर्ष 2026 के आईटी निर्यात डेटा से की गई थी। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा फर्जी है। पत्र सूचना कार्यालय ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी जानकारी या दावे को साझा करने या उस पर भरोसा करने से पहले विश्वसनीय आधिकारिक स्रोतों से उसकी जांच अवश्य करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं भोर सुहानी, एक ऐसा कार्यक्रम जो सुबह की ताजगी, प्रकृति की सुंदरता और सकारात्मक विचारों के साथ आपके दिन की शुरुआत को और भी खूबसूरत बनाता है। कार्यक्रम के साथ मैं अर्चना गोयल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगा हर्ट्ज पर। तो आइए आज की इस सुहानी भोर में आपके साथ कुछ पल बिताते हैं और अपने मन को नई ऊर्जा से भरते हैं।

दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि पेड़ कभी शिकायत नहीं करते। वे हर मौसम को स्वीकार करते हैं, गर्मी, सर्दी या बरसात। वे अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मूल्यों और विश्वास से जुड़ा रहता है वो हर परिस्थिति को संभाल लेता है।

सुबह की ओस की बूंदें हमें सिखाती हैं कि छोटा होना कमजोरी नहीं, एक छोटी सी बूंद भी सूरज की किरणों में मोती जैसी चमक सकती है। आज का सुविचार है कि जीवन में महान बनने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि अपने जीवन की अच्छाई को चमकाना बेहद जरूरी है।

0: आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी, और भोर सुहानी के साथ जुड़ी है आपकी दोस्त अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 5:25 और ठीक 25 सेकेंड।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
2: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से,
1: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
2: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ एफएम गोल्ड पर।
0: सुबह होते ही पंछियों का कलरव शुरू हो जाता है। वे भविष्य की चिंता में नहीं डूबते, न ही बीते हुए कल का बोझ उठाते हैं, वो बस वर्तमान में जीते हैं। हम अक्सर अपनी खुशियां कल पर टाल देते हैं, सोचते हैं जब सब ठीक होगा तो सब खुश होंगे, लेकिन प्रकृति कहती है कि खुशी किसी मंजिल का नाम नहीं बल्कि सफर का हिस्सा है। जब आप सुबह की हवा और खिलते हुए फूलों को देखते हैं तो एहसास होता है कि खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए।

0: गले।
1: दोस्तों, सूरज की पहली किरण केवल धरती को ही नहीं जगाती बल्कि उम्मीदों को भी जगाती है। हर नया दिन एक खाली पन्ने की तरह होता है। कल की गलतियां उस पन्ने पर नहीं होती। यदि कल कुछ अच्छा नहीं हुआ तो भी आज आपके पास एक नया अवसर है। कहते भी हैं कि बीता हुआ समय एक अनुभव है और आने वाला समय अवसर। दोनों के जो वर्तमान है वही जीवन है।